आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 13 जून सन 2026। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

सुप्रभात आगरा, यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुबह के 6 बजने को हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ

0: डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का यात्रा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, समय हो चला है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। कार्यक्रम की प्रस्तुति में सुनते हैं संवेद स्वर में यतेश खान।

राम कृपा नवजीवन है, राम का नित नित वंदन है, श्री राम सहारे ही मनवा, मंगल में तन और मन है।

0: कण कण में विष्णु बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में मां जानकी और मन में बसे हनुमान।
1: श्री हनुमान जी का जन्म दीपावली के एक दिन पूर्व चतुर्दशी तिथि मंगलवार के दिन सायंकाल मेष लग्न में हुआ था। उस समय सूर्य तुला राशि

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष लग्न अग्नि राशि है। इसके स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस शुभ योग में जन्म लेने के कारण दुखों के समूह को जलाकर राख कर देने की अद्भुत शक्ति श्री हनुमान जी में है। मंगलवार को जन्मे मंगलमय श्री हनुमान जी मंगल भवन अमंगल हारी है। वे मंगल कामना करने वाले अपने किसी भी भक्त का कभी अमंगल नहीं होने देते, उसका सदा मंगल ही करते हैं। श्री हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी को काशी में एक ब्राह्मण के रूप में दर्शन देते हैं। एकांत में ले जाकर रामचरित्र का उपदेश देकर उन्हें संकट मुक्त करते हैं। संकट मोचन हनुमान के रूप में काशी में वे आज भी विराजमान हैं। श्री हनुमान जी सचमुच संकट मोचन कृपा निधान हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। अब समय हो चला है चिंतन कार्यक्रम का। चिंतन कार्यक्रम में ये सुनते हैं संत रैदास के विचार।
1: जब मध्यकालीन भारत का इतिहास सामाजिक विषमता, आपसी भेदभाव और वर्गगत बुराइयों की बेड़ियों से जकड़ा करा रहा था, निराशा और दीनता की भावना से ग्रस्त और त्रस्त था, ऐसे समय में संत रैदास की विमल वाणी ने सामाजिक समरसता का सुमधुर संदेश सुनाकर वचन सुधा का संचार किया। उन्होंने सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच आदि की भावनाओं को दूर करते हुए पारस्परिक प्रेम और भाईचारे के भावों को सामाजिक सद्भाव पूर्ण संदेश के माध्यम से अपनी कविताई से प्रसारित किया। समरसता का संदेश देते हुए संत रैदास ने सांसारिक वैभव की क्षण भंगुरता का बखान करते हुए राम नाम के सच्चे सार को स्थापित करते हुए कहा, कहे रविदास सबे जग लूटिया, हम तो एक राम कहे छूटिया। स्वामी रामानंद को अपना गुरु स्वीकार करने वाले संत रैदास जन जन में व्याप्त ब्रह्म में विश्वास करते थे और इस नाते वे सभी प्राणियों को एक समान मानते थे। उनका मानना था कि रामानंद मोहि गुरु मिल्यो, पायो ब्रह्म विलास, राम नाम अमीर पियो, रैदास भयो पलास। दलित जाति में जन्म लेने पर भी उनमें किसी प्रकार की दीन या हीन भावना नहीं थी। वे अत्यंत स्पष्टवादी थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपनी जाति, जन्म और पेशे के बारे में घोषित करते हुए कहा था, जाति भी ओछी, जन्म भी ओछो, ओछा कर्म हमारा। उनका मानना था कि समस्त मानव एक समान हैं। जात पात से ऊपर उठकर मानवता ही सबसे बड़ी जाति है। बिना इसके भावनात्मक एकता का विकास संभव नहीं हो सकता। वे कहते थे कि जात जात में जात है, ज्यों केलन में पात, रविदास मनुख ना जुड़ सकें, जौलों जात न जात। संत रैदास के अनुसार पारस्परिक प्रेम, बंधुत्व की भावना ही सबसे बड़ी धर्म भावना है। उनका स्पष्ट कथन था, कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लग एक न पेशा, वेद कतेब कुरान पुरानक, सहज एक नहीं वेशा। राम भक्त रैदास का मानना था कि संत का स्वभाव सभी को समदृष्टि से देखने का होता है। जिनके हृदय में रात दिन राम रमे रहते हैं, उन संतों को काम क्रोध आदि विकार कभी नहीं सताते। वे कहते थे कि रैदास कहे जाके हृदय, रहे रैन दिन राम, सो भगता भगवंत सम, क्रोध न व्यापे काम। अपने अंदर के कालुष्य को दूर करके निर्मल चित्त से प्रभु की उपासना आराधना ही संत का लक्षण है। रैदास इसी में विश्वास व्यक्त करते हुए कहते हैं, अंतर्गत रांचे नहीं, बाहर करे उजास, तेनर जमपुर जाएंगे, संत भाषे रैदास। सारे आडंबर और पाखंड को छोड़कर संत रैदास सहज भक्ति को ही मानव जीवन का सार और सर्वस्व मानते थे। भक्त साधना से ही भाईचारे का भाव पल्लवित और पुष्पित होता है और सब में एक ही परमात्मवास के विश्वास से भेदभाव का भाव नष्ट होता है। सबको समान समझना ही संत का स्वभाव है और यही संत प्रवर रैदास की साधना का सार था। संत अज्ञान की असारता से अपने को बचाता हुआ ज्ञान की सत्ता को जाति पाति आदि से ऊपर स्वीकारता है। फल कारण फूली बन राय, फल लागा तब फूल बिलाई, ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तब कर्म हुनास। ज्ञान पाते ही तेरा मेरा का मोह भाव नष्ट हो जाता है और सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठने और जिस जगत को रैन बसेरा समझने का भाव सर्वोपरि हो जाता है। रैदास ने इसी संत स्वभाव को अपनी वाणी में उजागर किया है। प्राणी किया मेरा तेरा, जैसा तरवर पेख बसेरा, राखव कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तिर सीमा। संत रैदास संसार के सभी वैभव

0: विलास को घास की टाटी के समान समझते हैं, जो ज्ञान की चिंगारी मात्र के पड़ते ही क्षण मात्र में भस्म हो जाती है। भाई बंधु आदि परिवारिक जनों के संबंध क्षणिक है, असली संबंध तो आत्मा का परमात्मा से है। इहुतन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रह गई माटी।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संत रैदास के विचार। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है कार्यक्रम विवरण का।

अब एक नजर आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस कान पाठ। गायक कलाकार होंगे ए हरिहरन। खेती की बातें कार्यक्रम में 6:45 पर सुनिएगा वार्ता स्प्रिंकलर सिंचाई प्रबंधन। वार्ताकार होंगे एम बी सिंह।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर आप सुनिएगा वार्ता बच्चों के दिल में छेद की परेशानी। वार्ताकार होंगे डॉक्टर वी के राजपाल। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास का समय रहेगा सुबह 7:31। फिल्म संगीत का आनंद आप लीजिएगा सुबह 8:45 पर, 9:25 पर, सुबह 10:00, 12:30 पर, दोपहर 2:45 और दोपहर 3:00।

लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:45 पर आप सुनिएगा आशा कटारा को। इनके साथ संगीत कलाकार होंगे हारमोनियम पर गोपाल सिंह परमार, ढोलक पर राधा मोहन शर्मा, बांसुरी पर ज्वाला प्रसाद। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर आप सुनिएगा डॉक्टर सत्यभान शर्मा का राग अलैया विलावल में गायन। आज के कलाकार का समय रहेगा सुबह 11:00। कार्यक्रम 11:30 पर सुनिएगा आप कुछ बातें कुछ गीत। इसमें आज चर्चा रहेगी रंगहीनता एल्बिनिज्म संक्रामक रोग नहीं, इससे पीड़ितों से भेदभाव ना करें। लोकमंचरी कार्यक्रम में 12:00 सुनिएगा गोपाल सिंह परमार के गाए कुछ ब्रज लोकगीत।

पनघट कार्यक्रम में दोपहर 1:15 पर सुने का चर्चा बुजुर्गों के प्रति रखें आदर भाव, साथ ही सुने का रंगहीनता कोई अभिशाप नहीं। वार्ता प्रसारित की जाएगी बालिकाओं की सुरक्षा परिवार और समाज की साझा जिम्मेदारी। वार्ताकार होंगी वाणी शाह। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर सुनेगा वंदना वरुण के गाए कुछ गीत और भजन। दोपहर 2:30 पर उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेगा बेगम परवीन सुल्ताना को, साथ ही आप सुनेंगे पंडित अजय पोहनकर और विदुषी सविता देवी को। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों में शाम 5:30 पर हमारे युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। इसमें चर्चा रहेगी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पर। वार्ता में सुनेगा मोबाइल, सोशल मीडिया और डिजिटल बचपन। वार्ताकार होंगे उत्कर्ष शेखर। ग्रामलोक कार्यक्रम में शाम 6:00 आप सुनेंगे चर्चा धान की नर्सरी प्रबंधन। वार्ता रहेगी मृदा परीक्षण से लाभ। वार्ताकार होंगे डॉ आरबी अग्रवाल। श्रमिक साथियों का कार्यक्रम मजदूर मंडल का समय रहेगा शाम 6:30। इसमें चर्चा रहेगी एल्बिनिज्म जागरूकता पर। वार्ता में सुनेगा एमएसएमई की योजनाएं और उनसे लाभ कैसे उठाएं। वार्ताकार होंगे ब्रजेश कुमार।

शाम 7:31 पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में आप सुनेगा अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस पर भेंट वार्ता, एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है एल्बिनिज्म। वार्ताकार डॉक्टर रजनीश सिंह से अनिल सिंह की बातचीत आप इसमें सुनेंगे। हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रमों में रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे रेडियो पत्रिका संस्कृति भारती और रात 10 बजे से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। श्रोताओं, ये थे आज की सभा के कार्यक्रमों का विवरण। और अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान पाठ। गायक कलाकार हैं ए हरिहरन।

भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं, धर्म शास्त्रों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। हर एक अवतार जिस कारण होता है, वो कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हेतु अनेक हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई नहीं जान सकता। शिव जी ने पार्वती को श्रीहरि के दो द्वारपालों जय और विजय की कथा सुनाई, जो सनकादि ब्राह्मण के शाप के कारण हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्ययाक्ष के रूप में मनुष्य योनि में पैदा हुए थे। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार हुआ तथा हिरण्ययाक्ष का वध प्रभु ने वराह का शरीर धारण करके किया, किंतु स्वयं प्रभु के द्वारा मारे जाने के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मण का शाप 3 जन्मों के लिए था। कालांतर में यही दोनों रावण तथा कुंभकर्ण नामक महाबली राक्षस हुए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कान पाठ। गायक कलाकार थे ए हरिहरन। अब समय हो चला है खेती की बातें कार्यक्रम का। खेती की बातें कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ता स्प्रिंकलर सिंचाई प्रबंधन। वार्ताकार हैं एमबी सिंह।
1: फुहारा सिंचाई पद्धति एक प्रकार की सिंचाई प्रणाली है जिसमें पौधों को पानी फुहारे के रूप में यानी कि कृत्रिम वर्षा के रूप में दिया जाता है। स्प्रिंकलर प्रणाली को पानी के स्रोत से पंप सेट से पंप कनेक्टिव निपल द्वारा जोड़ दिया जाता है और जिसमें आगे HDPE पाइप हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन के 20-20 फुट के पाइप के टुकड़े होते हैं जिनके दोनों सिरों पर मेल व फीमेल कपलर लगे रहते हैं जिससे इनको आपस में मेल कपलर को फीमेल दूसरे पाइप के फीमेल कपलर में जोड़कर पाइपलाइन बिछा दी जाती है। इन पाइपों को जोड़कर पानी को खेत में फसल तक पहुंचा दिया जाता है जहां दो दो पाइपों के मध्य फुट बैटन कपलर लगाए जाते हैं। इन फुट बैटन कपलर के ऊपर 1 मीटर का राइजर पाइप लगाकर उसके ऊपर स्प्रिंकलर नोजल यानी कि वह नोजल जो पानी का छिड़काव करता है लगा दिया जाता है। पाइपलाइन के अंदर अंतिम छोर पर एंड कैप लगाकर बंद कर दिया जाता है। सिंचाई के लिए पंप सेट चालू किया जाता है। पानी नोजल से होकर बौछारी रूप में यानी कि वर्षा के रूप में फसल को दिया जाता है। इस पद्धति में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली द्वारा कम से कम पानी का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक उपज प्राप्त की जाती है। बौछारी सिंचाई पद्धति द्वारा रबी की फसलों दलहन तिलहन व हरी सब्जियों जैसे गोभी बंद गोभी बैंगन मूली गाजर आदि सभी फसलों के लिए यह अत्यंत उपयोगी सिंचाई पद्धति है। कुछ खास फसलों जैसे आलू धान आदि के अतिरिक्त लगभग सभी फसलों के लिए इस सिंचाई पद्धति का बहुत फायदेमंद उपयोग किया जा रहा है। इसमें पानी का सिर्फ इतना प्रयोग एक बार में किया जाता है कि पूरे खेत में पानी का बराबर छिड़काव कृत्रिम वर्षा के रूप में इतनी देर तक किया जाए कि खेत की सतह से लगभग 4-5 इंच जमीन में के नीचे तक जहाँ तक पौधों की जड़ें होती हैं वहाँ तक नमी पहुँचा दी जाए जिससे पानी का अधिकांश उपयोग पौधों की जड़ों द्वारा कर लिया जाए। इस सिंचाई पद्धति एवं अन्य सिंचाई प्रणाली जैसे फ्लड इरिगेशन सिस्टम जिसमें खेत में पानी 6-8 इंच तक भर दिया जाता है की अपेक्षा 40-45% तक पानी की बचत होने के साथ साथ उपज में भी 25-30% तक की वृद्धि होती है। कारण कि कृत्रिम वर्षा के रूप में जब पानी फसल पर छिड़काव किया जाता है तो फसल के पत्ते धुल जाते हैं धूल आदि दूर हो जाती है और वो अच्छी तरह सांस ले सकता है। पानी की उपलब्धता भी अधिकाधिक होने के कारण फसल लगभग उपज फसल की 25-30% तक बढ़ जाती है। फुहारा सिंचाई पद्धति के द्वारा

0: खेत में पानी का लगभग 90% तक समान रूप से छिड़काव होता है। इस पद्धति में खेत पौधों को कृत्रिम वर्षा के रूप में पानी दिया जाता है, फसल को जब पानी की आवश्यकता महसूस हो। फुहारा सिंचाई से आवश्यकता अनुसार एक बार में 10-15 मिनट से 35-40 मिनट तक आवश्यकता के अनुसार पानी दिया जाना चाहिए। किसान भाइयों को सिर्फ एक बात का ध्यान इस पद्धति में रखना होता है कि जिस समय फसल पर फूल आ रहा हो, फूल के परागकण फूल के मादा भाग तक पहुंचने पर ही बीज बनने की प्रक्रिया होती है। उसे हम परपरागण अथवा प्रजनन की क्रिया कहते हैं। इस अवधि में जो लगभग 15 दिन तक चलती है, उस समय सिंचाई फुहारा पद्धति से करने से फूल के परागकण झड़ जाते हैं, फसल कमजोर रह जाती है। सिर्फ इस समय के अतिरिक्त फसल को कभी भी फुहारा सिंचाई के द्वारा सींचा जा सकता है। इस प्रकार भूमिगत अथवा अन्य स्रोत से पानी की 40 से 45% तक बचत कर उपज को 25 से 30% तक बढ़ाया जा सकता है। मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि बौछारी सिंचाई पद्धति को अपनाकर प्रदेश की हरित क्रांति में शामिल होकर लाभान्वित हों। हमारे देश में अभी तक तो पानी की ज़्यादा कमी महसूस नहीं की गई थी, लेकिन जैसा आप लोगों को, सभी किसान भाइयों को यह ज्ञान होगा कि हम आमतौर पर यह सुन रहे हैं कि भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर हर साल लगभग 1.5 से 3 मीटर नीचे जा रहा है। आने वाले समय में हमें ऐसा महसूस होता है कि पानी की बहुत अधिक किल्लत सिंचाई के लिए रहेगी। इज़राइल देश में पानी का बिल्कुल साधन नहीं है। वहाँ की सरकार द्वारा, वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा इस सिंचाई प्रणाली का सर्वप्रथम आविष्कार करके उपयोग किया गया और आज वह देश फसल के मामले में, उपज के मामले में दुनिया के किसी भी उन्नत देश से कम नहीं है। तो हम वैज्ञानिक लोग और सरकार हमारी इस बात को देख रही है कि आने वाले टाइम में जो पानी की कमी होने वाली है, उस पानी को आज ही हम बचा लें। इस सिंचाई प्रणाली से पानी की बचत लगभग 40-50% तक होती है और उपज भी 25 से 30% फसल की बढ़ जाती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई अधिक से अधिक इस प्रणाली का उपयोग आज ही से करें ताकि आने वाले समय में जो कठिनाई देश के सामने आने वाली है, उससे बचा जा सके।
1: स्प्रिंकलर सिंचाई प्रबंधन। अभी आप इस विषय पर वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे MB सिंह।

राष्ट्रीय अखंडता, सांस्कृतिक एकता और आपसी सद्भाव के लिए केवल एक ही संपर्क भाषा है, वह है हिंदी। ये कहना है फादर कामिल बुल्के का।

हिंदी के माध्यम से सारे भारत को एकता के सूत्र में पिरोया जा सकता है, ये कहना है स्वामी दयानंद सरस्वती का।

श्रोताओं, सब कुछ खोने से बुरा होता है उस उम्मीद को खो देना जिसके सहारे आप सब कुछ पा सकते हैं, तो अपनी उम्मीद हमेशा कायम रखें। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे।

0: मेघगर्जनम् तीव्रवायुः विद्युद्योतनम् चाभवत्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन दिल्ल्याः तथा समीपस्थानां क्षेत्राणां कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। आईएमडी इत्यनेन सावधानं कृतं यत् आर्द्रकालः अनुवर्तयितुं शक्यते। अग्रिमेषु कतिपयेषु दिनेषु मेघवृष्टिः निरन्तरं भवितुमर्हति। क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशालायां तिसृणाम् ओडीआई क्रीडायां श्रृंखलायाः प्रथमायां क्रीडायां भारतम् अफगानिस्तानदलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडा सार्धैकवादने आरभ्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिफ्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में एससीओ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन बैठकों का उद्देश्य नीट पुनर्परीक्षा के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना, तैयारियों को मजबूत करना और परीक्षा की निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बनाए रखना है। परीक्षा 21 जून को होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8

से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देश की खुदरा मुद्रास्फीति दर इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। नई मुद्रास्फीति श्रृंखला के अंतर्गत लगातार पांचवें महीने में महंगाई में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। अब समय हो चला है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ता, बच्चों के दिल में छेद की परेशानी। वार्ताकार हैं डॉक्टर वी के राजपाल।
1: भाइयों और बहनों, आज मैं आपको, आपने देखा होगा कि कई माँ बाप कि वे इस बात से चिंतित रहते हैं कि डॉक्टर ने उन्हें बता दिया है कि उनके बच्चे के दिल में छेद है, और इसका अपने आप पता तब लग सकता है यदि आप शुरू से ध्यान दें कि जब बच्चा पैदा हुआ है तो वो क्या ठीक से बढ़ रहा है। अगर वो नहीं बढ़ रहा तो हो सकता है उसके किसी हिस्से में और हो सकता है दिल के अंदर छेद वाली प्रॉब्लम हो। कभी कभी बच्चा दूध पीते वक्त हाँफ जाता है, कभी कभी उसके सर पे पसीना आ जाता है, और अगर बच्चा बड़ा है तो वो खेलता है, दौड़ता है तो हाँफ जाता है। ऐसा हो सकता है कि उसके दिल में कोई प्रॉब्लम हो। कभी कभी बच्चा नीला भी बढ़ जाता है, और इस नीलेपन का कारण दिल के अंदर दूसरे दोषों के अलावा दिल में छिद्र का होना भी हो सकता है। जब कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हम जो है बाल रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं, और बाल रोग विशेषज्ञ को हमने ट्रेनिंग दी है कि वह दिल की जांच करके ये बता सके कि क्या दिल में कोई खराबी है कि नहीं है। अगर उनको ऐसा लगता है कि दिल की आवाज़ों में कोई खराबी है तो आगे जांच करके वो इसको कंफर्म कर देते हैं। इसके बारे में शंका का समाधान ऐसे हो सकता है कि जो दिल है हमारा वो 6 हफ्ते तक जब पेट में बच्चा होता है तभी पूर्ण बन जाता है। अगर उस वक्त माँ में कोई दोष है, माँ में कोई बुखार है, खांसी है या कोई अनुवांशिक चीज़ है तो उसका असर दिल पे पड़ सकता है और दिल के अंदर कोई ना कोई खराबी पैदा हो सकती है। पर अभी तक के अध्ययनों से पता लगा है कि 90% बच्चों में जिनके अंदर ये खराबी होती है उसका पता ठीक से नहीं लग पाता और उसका कारण ज्ञात नहीं हो पाता। अब ये छिद्र होता क्या है? ईश्वर ने जब बच्चे को पेट में रखता है, भ्रूण अवस्था में होता है, उस वक्त उसको जिंदा रहने के लिए मां से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो तरह तरह के द्वार भगवान उसमें खोल देता है, और जो ही बच्चा पैदा होता है इन द्वारों को बंद हो जाना पड़ता है। पर किसी कारणवश अगर ये द्वार बंद नहीं हो पाते तो डॉक्टर और आप जो है बच्चे को तकलीफ होती है और कहा जाता है कि बच्चे के अंदर छेद हो गया। एक्चुअली ये छेद जो है एक नॉर्मल चीज होती है, इसको बंद होना होता है, अगर नहीं बंद हो पाता तो कहते हैं दिल में छेद। इसकी दो मुख्य जो है अवस्थाएं हैं। एक अवस्था है VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये जो हमारा दिल है उसके नीचे के भाग के अंदर कोई द्वार खुला रह जाता है तो उसे VST कहते हैं, अगर ऊपर के भाग में कोई द्वार खुला रह जाता है तो उसे ASD कहते हैं। और ये कई तरह का हो सकता है। कई बार तो ऐसा हो सकता है कि जिंदगी भर आपके दिल के अंदर ऐसी अवस्था हो आपको पता ही ना लगे, पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये अवस्था इतनी ज्यादा भयानक होती है कि थोड़े से ही दिनों में बच्चा जो है पनपता नहीं है ठीक से, और वो जो है तरह तरह से हाँफ जाता है, तरह से नीला पीला पड़ता है, तो इसी अवस्था में आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसकी जानकारी जल्दी प्राप्त हो जाती है। जब आपको पता लग गया कि दिल के अंदर छेद है तो आपको ये भी इच्छा होगी

0: कि मैं जानूं इसका उपचार क्या। 20 से 30% जो ये डिफेक्ट्स हैं, जो ये छेद हैं, ये अपने आप भी समय के अनुसार बंद हो जाते हैं। इसमें ये देखना पड़ता है कि डॉक्टर इस बात का ध्यान रखे कि कोई भी जटिलता ना पैदा हो, पर अगर ये अपने आप बंद नहीं होता है, जटिलता होती है, तो अब हमारे पास बहुत ही सेफ तरह के इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स और बहुत ही सेफ तरह के ऑपरेशंस आ चुके हैं। घबराने की कोई बात नहीं है और 99% इसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। धन्यवाद।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था बच्चों के दिल में छेद की परेशानी। वार्ताकार थे डॉक्टर वी के राजपाल। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये देश गान।

0: ताकि वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: ताकि वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, भारत ने पूरी दुनिया को कराया है अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। और गृह मंत्री अमित शाह ने की श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। तीर्थयात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में कई प्रभावी कदम उठाए हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर कल लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो अपनी विकास यात्रा की तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है।
4: भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है। मैं इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ।
2: इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में आयोजित जनकल्याण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और येडा क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया। श्री योगी ने कहा कि ये नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
4: प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दृष्टि से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ और गोरखपुर में अलग अलग विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री योगी आजमगढ़ के महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 955 करोड़ की लागत से 39 विकास परियोजनाओं और गोरखपुर में 295 करोड़ रुपये की लागत वाली 319 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

0: करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। संशोधित समय के अनुसार परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थयात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, CCTV और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि CAPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी क्रम में विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के प्रयासों पर एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की 2 संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति में बाधाओं के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री सीमा तय कर दी है। अब किसी पेट्रोल पंप पर प्रति वाहन या प्रति व्यक्ति 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं खरीदा जा सकेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि यह प्रतिबंध 90 दिनों के लिए लगाया गया है। देश के दिग्गज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का कल दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 49 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। आज वाराणसी में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जसपाल राणा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT द्वारा जुलाई 2026 से बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी का नया स्नातक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मरिंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस कोर्स को शुरू करने का उद्देश्य भविष्य में साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित टीम तैयार करना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, भारत ने पूरी दुनिया को कराया है अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। और गृहमंत्री अमित शाह ने की श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। तीर्थयात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑनियर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास का।

कार्यक्रम आसपास सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी शशांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले नजर स्थानीय सूचनाओं पर। 20 जून को होगी विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा 20 जून को आयोजित होगी। प्रवेश पत्र 17 जून को जारी किए जाएंगे। 1400 से अधिक सीटों के लिए 4000 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे।

ट्रिपल सी प्रशिक्षण के लिए 10 जुलाई तक आवेदन। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत नीलिट मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से ओ लेवल और ट्रिपल सी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया है कि इच्छुक अभ्यर्थी 16 जून से 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रयागराज दादर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलेंगी। रेलवे ने प्रयागराज दादर साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। पीआरओ ने बताया है कि 10 जुलाई तक प्रयागराज में प्रत्येक शुक्रवार को और 12 जुलाई तक दादर से प्रत्येक रविवार को ये संचालित होंगी। ट्रेन प्रयागराज से ईदगाह स्टेशन होते हुए जाएगी।

हरि पर्वत से दिल्ली गेट रोड की एक लेन बंद। हरि पर्वत से रवि हॉस्पिटल और राजामुटी स्टेशन तक मॉडल रोड निर्माण शुरू होने से दिल्ली गेट से हरि पर्वत की ओर जाने वाली एक लेन बंद कर दी गई है। सुबह शाम जाम की स्थिति बनी रही है। प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने के लिए और इस क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की है।

शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन शुरू। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया है कि शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1454 लाभार्थियों को लक्ष्य तय किया गया है। पात्र विभाग की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है।

आज बंद रहेगा मोतीगंज बाजार। मोतीगंज बाजार पर थोक एवं फुटकर में खाद्यान्न की खरीद पर निर्भर लोगों को आज अपनी खरीद का अवसर नहीं रहेगा, क्योंकि बाजार में सड़क निर्माण की वजह से प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कल रविवार है, यह खाद्यान्न बाजार के साप्ताहिक अवकाश का दिन है। यह जानकारी देते हुए श्री मोतीगंज खाद्य व्यापार समिति के अध्यक्ष ने बताया है कि 13 जून शनिवार को पूरा बाजार बंद रहेगा। उन्होंने सभी दुकानदारों से प्रतिष्ठान बंद रखने के लिए अनुरोध भी किया है। जीएसटी में लंबित अपील दाखिल का अवसर 30 जून तक। अपीलीय अधिकरण द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ट्रिब्यूनल में लंबित पात्र द्वितीय अपीलों को दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून ही रहेगी। यह भी स्पष्ट किया है कि उसके पास इस समय सीमा को बढ़ाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। करदाताओं एवं विभागीय अधिकारियों ने से कहा गया है कि सीजीएसटी एक्ट 2017 की धारा 112 के अंतर्गत अपनी द्वितीय अपीलें 30 जून से पहले दाखिल कर दें, ताकि अंतिम समय में पोर्टल पर अत्यधिक भार एवं तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके। यह जानकारी देते हुए जीएसटी विशेषज्ञ सीए ने बताया है कि जिन मामलों में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अभी तक अपील दाखिल नहीं की गई है, ऐसे सभी पात्र मामलों में करदाताओं को आवश्यक दस्तावेजों एवं प्री डिपॉजिट की व्यवस्था समय रहते पूर्ण करने लेनी चाहिए।

एकलव्य स्टेडियम में कोच रखे जाएंगे। एकलव्य स्टेडियम में क्रिकेट, हॉकी, शूटिंग, लॉन टेनिस और वॉलीबॉल के लिए कोच के आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इन सभी खेलों के कोच जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति की ओर से रखे जाएंगे। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ने बताया है कि 10 खेलों में कोच उपलब्ध हैं, 5 खेलों में कोच अभी उपलब्ध नहीं है।

0: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास। वापस रुक करते हैं स्थानीय सूचना पर। नीट अभ्यर्थियों को 15 मिनट ज्यादा मिलेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कई छात्र अनुकूल बदलाव की घोषणा की है। परीक्षा के लिए छात्रों को अतिरिक्त 15 मिनट का समय अब दिया जाएगा, जबकि रफ कार्य के लिए भी अतिरिक्त पेज उपलब्ध कराए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि लगातार मिल रहे फीडबैक के आधार पर किए गए इन बदलावों को उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवारों के लिए अनुकूल बनाना है। परीक्षा अवधि बढ़ाई गई है। एनटीए के अनुसार नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का आयोजन 21 जून 2026 को होना है। इस बार परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। इससे पहले जो परीक्षा 180 मिनट की होती थी, वह अब 195 मिनट की होगी। एजेंसी के अनुसार अतिरिक्त 15 मिनट देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि उपस्थित पत्रक पर हस्ताक्षर, परीक्षा कक्ष की औपचारिकताएं और अन्य निगरानी संबंधी प्रक्रियाओं के कारण अभ्यर्थियों को वास्तविक परीक्षा समय इससे प्रभावित ना हो। साथ ही प्रश्न पुस्तिकाओं के प्रारूप में भी बदलाव किया गया है। एनटीए के प्रश्न पुस्तिका की डिजाइन में भी इस बार बदलाव किया गया है। पहले रफ वर्क के लिए दोनों पेज प्रश्न पुस्तिकाओं के अंत में दिए जाते थे। इसे कई छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले अभ्यर्थियों के लिए असुविधाजनक बताया जाता था। नई व्यवस्था के तहत दो रफ वर्क पेज निर्देश पृष्ठ के तुरंत बाद प्रश्न पुस्तिका की शुरुआत में और दो पेज अंत में होंगे। यह व्यवस्था अंग्रेजी तथा सभी क्षेत्रीय भाषाओं की प्रश्न पुस्तिकाओं में भी लागू होगी।

हर शहर और गांव को ग्रीन मोबिलिटी से जोड़ेंगे योगी। प्रदेश को स्वच्छ, आधुनिक और भविष्य की परिवहन व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर तक संचालित होने वाले 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य हर शहर और गांव को ग्रीन मोबिलिटी

से जोड़ना है। एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और इलेक्ट्रिक बस सेवा के विस्तार में प्रदेश को सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में शामिल कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों को हरी झंडी दिखाई, साथ ही नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का शुभारंभ भी किया।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास। अब एक नजर खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में। विलुप्त महिला का नाम रेनू, पत्नी सतीश चंद, निवासी लहला एमनीपुर थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी से, दिनांक 14 अप्रैल सन 2000

26 से लापता है। रेनू की उम्र 40 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा गोल है, शरीर की बनावट सामान्य है। घटना के समय इन्होंने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। यदि किसी व्यक्ति को इनके बारे में कोई भी सूचना मिलती है तो थाना प्रभारी थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी को सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार विलुप्त युवती का नाम कीर्ति, पुत्री आशाराम देवाकर, निवासी अहिरवा थाना भोगांव जनपद मैनपुरी से दिनांक 14 अप्रैल सन 2026 से लापता है। कीर्ति की उम्र करीब 24 वर्ष, रंग गोरा, चेहरा गोल, शरीर सामान्य है। घटना के समय इन्होंने हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी। यदि किसी व्यक्ति को इनके बारे में कोई भी सूचना मिलती है तो थाना प्रभारी थाना भोगांव जनपद मैनपुरी को सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार विलुप्त महिला का नाम गुलफशा, पत्नी संजीव यादव, निवासी रठेरा थाना दन्नाहार जनपद मैनपुरी से दिनांक 25 अप्रैल सन 2026 से लापता है। गुलफशा की उम्र करीब 26 वर्ष, रंग गोरा, कद 5 फुट, चेहरा गोल, शरीर सामान्य है। घटना के समय इन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी। यदि किसी व्यक्ति को इनके बारे में कोई भी सूचना मिलती है तो थाना प्रभारी थाना दन्नाहार जनपद मैनपुरी को सूचित करें। अंतिम सूचना के अनुसार विलुप्त युवती माधुरी, पुत्री सतीश चंद कठेरिया, निवासी आसदेव मई नूरपुर थाना जसराना फिरोजाबाद से दिनांक 25 अप्रैल सन 2026 से लापता है। माधुरी की उम्र करीब 19 वर्ष, रंग गोरा, कद 5 फुट, चेहरा गोल। घटना के समय उन्होंने नीले रंग की जीन्स और सफेद टॉप पहन रखा था। यदि किसी व्यक्ति को इनके बारे में कोई भी सूचना मिलती है तो थाना प्रभारी थाना नूरपुर जसराना फिरोजाबाद को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में सूचनाएं समाप्त हुईं।

और अब जान लिए जाएं मौसम के मिजाज। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आ गई है। अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान अब सामान्य से 5.5 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया है। यह 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इस कारण देर शाम और रात को नमी की अधिकता है। आर्द्रता का अधिकतम तापमान 84 पहुंच गया है। इस कारण धूप निकलने पर उमस अधिक परेशान कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को भी येलो अलर्ट है। इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी बारिश हो सकती है। इसके बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में हल्की बारिश होने के आसार हैं। 18 जून तक मौसम का मिजाज यही रहने वाला है। अभी प्री मानसून बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। यह 20 से 25 जून के बाद संभव हो सकती है।

आकाशवाणी का यात्रा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, आपसे कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विष्णु। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
6: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ

0: समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि डीआरडीओ ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
2: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
0: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
3: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120

0: के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे, इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को लिए जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आज सुबह फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। डीआरडीओ ने कसीर सतही बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई सलाहियत के इजहार के लिए लगातार 3 कामयाब तजुर्बे किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल जहाजों पर अमरीकी हमलों के बारे में, जिनमें 3 भारतीय जहाजी हलाक हो गए हैं, अमरीकी वजीर खारजा से सख्त एहतजाज जाहिर किया है। भारत और बांग्लादेश ने अपनी सरहद पर अमन सुकून बरकरार रखने के अपने अजायम को दोहराया है। अमरीका ने कहा है कि वो मुजवजा अमन माहदे के तहत ईरान के सिविल न्यूक्लियाई प्रोग्राम के लिए तैयार है। बैडमिंटन में आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की आलमी चैंपियन अकाने यामागुची से होगा। और फीफा आलमी कप में लॉस एंजलिस में ग्रुप डी के एक मैच में अमरीका और पैराग्वे के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान भारत की शराकतदारी में मजीद गहराई पैदा करना है। इस दौरे से यूरोपीय यूनियन के साथ और ज्यादा वसी दिफाई शराकतदारी की जानिब भारत के अज़्म को दोहराए जाने की भी अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के पहले मरहले में नीस जाएंगे। यहां वो कल सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ दोतरफा मीटिंग करेंगे। दोनों रहनुमा भारत फ्रांस दोतरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे और भारत इनोवेट्स तकरीब का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में भारत फ्रांस और दीगर मुल्कों के सरकर्दा इख्तराई स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स यकजा होंगे। वो स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फीको से बातचीत करेंगे और ताउन के नए मौके दरियाफ्त करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म का साल 2014 के बाद फ्रांस का 7वां सरकारी दौरा होगा। इस दौरे को खसूसी सिफारती हैसियत हासिल है क्योंकि इस साल भारत फ्रांस ताल्लुकात को खसूसी आलमी स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदलने के बाद ये जनाब मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के दरमियान पहली दोतरफा चोटी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के एवियों में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे, जो इस बात की यकीन दहानी होगी कि भारत आलमी स्टेज पर आलमी खित्ते जुनूब की मजबूत आवाज बना हुआ है। पेश है फ्रांस के नीस से हमारे नुमाइंदे की खसूसी रिपोर्ट।
1: फ्रेंच रिवियरा शहर नीस में आज शाम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयारियां हैं, जहां इस साल की सबसे अहम सिफारती मुलाकातों में से एक मुलाकात होने वाली है। आज शाम वज़ीर-ए-आज़म मोदी होटल पहुंचेंगे, जहां वो जुनूबी फ्रांस की भारतीय बिरादरी की जानिब से मुनाकिद कम्युनिटी ज़ियाफ़त में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ पैलेस डेस एक्सपोजिशंस दी नीस में भारत की अहम इख्तिराई नुमाइश भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान फ्रांस और दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स और कंपनियां, सरकर्दा सरमायाकार और सनती रहनुमा यकजा होंगे। इस नुमाइश के दौरान डीप टेक, मस्नूई जहानत और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भारत को आलमी मकाम के तौर पर पेश किया जाएगा। फ्रांस के शहर नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाक जमहूरिया का दौरा करेंगे। पेश है ब्रतिस्लावा से हमारे खसूसी नुमाइंदे की एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाक जमहूरिया की राजधानी ब्रातिस्लावा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के पहले दौरे के लिए तैयार है। अपने दौरे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के वज़ीर-ए-आज़म फीको से बातचीत करेंगे और ताउन के नए इम्कान तलाश करेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी स्लोवाकिया के सदर पिल्लेग्रिनी से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सरकारी दौरा अहमियत का हामिल है क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत में लगातार इजाफा हो रहा है और ये साल 2024 के 1 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर गुज़िश्ता साल 1.8 अरब अमरीकी डॉलर हो गई। ये दौरा यूरोपीय यूनियन रुकन ममालिक के साथ ताबुन को मजबूत करने के भारत के अहद को मजीद तकवीत देगा। स्लोवाक जमहूरिया के ब्रातिस्लावा से सीएम पल्लोरुत्सी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड का जायजा लेंगी। इस साल की पासिंग आउट परेड तारीखी अहमियत की हामिल रहेगी क्योंकि पहली मर्तबा खवातीन कैडेट्स मर्द कैडेट्स के साथ मार्च करेंगी। इस अजीमोशान तकरीब में 500 से ज्यादा मर्द और खवातीन कैडेट्स भारतीय फौज में अफसर के तौर पर कमीशन लेने के लिए आखिरी कदम उठाएंगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड महज एक फौजी रिवायत नहीं होती, बल्कि ये मुल्क की खिदमत के जज्बे से सरचार नौजवान अफसरान के नए सफर के आगाज की अलामत भी होती है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO को परवाजों के लगातार 3 कामयाब तजुर्बों पर मुबारकबाद दी है, जिसे ज्यादा दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल और औसत दूरी वाले बहरी जहाज शिकन सलाहियत पर वार करने

0: वाले कसीर सतही दिफाई निजाम का मुजाहरा होता है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर मौसूफ ने कहा कि इन तजुर्बों से भारत उन मुल्कों में शामिल हो गया है जिनके पास बैन बर्रे आजमी बैलिस्टिक मिजाइल तक बैलिस्टिक मिजाइलों को काम में लाने की सलाहियत मौजूद है। जनाब सिंह ने कहा कि डीआरडीओ ने अहम टेक्नोलॉजी के साथ कामयाबी का इजहार किया है जिससे दुश्मन की तरफ से मुख्तलिफ खतरों से निमटने वाली मुल्क की दिफाई सलाहियतों में इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि इस तजुर्बे में कसीर सतही वाली बैलिस्टिक मिजाइल दिफाई सलाहियत और दुश्मन के हथियारों को फिजा में ही कामयाबी के साथ मार गिराने की नुमाइश की गई। वजीर मौसूफ ने कहा कि यह निजाम मिजाइलों के उभरते हुए खतरों से निमटने के लिए ताजा तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो से बात की और अमरीकी बहरिया के जरिए खलीज में किए गए उन हमलों पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया जिनमें 3 भारतीय मल्लाहों की मौत हो गई थी। एक्स पर अपनी पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि तिजारती बहरी जहाजों पर इस तरह की जानलेवा कार्रवाइयों को सही नहीं ठहराया जा सकता। ओमान के साहिल के करीब पलाऊ के झंडे वाले टैंकर एमटी सेटाबेलो पर अमरीकी हमले में अमले के 3 अराकीन की मौत के कुछ दिनों बाद ये बातचीत हुई है। ये हमले नई दिल्ली के सख्त रद्दअमल की वजह बने हैं। बहरी जहाज के हमले में 24 भारतीय शामिल थे जिनमें से 21 अफराद को बचा लिया गया जबकि दीगर 3 मल्ला पहले लापता करार दिए गए और बाद में उनकी मौत की तस्दीक हो गई। इस वाकये के बाद भारत ने वाशिंगटन के साथ अपना सख्त एहतजाज दर्ज कराया और नई दिल्ली में अमरीका के शॉज डी अफेयर्स को तलब किया। वजारत खारजा ने कहा कि उसने शहरी जहाज रानी के खिलाफ जानलेवा ताकत के इस्तेमाल पर गहरी तश्वीश का इजहार किया है। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि तिजारती बहरी जहाजों पर हमले बैन अल-अक़वामी बहरी तिजारत की सेफ्टी सलामती और इस्तेहकाम की अहमियत को कम करते हैं। इससे पहले वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा था कि अमले के भारतीय अफराद को ले जा रहे मर्चेंट जहाजों पर हमले फौरी तौर पर रोके जाने चाहिए। जनाब जायसवाल ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम की जल्द वापसी को यकीनी बनाने के लिए बातचीत और सिफारतकारी की अपील की है। भारत और बांग्लादेश ने भारत बांग्लादेश सरहद पर अमन सुकून और इस्तेहकाम बरकरार रखने के तहीं अपने अज्म को दोहराया है। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के दरमियान नई दिल्ली के बीएसएफ हेडक्वार्टर में 8 से 11 जून तक डायरेक्टर जनरल सतह की 57वीं बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। इस कॉन्फ्रेंस ने सरहद की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने और सरहदी सलामती और सरहदी इंतजाम से मुतालिक बाहमी तश्वीश के मौजूदात पर तबादला ख्याल के लिए अहम प्लेटफॉर्म फराहम किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान फरीकैन तालमेल पर मबनी गश्त चौकसी बढ़ाने हकीकी वक्त में मालूमात के तबादले और सरहद पार जराइम नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को तेज करने से मुत्तफिक हो गए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी तर्ज के मिजाइल निजाम की गैर मामूली कारकर्दगी से भारतीय दिफाई तहकीक और तैयारी को निजाम की बढ़ती ताकत का इजहार होता है। वजीर दिफा ने हैदराबाद के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिजाइल कॉम्प्लेक्स के हिस्से के तौर पर डीआरडीओ डीआरडीएल में जदीद तरीन हथियारों के निजाम की इमारत का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि डीआरडीओ की जानिब से तैयार करदा निजाम जैसे आकाश और ब्रह्मोस ने आलमी दिफाई टेक्नोलॉजी इको निजाम में मुकाबला आरई की भारतीय सलाहियत का मुजाहरा किया है।
1: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
0: वजीर दिफा ने तेजी से बढ़ती आलमी गैर यकीनी सूरत हाल और इर्तका पजीर जंगी हरबों की नौयत के पस मंजर में कौमी सलामती मफादात की हिफाजत के लिए लचकदारियत और जंग से बाज रखने की सलाहियत हासिल करने की अहमियत पर जोर दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने कहा है कि वो एक वसीतर न्यूक्लियाई माहदे के तौर पर ईरान में न्यूक्लियाई ताउन के सिविल प्रोग्राम को तस्लीम करने के लिए तैयार है बशर्ते कि ईरान अपने वो बुनियादी ढांचा मुनहदिम कर दे जिससे वो न्यूक्लियाई हथियार बना सकता है। ये वजाहत कल एक सीनियर इंतजामी अफसर ने की जिसमें एक मुजवजा अमरीका ईरान न्यूक्लियाई माहदे की तफसीलात बताई गई हैं। अफसर ने बताया कि इस माहदे पर महज चंद रोज में ही दस्तखत किए जा सकते हैं। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के तकरारात से मुतालिक तरीकेकार का जायजा लेने के लिए भारतीय रेलवे के सीनियर अफसरान के साथ कल आला सतह

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म दिल है कि मानता नहीं से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू की। फयाज अनवर के लिखे गीत को संगीत से संवारा है नदीम शिवण ने।

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल कुमार सानू की आवाज में। फयाज अनवर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था नदीम शिवर ने। फिल्म का नाम था दिल है कि मानता नहीं। अब सुनते हैं कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में फूल और कांटे फिल्म का गीत। शब्द रचना समीर की, संगीत रचना नदीम शिवर की।

फूल और कांटे फिल्म में अभी आपने सुना कुमार सानू अलका याग्निक को, शब्द रचना समीर की थी, संगीत रचना नदीम शिवण की। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म राजा से। आवाजें हैं उदित नारायण अलका याग्निक की, शब्द रचना समीर की, संगीत रचना नदीम शिवण की।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: अरे भाई रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ क्यों रिस्क ले रहे हो ट्रेन कभी भी आ सकती है पहले उसे जाने दो फिर आराम से पार कर लेना।
2: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
3: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: फूम संगीत का कार्यक्रम की तंजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से।

आज की फिल्म में अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल कुमार सानू को, शब्द रचना समीर की थी, संगीत रचना नदीम शिवट की। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म रंग से, आवाजें हैं अलका याग्निक कुमार सानू की, समीर के लिखे गीत को संगीत से संवारा है नदीम शिवट ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत अभी आपने सुना फिल्म रंग से। आवाजें थी अलका याग्निक, कुमार सानू की, शब्द रचना समीर की, संगीत रचना नदीम शिवण की। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का यात्रा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से जिले की हलचल। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: जिले की हलचल आज सुनिए वाराणसी और मऊ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का।
1: काशी के सांसद एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में सर्वाधिक दिनों तक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर वाराणसी में उत्सव का माहौल रहा। इस मौके पर वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। सर्वाधिक समय तक जनता द्वारा चुने गए जननायक के रूप में उनका यह कार्यकाल हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। इस अवसर पर नगर निगम द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी का आंदोलन बनाकर देश में स्वच्छता के प्रति नई चेतना पैदा की है। प्रधानमंत्री के सबसे अधिक दिनों तक देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर परमानंदपुर मिनी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। खिलाड़ियों ने बताया कि डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिग्रा में स्थापित किए जा रहे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का लाभ भी इस वर्ष से खिलाड़ियों को मिलने लगेगा, जिससे वाराणसी और पूर्वांचल के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध हो सकेगा, जिससे खेल वातावरण को नई ऊर्जा मिलेगी। वाराणसी में 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में रूस, इथोपिया और मिस्र हाइब्रिड मोड में शामिल हुए। बैठक में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधियों ने भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत से गहराई से प्रभावित नजर आए। भ्रमण के दौरान अतिथियों ने मूल गनकुटी विहार, धम्मिक स्तूप तथा अन्य ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया। सारनाथ की शांत एवं आध्यात्मिक वातावरण ने विदेशी मेहमानों को विशेष रूप से आकर्षित किया। प्रतिनिधियों ने यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से जाना। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना था।
2: ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है, और कल्चर के अगर लोगों को हम अपना कल्चर जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ भी नहीं आए। तो हम चाहते हैं कि हम जो भी कल्चर के बारे में बात करते हैं उसको हम दिखाएं भी।
1: प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घोषित पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश 4 में से 3 श्रेणियों में प्रथम स्थान पर रहा है। वाराणसी में आयोजित समीक्षा बैठक में पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति पर चर्चा की गई। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में वाराणसी देश में 11वें स्थान पर है और इसे प्रथम स्थान पर पहुंचाने के लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में वाराणसी इस योजना में और बेहतर प्रदर्शन करेगा। बैठक में सौर ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया। हनुमंत रिन्यूएबल द्वारा सोलर दीदी और सोलर सखी पहल के तहत महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की सराहना की गई। कंपनी द्वारा महिलाओं को 14,000 रुपए से अधिक मासिक वेतन पर नियुक्त किया गया है। वहीं यूपी नेडा और डूडा ने प्रत्येक सोलर इंस्टॉलेशन पर सोलर दीदियों को अतिरिक्त 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। मंत्री ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना न केवल लोगों के बिजली के बिल को कम कर रही है, बल्कि अतिरिक्त बिजली उत्पादन के माध्यम से आय का स्रोत भी बन रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लाखों लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और उनके बिजली खर्च में भी उल्लेखनीय कमी आई है। बिजली आपूर्ति के संबंध में उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी 20 से 21 घंटे तथा शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। आंधी और तूफान के कारण कहीं तार टूटने जैसी समस्या आती है, लेकिन विभाग की टीमें तत्काल मरम्मत कर बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटी रहती।
0: वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मऊ जिले की हलचल। आलेख है आजाद नोमानी का।
3: मऊ जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत दिनों जनपद के मधुबन की ऐतिहासिक और शहीदी धरती पर विकास की एक नई इबारत लिखी। मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित एक विशाल जनसभा में 392 करोड़ से अधिक लागत की 114 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, डेमो चेक, डेमो चाबी का वितरण भी किया गया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन तथा गोद भरा

एवं प्राशन का कार्य भी किया गया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मऊ के गौरवशाली इतिहास को याद किया। जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र की ताकत का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जब आप अच्छे लोग चुनकर भेजते हैं तो एक अच्छी सरकार बनती है, और जब अच्छी सरकार आती है तो अपने साथ बिना किसी भेदभाव के विकास लेकर आती है। उन्होंने कहा कि जब एक सड़क, अस्पताल, पुल या बाल सुरक्षा का काम होता है तो किसी भी जात को पूछकर लाभ नहीं देता। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बिना किसी सिफारिश के उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ से अधिक जरूरतमंद लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज की गारंटी मिली हुई है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत यदि किसी इंसान या बटाईदार के साथ कोई अनहोनी होती है तो सरकार के जनप्रतिनिधि मात्र 24

0: कोई अनहोनी होती है तो सरकार के जनप्रतिनिधि मात्र 24 घंटे के भीतर पीड़ित परिवार के घर जाकर 5 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपते हैं। श्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि
1: आज प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को तो हमने आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा दी है और निरंतर उसमें वृद्धि की जा रही है, हर गरीब को ये सुविधा मिलेगी।
0: कार्यक्रम के बाद श्री योगी ने ताजोपुर स्थित ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए देश के वीर जवानों, भूतपूर्व सैनिकों और ग्रामीण जनता के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मऊ जिले के प्रभारी एवं प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। सरकार की उपलब्धियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर उन्हें आमजन तक पहुंचाना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और वर्ष 2029 तक प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा नेतृत्व प्राप्त हुआ है, जिनके मार्गदर्शन में विकास एवं सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। बैठक में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तिथिवार समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और सम्मान की भावना के अनुरूप सभी कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। बैठक में जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने प्रभारी मंत्री को अवगत कराया कि सभी कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए विभागवार जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी गई हैं। केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों के व्यापक प्रचार प्रसार की कार्य योजना तैयार कर ली गई है और सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। मऊ में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद में संचालित एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने अपने आवास और वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत चयनित मुख्य कार्यक्रम स्थल बापू इंटर कॉलेज कोपागंज में पौधारोपण कर जनपदवासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वृक्ष न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य की आधारशिला भी है। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला सैनिक बंधु की बैठक हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पूर्व सैनिकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी पूर्व सैनिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने कुशमौर स्थित अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो का भ्रमण कर संस्थान द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न शोध कार्यों, जैव प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों और किसानों के लिए विकसित की जा रही उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। सुबह के 9:25 हुए हैं। समय है पुरानी फिल्मों से गीतों के कार्यक्रम गीत मंजूषा का।

आर पार फिल्म से अभी आपने सुना कार्यक्रम का पहला गीत। गीत को गाया था गीता दत्त ने, गीत लिखा था मशहूर सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया था ओपी नैयर ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सीआईडी से। गीत को गाया है शमशाद बेगम ने, शब्द रचना मशहूर सुल्तानपुरी की है, संगीत रचना ओपी नैयर की।

शमशाद बेगम की आवाज में अभी आपने सुना सीआईडी फिल्म का गीत। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना को संगीतबद्ध किया था ओपी नैयर ने। कार्यक्रम में आप सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में हावड़ा ब्रिज फिल्म का गीत। कमर जलालाबादी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने।

पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम गीत मंजूषा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। अभी आपने गीता दत्त की आवाज में हावड़ा ब्रिज फिल्म का गीत सुना। कमर जलालाबादी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था ओपी नैयर ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म छलिया से। गीत को गाया है मुकेश ने, शब्द रचना कमर जलालाबादी की है, संगीत रचना कल्याण जी आनंद जी की।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में अभी आपने सुना मुकेश की आवाज में छलिया फिल्म का गीत। कमर जलालाबादी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम गीत मंजुषा अब यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, अब समय हो चला है लोक संगीत के कार्यक्रम का। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं आशा कटारा को। इनके साथ संगीत कलाकार हैं हारमोनियम पर गोपाल सिंह परमार, ढोलक पर राधा मोहन शर्मा, बांसुरी पर ज्वाला प्रसाद।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आशा कटारा को। इनके साथ संगीत कलाकार थे हारमोनियम पर गोपाल सिंह परमार, ढोलक पर राधा मोहन शर्मा और बांसुरी पर ज्वाला प्रसाद। इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुर सरिता का।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म जिस्म से। गीत को गाया है के ने। गीत लिखा है सईद कादरी ने, संगीतबद्ध किया है MM करीम ने,

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: अरे भाई रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ क्यों रिस्क ले रहे हो ट्रेन कभी भी आ सकती है पहले उसे जाने दो फिर आराम से पार कर लेना
2: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें याद रखें नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है
3: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी
4: अब सुनते हैं सुनीति चौहान को फिल्म चमेली में इरशाद कामिल की रचना को संगीतबद्ध किया है संदेश शांडिल्य ने

राहत फतेह अली खान को अभी आप सुन रहे हैं फिल्म पाप में। गीत को लिखा है अमजद इस्लाम अमजद ने, संगीतबद्ध किया है साही ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से। आवाज है शेख घोषाल फरहान सईद की। कुमार के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है फरहान सईद ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत अभी आपने सुना फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से। गीत को गाया था श्रेया घोषाल फरहान सईद ने। कुमार के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था फरहान सईद ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 हुए हैं। समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर सत्यभान शर्मा को। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग अलैया बिलावल।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सत्यभान शर्मा का गाया राग अलहैया बिलावल। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा। पूर्वाहन के 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आपके साथ रेडियो की विशेषता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

तो कहिए कैसे हैं आप सब। अच्छा ये तो बताइए, रेडियो तो ऑन है ना आपका। भाई अपनी अपनी जगह पर जम कर बैठ जाइए और अपने दिल के वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और साथ ही साथ रेडियो के वॉल्यूम को भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम आज के कलाकार। और मैं हाजिर हूँ लेकर एक ऐसे फनकार की कहानी जिसने आपके और हमारे हेडफोन को पिछले 20 सालों से अपनी उंगलियों पर नचाया है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे। रे बाबा, नाम तो मैं अभी नहीं बताने वाली, थोड़ा सस्पेंस भी तो जरूरी है ना। अच्छा एक बात बताइए, जब आप किसी लंबे सफर पर अकेले निकल जाते हैं और कान में लीड लगाकर खिड़की से बाहर देखते हैं, तब बैकग्राउंड में वो जो गिटार की धुन बजती है, वो धुन जो आपको सीधा पुरानी यादों की गली में ले जाती है, उस धुन को किसने बनाया है? या फिर जब अचानक से आपका मासूम सा दिल टूट जाता है और आधी रात को कोई सूफी गाना

आपके आंसुओं का साथी बन जाता है। या फिर याद कीजिए शनिवार की रात को, जब दोस्तों के साथ पार्टी में वो एक खास गाना ना बजे जिस पर आपके पैर ना थिरक पाए। इन सारे गानों के पीछे आखिर है कौन? एक ऐसा इंसान जिसके बाल हमेशा बिखरे रहते हैं, जो सादगी की जीती जागती मूरत है, लेकिन जब वो अपने कीबोर्ड पर उंगलियां फिराता है तो पूरा देश झूम उठता है, जिसके गानों में बंगाल का जादू भी है और मुंबई की रफ्तार भी। जी हाँ, सही पहचाना आपने। आज हम बात कर रहे हैं हम सब के चहेते सुरों के जादूगर और बॉलीवुड के मेलोडी किंग प्रीतम चक्रवर्ती की, जिन्हें दुनिया और हम सब प्रीतम दा के नाम से जानते हैं।

इस गीत को सुनकर आपकी भी पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी, है ना? सच बताया जाए तो इस गीत ने एक समय में पूरे देश में धूम मचा रखी थी। हर किसी की जुबान पर बस यही गीत था। पर साथियों, क्या आप जानते हैं कि आज जो प्रीतम दा करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं, उनका बचपन कैसा था? क्या हमेशा से ऐसा ही था? चलिए आज क्यों ना उनके बचपन के दिनों की सैर कर ली जाए। तो चलिए चलते हैं कोलकाता। हाँ हाँ, कोलकाता के एक बहुत ही सीधे साधे मिडिल क्लास परिवार में प्रीतम का जन्म हुआ। उनके पिता प्रबोध चक्रवर्ती खुद संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे और बच्चों को संगीत सिखाया भी करते थे। अब ये तो आप समझ ही सकते हैं कि प्रीतम दा को सुर और ताल विरासत में ही मिल गए थे। घर में हर वक्त गिटार, तबले और हारमोनियम की आवाज गूंजती रहती थी। लेकिन जरा सोचकर देखिए, क्या सिर्फ घर में या परिवार में माहौल होने से कोई इतना बड़ा स्टार बन जाता है? नहीं ना, असली खेल तो तब शुरू हुआ जब वो बड़े हुए। उन्होंने पढ़ाई की कोलकाता के मशहूर प्रेसिडेंसी कॉलेज से, लेकिन दिल तो हमेशा म्यूजिक के लिए धड़कता था। तो इसके बाद वो चले गए पुणे की मशहूर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट यानी FTII में, जहां उन्होंने साउंड इंजीनियरिंग सीखी। अब आप पूछेंगे कि मुंबई का सफर कैसा रहा? तो भाई देखिए, मुंबई कभी भी किसी के लिए भी पलके बिछाकर नहीं बैठती। प्रीतम दा को भी यहां खूब पापड़ बेलने पड़े। शुरुआत में फिल्मों में काम नहीं मिला तो उन्होंने विज्ञापनों के लिए जिंगल्स बनाना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे विज्ञापन हैं जिनकी जिंगल्स में आपने प्रीतम दा की धुनें जरूर सुनी होंगी, और अगर आज भी आप उन्हें सुनेंगे तो जानेंगे कि वो मजेदार धुनी इसी लड़के ने बनाई थी जो कोलकाता से आया था।

साथियों, प्रीतम दा जब बॉलीवुड में आए तो उन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया और वो ट्रेंड था सूफी रॉक का ट्रेंड। गिटार के साथ जब सूफी बोल मिलते थे तो सुनने वाले बस आंखें बंद करके खो जाते थे, और आज भी ऐसा ही होता है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि प्रीतम दा के म्यूजिक में ऐसा क्या है कि जो हर उम्र का इंसान उन्हें पसंद करता है? चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है वैरायटी, यानी विविधता। अब एक तरफ तो वो धूम और रेस जैसी फिल्मों में ऐसा धाकड़ और वेस्टर्न म्यूजिक देते हैं कि आप थिरकने पर मजबूर हो जाएं, जिसके पैर ना उठते हों थिरकने के लिए वो भी थिरकने लगे, और दूसरी तरफ जब वो बर्फी जैसी फिल्म करते हैं तो बिल्कुल बदल जाते हैं। बर्फी फिल्म का संगीत तो याद है ना आपको? ऐसा लगता था जैसे हम पुरानी दुनिया के किसी खूबसूरत हिस्से में घूम रहे हों, जहां वायलिन बज रहा है, एकॉर्डियन बज रहा है। प्रीतम दा ने दुनिया भर के म्यूजिक को लिया और उसे हमारे देसी अंदाज में ऐसा घोला कि वो अपने आप में जादू बन गया, और वही जादू है जो हम पर चल जाता है। इसीलिए हर उम्र का व्यक्ति प्रीतम दा के म्यूजिक को पसंद करता है। प्रीतम दा ने अपनी गलतियों को भी हमेशा सुधारा और उन पर काम किया, ये भी उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। फिल्म ए दिले मुश्किल हो, दंगल हो, ब्रह्मास्त्र हो, या फिर बहुत सारी फिल्में जिसमें प्रीतम का संगीत है। कुछ संगीत ऐसा भी है जिसके लिए आलोचकों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई, और इसे ही कहते हैं असली कलाकार, जो अपनी गलतियों से सीखकर खुद को सुधार ले और कभी

इस गीत को सुनने के बाद आपके होठों पर भी जरूर मुस्कान बिखर आई होगी, है ना? यही तो है प्रीतम दा के सुरों का जादू। अच्छा दोस्तों,

एक बड़ा मजेदार सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। अगर आपको प्रीतम दा की किसी तस्वीर की कल्पना करनी हो, अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? वही ना, बढ़े हुए बाल, आंखों पर चश्मा, थोड़े बिखरे बिखरे से और हाथ में गिटार। बिल्कुल सही कल्पना की है आपने। गिटार तो जैसे

प्रीतम सिर्फ गाने नहीं बनाते, वो सिंगर्स की किस्मत भी बदलते हैं। आज जो अरिजीत सिंह पूरे देश की धड़कन बने हुए हैं, उन्हें पहला बड़ा ब्रेक देने वाले प्रीतम दा ही थे। मोहित चौहान की आवाज का रूहानी इस्तेमाल हो या फिर मीका सिंह का कोई गाना, प्रीतम जानते हैं कि किस गले से कौन सा सुर सबसे बेहतरीन निकलेगा। आज बॉलीवुड का हर छोटा बड़ा सिंगर बस यही सपना देखता है कि किसी तरह बस एक बार प्रीतम के स्टूडियो से एक बार बुलावा आ जाए। क्या आपके पास भी कोई ऐसा गाना है प्रीतम दा का जो आपके फोन की प्लेलिस्ट में हमेशा लूप पर बजता रहता है? सोचिए सोचिए, तब तक हम सुनते हैं अरिजीत और प्रीतम की जुगलबंदी का ये लाजवाब नगमा।

सुरीला एहसास है ना? अच्छा, आपको क्या लगता है प्रीतम दा का पसंदीदा वाद्य यंत्र कौन सा होगा? जाहिर सी बात है, जितने भी हमने उनके गीत सुने हैं उनमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि गिटार जरूर उनका पसंदीदा होगा। उनके लगभग हर गाने में गिटार की एक अलग ही प्रधानता होती है। उन्होंने बॉलीवुड को रॉक बैंड वाले कल्चर से रूबरू कराया। ये बात तो हम आपको बता ही चुके हैं कि लाइफ इन अ मेट्रो, उस फिल्म में वो अपने बैंड के साथ पर्दे पर नजर आए थे और ये इस तरह का पहला प्रयोग था। चलते चलते हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि कलाकार वो नहीं होता जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बने, कलाकार वो हैं जो भीड़ को अपने पीछे चलने पर मजबूर कर देते हैं। प्रीतम चक्रवर्ती ने अपनी धुनों से न सिर्फ चार्ट बस्टर दिए बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन को एक लय भी थी। उनकी सादगी, उनका वो हमेशा उलझा हुआ सा दिखने वाला अंदाज और उनके सुलझे हुए सुर, यही है उनकी असली पहचान। आशा है आज के कलाकार में प्रीतम दा के साथ बिताए ये पल आपको पसंद आए होंगे। उनकी धुनों का ये सफर तो जारी रहेगा क्योंकि संगीत कभी खत्म नहीं होता, वो तो बस एक रूह से दूसरी रूह में सफर करता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी विशेषता शर्मा को अब दीजिए इजाजत।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए आप सुनते हैं समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ रेडियो की विशेषता, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। साथियों, जिंदगी के खूबसूरत रास्तों पर चलते हुए जब यादों का कारवा गुजरता है तो दिल से बस एक ही आवाज आती है कि क्यों ना कुछ बातें हो जाए और कुछ प्यारे से गीत गुनगुना लिए जाए। इसीलिए हम हर रोज ले आते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। साथियों, आज बातों का सिलसिला वहां से शुरू करते हैं जहां से अमूमन दिल के सारे रास्ते गुजरते हैं। जब हमारे दिल में कोई बसता है तो उसकी शुरुआत भी वहीं से होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंखों की। आंखें जो दिल का आईना होती हैं। सदियों से शायरों ने, कवियों ने इन आंखों पर क्या कुछ नहीं लिखा। कोई अपनी महबूबा की काली काली कजरारी आंखों का दीवाना होता है तो कोई किसी झील से नीली आंखों में बस डूब जाना चाहता है। किसी को सागर सी गहरी नीली आंखें बेचैन कर देती हैं तो कोई कहता है कि आंखें खुली हों या बंद, दीदार तो बस उनका ही होता है। सच ही तो है, बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने बस आंखों ही आंखों में लोग न जाने कितने इशारे कर लेते हैं। लेकिन सदियों का सफर पल भर में तय कैसे हो पाता है? आंखों से ही ना। आंखें बोलती हैं, आंखें मुस्कुराती।

रखा ही क्या है भाई, ये है ही इतनी खूबसूरत। ये वही आंखें हैं जो बोलती हैं, मुस्कुराती हैं, रोती हैं। लेकिन साथियों, जरा सोचिए, क्या खुदा की बनाई इस कायनात में हर आंख, हर चेहरा एक जैसा होता है? रंग रूप का ये जो ताना बाना कुदरत ने बुना है, क्या वो सब पर एक जैसा लागू होता है? नहीं ना, आपकी आंखें अलग हैं, मेरी अलग। इसी खूबसूरती और इसी विविधता के बीच आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो हमारी सोच के चश्मे को थोड़ा सा साफ करेगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसे समझना हमारे लिए और आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जानते हैं आज जो बातें हम करने जा रहे हैं उनका विषय क्या है? उनका विषय है रंगहीनता, यानी एल्बिनिज्म। ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, बल्कि सिर्फ कुदरत का एक अनूठा रंग है। तो आइए इसी सफर पर आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हम आंखों की गहराइयों से होकर गुजरे हैं। आंखों का रंग हमने देखा कि नीला होता है, किसी का कत्थई होता है, किसी का काला होता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जिसकी त्वचा, जिसके बाल और जिसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हों या बहुत हल्के रंग की हों, जिन्हें देखकर अक्सर लोग मुड़ मुड़ कर देखने लगते हैं? जी हाँ, चिकित्सा विज्ञान की भाषा में इसे ही एल्बिनिज्म या रंगहीनता कहा जाता है। जब आपके जहन में एक सवाल उठे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ये बीमारी है या कुछ और, क्या ये छूने से फैलती है, वहीं से शुरुआत होती है जागरूकता की। तो चलिए आज आपके कुछ सवालों के जवाब हम ही दे देते हैं। देखिए, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में एक तत्व होता है जिसे हम मेलानिन के नाम से जानते हैं। यही मेलानिन तय करता है कि हमारे बालों का रंग काला होगा या भूरा, आंखों का रंग कत्थई होगा या नीला या काला, या हमारी त्वचा का रंग कैसा होगा। लेकिन जब किसी के शरीर में जन्म से ही मेलानिन का निर्माण बहुत कम होता है या बिल्कुल ही नहीं होता, तो उसी को हम एल्बिनिज्म कहते हैं। और ये कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, ये विशुद्ध रूप से एक आनुवांशिक स्थिति है, एक जेनेटिक कंडीशन है, यानी ये माता पिता के जीन्स के जरिए बच्चों में आती है। तो फिर समाज में इसे लेकर इतना डर, इतना भ्रम क्यों है? क्यों लोग इनसे दूरी बनाने लगते हैं? सोचिए सोचिए। आवश्यकता है कि हम इस भ्रम को ना फैलाएं, बल्कि आंखों ही आंखों में इशारा करके एक दूसरे को ये समझाएं कि भाई, ये कोई संक्रामक रोग नहीं है और ना ही बार बार किसी को मुड़ मुड़ कर देखने वाली बात है। तो अब की बार जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे, तो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से इशारा जरूर कीजिएगा कि ये कुछ भी अलग नहीं है।

जी हाँ साथियों, जहाँ आंखों ही आंखों में इशारा करके हमें एक दूसरे को ये बताने की ज़रूरत है कि ये कोई अलग से नहीं है बल्कि हम ही में से एक है, वहीं इसकी जगह हम आंखों ही आंखों में इशारा करके इन लोगों के लिए बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा कर देते हैं, दूरी बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में आज भी जागरूकता की कमी है। हम में से ही कुछ लोग अज्ञानतावश ये मान बैठते हैं कि ये कोई संक्रामक रोग है, यानी छूने से, साथ उठने बैठने से या साथ खाना खाने से ये हमें भी हो सकता है। पर सच क्या है ये तो जान लीजिए। सच ये है कि ये पूरी तरह से गलतफहमी है। एल्बिनिज्म कोई संक्रामक रोग यानी छुआछूत की बीमारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये किसी को छूने से, किसी को गले लगाने से या उनके साथ वक्त बिताने से बिल्कुल नहीं फैल सकता। सोचिए, जब कुदरत ने उन्हें अपनी मर्जी से एक अनोखा रूप दिया है तो हम कौन होते हैं उनके इस रूप पर उंगली उठाने वाले। लेकिन अफसोस, जानकारी के अभाव में समाज का रवैया कई बार बहुत उदासीन और भेदभावपूर्ण हो जाता है। स्कूल हो, कॉलेज हो या दफ्तर, लोग इन्हें अजीब नज़रों से देखते हैं। कई बार हम गलती से मजाक भी उड़ा देते हैं। लेकिन क्या ये सही है? आपका दिल क्या कहता है? यकीनन आपका दिल भी यही कहेगा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इन लोगों को हमारी हमदर्दी या दया की जरूरत नहीं है। इन्हें जरूरत है तो बस हमारे साथ की, हमारी बराबरी की। इन्हें कोई अलग से ट्रीट करने की जरूरत भी नहीं है। ये हमारे ही जैसे हैं, बिल्कुल हमारे जैसे हैं। तो ऐसा क्यों करना है? तो आइए इस बात को दिल में उतारते हैं और सुनते हैं जिंदगी के रंगों को समेटता हुआ ये प्यारा सा गीत।

तो जनाब, अगली बार जब आप ऐसी आंखें देखें तो सारी दुनिया भूलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी दुनिया का ही हिस्सा है। हम आपको बता दें कि हमारे ऐसे भाई बहनों को समाज के भेदभाव के अलावा कुछ शारीरिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि इनके शरीर में मेलानिन नहीं होता, और आप जानते हैं कि ये जो मेलानिन होता है ना, ये हमारी त्वचा को सूरज की जो खतरनाक पराबैंगनी किरणें यानी यूवी रेज होती हैं उनसे बचाता है। अब क्योंकि इनके पास सुरक्षा कवच नहीं होता, इसीलिए इन्हें धूप में निकलने पर बहुत परेशानी होती है। इनकी त्वचा बहुत संवेदनशील होती है और इन्हें स्किन कैंसर का खतरा आम लोगों से ज़्यादा होता है। इसके अलावा मेलानिन का सीधा संबंध हमारी आंखों की रोशनी से भी होता है। यही वजह है कि एल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों की नज़र अक्सर थोड़ी सी कमज़ोर होती है, उन्हें रोशनी में देखने में दिक्कत होती है। अब आप ही बताइए, जो इंसान पहले से ही कुदरत की इस चुनौती से जूझ रहा हो, क्या उसे समाज की बेरुखी की

धूप में झुलसना सही है? क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम उनके लिए एक छांव की तरह काम करें, उन्हें सहारा दें, उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर दें, उनके साथ समानता का व्यवहार करें? बिल्कुल बनता है। जब हम उन्हें गले लगाएंगे, उन्हें अपनाएंगे, तभी तो वो भी समाज में सिर उठाकर जी सकेंगे। चलिए इसी खूबसूरत सोच के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, चलते चलते बात फिर वहीं आ रुकती है जहां से आज के सफर की शुरुआत हुई थी। शुरुआत हुई थी आंखों से, वही आंखें जो कभी किसी की महबूबा की आंखों का दीवाना बनकर धड़कती हैं, कभी सागर और झील सी नीली गहरी आंखों के जादू में खो जाती है, वही आंखें जिनमें बंद होकर भी महबूब का दीदार मुमकिन होता है और जो बिना कुछ कहे आंखों ही आंखों में मोहब्बत के लाखों इशारे कर जाती हैं। जब आंखें इतनी पाक, इतनी खूबसूरत और इतनी मुकद्दर हों, तो फिर क्यों ना हम अपनी इन्हीं आंखों में एक नया नजरिया पैदा करें। एक ऐसा नजरिया जो किसी चेहरे के सफेद रंग को देखकर चौंके नहीं, बल्कि उस चेहरे के पीछे छुपे एक खूबसूरत इंसान को देख सके। आइए अपनी आंखों को वो पाकीजगी दें कि जब ये आंखें किसी एल्बिनिज्म से प्रभावित शख्स को देखें तो

उनमें उपेक्षा के बजाय अपनेपन का भाव हो, भेदभाव के बजाय बेपनाह मोहब्बत का दीदार हो। जी हाँ, हम आपसे आशा तो यही करते हैं, अब सब आपके ऊपर है। तो आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा है कि ये बातें आपके दिलों के दरवाजे को जरूर खटखटाएंगी। तो अब मुझे यानी अपनी दोस्त को दीजिए इजाजत, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम लोक मंजरी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गोपाल सिंह परमार के गाए हुए लोकगीत। आइए सुनते हैं ये पहला लोकगीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक मंजरी, और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गोपाल सिंह परमार के गाए हुए लोकगीत।

इस लोकगीत के साथ ही लोक मंजरी का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आज आप गोपाल सिंह परमार के गाए हुए लोकगीत सुन रहे थे। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। सबसे पहला गीत हमने लिया है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। बोल जावेद अख्तर के हैं, संगीत शंकर एहसान लॉय का। फिल्म का नाम है कुछ ना कहो।

कुछ ना कहो। जी हाँ, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। आइए आप सुनते हैं शान और कैलाश खेर की आवाज में फना फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीत से संवारा है जतिन ललित ने।

इस गीत को हमने लिया था फिल्म फना से। आवाजें थी शान और कैलाश खेर की, प्रसून जोशी के बोल थे और धुन बनाई थी जतिन ललित ने। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में समीर के बोल। धुन बनाई है संदेश शांडिल्य ने, फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम।

अभी आप सुन रहे थे संदेश चांडले के संगीत निर्देशन में समीर की बोल। आवाजें थी अलका याग्निक और सोनू निगम की। फिल्म का नाम था कभी खुशी कभी गम। नए तराने का अगला तराना सोल्जर फिल्म से। आवाज अलका याग्निक की है बोल समीर के, और गीत को धुन में बांधा है अनु मलिक ने।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म और प्यार हो गया से। आवाज थी उदित नारायण की, बोल जावेद अख्तर के थे और संगीत नुसरत फतेह अली खान का। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक एक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi leaves for France and Slovakia on a six-day visit. Mr. Modi will participate in the G7 summit on the 16th and 17th of this month. In his departure statement, Mr. Modi emphasized that India's presence at the G7 reflects the trust India's partners place in the country's growing global profile. He said this is the eighth consecutive G7 summit to which India has been invited. Mr. Modi also highlighted that France has a special place in India's strategic vision. Mr. Modi said the focus of the visit will be on boosting economic as well as cultural linkages between India and France. Mr. Modi will also go to Slovakia for a two-day visit. He noted that this historic visit builds on the strong momentum in the bilateral relationship of both the countries. Prime Minister Modi will meet Slovakian President Pellegrini and Prime Minister Fico in Bratislava. Prime Minister Modi says India's youth are making their mark across various sectors from science and technology to manufacturing, space, semiconductors and drones. In a social media post, Mr. Modi emphasized that India is among the world's leading startup destinations and many of these success stories are being scripted Yuva Shakti and that too from smaller towns and villages. He also lauded the youth for bringing immense glory to the nation in the field of sports and for contributing to various areas that will shape the future of India and the world. President Draupadi Murmu today attended the passing out parade at the Indian Military Academy in Dehradun, Uttarakhand. This year's passing out parade was historic as for the first time, women cadets passed out alongside gentlemen cadets from the academy. Addressing the grand ceremony, President Murmu said she is especially delighted to see 9 women cadets. She further said it is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development.
3: I am especially delighted to see 9 women cadets. This is a watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India.

0: हजार स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक कर्ज की पहली किस्त, 26,800 वेंडर्स को दूसरी किस्त और 5,000 स्ट्रीट वेंडर्स को तीसरी किस्त अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि तब्दील होते हिंदुस्तान में स्कीमें गरीबों, खवातीन, नौजवानों और किसानों को मानवन है। उन्होंने कहा,
1: मोदी जी ने ग्रामीण अभिलेख के माध्यम से घरौनी की योजना प्रारंभ की और घरौनी वितरण का कार्यक्रम हर गरीब के लिए। देश के अंदर 3 करोड़ परिवारों को जहां पे उसका आवास है वहां का मालिकाना अधिकार मिला और ये सर्वी अधिकार महिलाओं को उपलब्ध करवाए मोदी के लिए। 3 करोड़ लखपति दीदी, 10 करोड़ महिला स्वयं सेवी समूह के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने का कार्य अद्भुत है, चमत्कारिक है, पूरी दुनिया अभिनंदन कर रही है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में मुल्क ने गुज़िश्ता 12 सालों में अहम तब्दीलियां देखी हैं, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर कार फरमा है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज गुज़िश्ता 12 सालों में अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों को उजागर करने वाले खसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। आज हम मुल्क के सकाफती विरसे को मजबूत बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों पर बात करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है।
0: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान का दौरानिया 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। नजरे सानी शुदा औकात 2 बजे से शाम 5:15 तक होंगे। नजरे सानी शुदा इम्तिहान की मुद्दत में लाजमी इम्तिहान की रस्मी कार्रवाइयों के लिए दरकार वक्त शामिल है। और जौनपुर, उन्नाव, अयोध्या, सुल्तानपुर, रायबरेली, लखनऊ समेत कर्बोजवार के इजला में तेज हवाओं और कल से रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है, जिससे आवाम को शदीद गर्मी से राहत मिली है और जायद की फसलों को फायदा हासिल हो रहा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में रियासत के मशरकी और मगरबी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का कयास जाहिर किया है। दरियासना, उत्तराखंड में पहाड़ों पर हुई बारिश की वजह से पीलीभीत जिले में शारदा नदी की आबी सतह में काफी इजाफा हो रहा है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, आइए आप सुनते हैं बहनों का कार्यक्रम पनघट।

राम राम बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पनघट में। और मैं हूं आपकी रेडियो बहन सोमा जैन। भाई, पूरे सप्ताह भर बाद कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होती है और बातें भी होती हैं। तभी तो बीता सप्ताह कैसा रहा और आने वाले सप्ताह के दिनों में क्या खास है, इस पर हम कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। तो आज की भी चर्चा इसी पर है। बेनो, आप परिवार की शक्ति हैं। आपके एक अच्छे व्यवहार से घर का वातावरण बदल सकता है। आप खुश हो तो सब खुश है, और आपकी खुशी घर को जो है वो बहुत अच्छा माहौल देती है। साथ ही साथ आपकी जो खुशी होती है ना, वो घर के अन्य सदस्यों में होती है, क्योंकि जब सब खुश होते हैं तो आप खुश होती हो, जिसमें घर के बुजुर्ग भी आते हैं। बहनों, आने वाले एक दिन बाद यानी कि 15 जून सोमवार को पूरे विश्व में बुजुर्गों के

सम्मान, सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। इसलिए आज हम भी आपसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे बुजुर्ग परिवार की जड़ होते हैं। जिस प्रकार पेड़ की जड़ मजबूत होती है तो पूरा पेड़ हरा भरा रहता है, उसी प्रकार परिवार में बुजुर्ग का सम्मान पूरे परिवार को मजबूत बनाता है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। शहरों में तो संयुक्त परिवार की ये परंपरा बहुत पहले से ही खत्म हो गई थी, पर अब तो हमारे गांव में भी ये खत्म होते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ताऊ ताई सबके बच्चे एक साथ रहा करते थे। ऐसे में जहाँ परिवार में बच्चों को संस्कार मिलते थे, वहीं सबके साथ रहने का, दूसरों के लिए त्याग करने का पाठ भी वो सीखते थे। लेकिन अब एकल परिवार और उस पर जीवन की भागदौड़ बढ़ गई है। मोबाइल, टीवी और काम के काज के बीच कई बार हम अपने बड़ों को समय देना भूल जाते हैं। कई बार हम उनकी बातों को अनदेखा कर देते हैं, उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते और यही स्थिति आगे चल के उनके मानसिक कष्ट का कारण बनती है। मैंने अक्सर लोग समझते हैं कि मारपीट ही दुर्व्यवहार है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुजुर्गों को अपमानित करना, उनकी बातों को नज़रअंदाज करना, उन्हें अकेला छोड़ देना, उनकी ज़रूरतों की अपेक्षा करना, उनकी संपत्ति पर दबाव डालना या उनके मानसिक रूप से उन्हें बहुत परेशान कर देना, ये भी दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है। कई बार तो हमारे ये अपने बड़े बूढ़े अपने दर्द को किसी से कह नहीं पाते और चुपचाप धीरे धीरे वो सब कुछ सहन करते रहते हैं। परिवार में हम महिलाएं परिवार का केंद्र होती हैं। यदि घर की बहू बेटी या माँ बुजुर्गों का सम्मान करती हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं। कहा जाता है कि बच्चे हमारी बात कम और हमारे व्यवहार को ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए याद रखो कि अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारा सम्मान करे तो हमें आज अपने बुजुर्गों का सम्मान करना होगा। भारतीय संस्कृति में हमेशा बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता रहा है। सुबह उठकर बड़ों का अभिवादन करना, उनसे आशीर्वाद लेना, उनके अनुभवों से सीखना, ये हमारी परंपरा रही है। मैंने जब हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो केवल एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि अपनी पूरी संस्कृति का सम्मान करते हैं। याद रखो बहनों कि वृद्ध अवस्था में लोगों को केवल दवा और भोजन की ही नहीं बल्कि उन्हें चाहिए सम्मान, अपनापन, बातचीत, साथ, सुरक्षा, प्रेम। कई बार 5 मिनट बैठकर उनकी बातें सुन लेना भी उनके लिए बहुत बड़ी खुशी बन जाता है। तभी तो ज़रूरी है कि हम उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें, उनकी बातें धैर्य पूर्वक सुने, उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने दें और हाँ, सबसे ज़रूरी, अपने बच्चों को भी बड़ों का सम्मान करना सिखाएं। कल हमें भी तो उसी अवस्था में आना है, इसीलिए हमेशा बुजुर्गों के प्रति रखें आदर भाव, उनका साथ दें, उन्हें प्रेम और सुरक्षा का एहसास कराएं। बहनों, परिवार की शान हमारे बुजुर्ग होते हैं, वही हमारे परिवार का भविष्य होते हैं हमारे बच्चे। बेटा हो या बेटी, दोनों बराबर हैं। उन्हें संस्कार देना, उन्हें शिक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। आज हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम अपने बेटों को बेटियों की इज्जत करना सिखाएं, उनकी सुरक्षा करना सिखाएं, क्योंकि बालिकाओं की सुरक्षा अब परिवार और समाज दोनों की साझा जिम्मेदारी है।
तो आइए इस विषय को

0: और अच्छे से समझते हैं, जानते हैं कि कैसे हम अपनी बालिकाओं की सुरक्षा कर सकते हैं सब मिलकर, और इस बात की जानकारी दे रही हैं वाणी शाह।
1: आज है राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। आज का दिन समाज की उस सबसे कीमती पूंजी को समर्पित है जिसके बिना न तो परिवार की कल्पना संभव है और न ही समाज की। बालिका दिवस को 24 जनवरी के दिन ही क्यों मनाते हैं, पहले ये जान लेते हैं। इसकी सबसे खास वजह ये है कि साल 1966 में 24 जनवरी के दिन ही हमने अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को पाया था। जी, इस दिन को बालिका दिवस के रूप में इसीलिए चुना गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की स्थापना 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस कदम का उद्देश्य लैंगिक असमानता, शिक्षा सीमाओं, स्कूल छोड़ने, बालिकाओं के स्वास्थ्य की देखभाल करने, बाल विवाह और लिंग आधारित हिंसा से जूझ रहे समाज में लड़कियों के सामने आने वाले

महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम रिबन और नारों तक सीमित नहीं रहेंगे, आज हम बात करेंगे जिम्मेदारी की, आपकी, मेरी, परिवार की और पूरे समाज की जिम्मेदारी, जो हम सब एक साथ मिलकर अगर जिम्मेदार हो जाएं, जिम्मेदारी अपनी अपनी बखूबी निभा लें तो समाज सफल हो सकता है। बालिका केवल एक शब्द नहीं है, जरा आंखें बंद करके सोचिए, एक नन्ही सी बच्ची, हंसी से भरी उसकी आंखें, सपनों से भरा उसका दिल। वो सिर्फ किसी की बेटी नहीं है, वो किसी की बहन है, किसी की दोस्त है और आगे आने वाले कल की नींव है। उसकी प्रसन्नता केवल उसके चेहरे की मुस्कान नहीं है, उसकी प्रसन्नता है उसके सपने देखने की आज़ादी, निर्भय होकर जीने का अधिकार और अपनी बात रखने का आत्मविश्वास। लेकिन ये सब अपने आप तो नहीं मिलता, इसके लिए परिवार और समाज दोनों को मिलकर प्रयास करने पड़ते हैं। जब समाज और परिवार मिलकर ये प्रयास करेगा तो हमारी बेटियां सशक्त बनेंगी। बालिकाओं की प्रसन्नता, उनकी सुरक्षा, उनका भविष्य परिवार और समाज की साझा जिम्मेदारी है। उसकी सुरक्षा की शुरुआत थाने से नहीं होगी, घर से होगी। कानून बाद में आते हैं, पहले आता है परिवार, उसका अपना परिवार। घर वो जगह है जहां बच्ची सीखती है कि वो कितनी खास है, वो कितनी मजबूत है और वो कितनी सुरक्षित है। परिवार को ये समझना होगा कि बेटी को संभालना नहीं है, उसे सशक्त बनाना है, उसे चुप रहना नहीं बल्कि बोलना सिखाना है। माँ बाप अगर दोस्त बन जाएं और बेटी बिना डर अपनी बात कह सके तो कई खतरे दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। बेटियों को सिखाएं कि ना कहना भी उनका अधिकार है, वो जब चाहे जिसे चाहे ना कह सकती हैं। किसी भी समस्या पर खुलकर बात करने का माहौल उनके घर में, उनके परिवार में ही बनेगा। बच्चों को अच्छे और बुरे की स्पर्श की जानकारी दें। आज की बालिका पढ़ी लिखी है, अपने निर्णय लेना चाहती है, तकनीकी समझती है, अपने अधिकार भी जानती है, सवाल पूछती है, फिर भी उससे सबसे पहले समझदारी की उम्मीद की जाती है और ये समझदारी अक्सर चुप रहने से जोड़ दी जाती है। कम बोलो, कम हंसो, कम बाहर जाओ, ऐसा क्यों होता है? ऐसे में हमें अपनी सोच को नए समय की अनुसार बदलने की जरूरत है। आज हम बार बार ये तो कह देते हैं कि बेटियां बोझ नहीं होती, लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम बेटियों को बिना शर्त स्वीकार करना सीख पाए हैं? आज भी कई घरों में बेटियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो समझदार बने, वो ही त्याग करें। राष्ट्रीय बालिका दिवस हमें ये याद दिलाता है कि बेटियों को सिर्फ सहनशील नहीं, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना भी उतना ही जरूरी है। अब समय आ गया है कि हम बालिका को सुरक्षा के दायरे में बंद करने के बजाय उन्हें सुरक्षित दुनिया बना कर दें। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि लड़कियां बाहर ना जाएं। जरूरत ये है कि समाज ऐसा बने जहां उन्हें डरने की जरूरत ही ना पड़े। आज की बालिका के लिए शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, उसे डिजिटल दुनिया की समझ भी हो, मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी हो और अपने निर्णय खुद लेने का अधिकार भी मिले। आज का दिन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम बालिकाओं को सिर्फ अच्छे अंक लाने की मशीन बना रहे हैं या उन्हें एक संपूर्ण इंसान बनने का अवसर भी दे रहे हैं। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा केवल उसके परिवार की ही जिम्मेदारी है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि जब लड़की घर से बाहर निकलती है तो उसकी सुरक्षा समाज के भी हाथ में होती है। तो सवाल ये उठता है कि समाज क्या कर सकता है? कर सकता है। कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाकर समाज बहुत कुछ कर सकता है। समाज का पहला कदम, गलत को देखकर चुप ना रहें। अगर कहीं कोई लड़की असहज महसूस कर रही है, अगर कोई उस पर गलत नजर डाल रहा है, तो समाज का हर व्यक्ति जिम्मेदार है कि वो आवाज उठाए। दूसरा कदम, लड़कियों को ही नहीं बल्कि लड़कों को भी सिखाना होगा

0: कि सम्मान क्या है, सीमा क्या होती है, इंसानियत क्या होती है। तीसरा कदम, सार्वजनिक जगहों को सुरक्षित बनाना होगा। अच्छी रोशनी हो, साफ रास्ते हो और लोगों की सतर्क मौजूदगी कई घटनाओं को रोक सकती है। चौथा कदम, आज की तकनीकी के जमाने में ऑनलाइन सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। बालिकाओं को डिजिटल दुनिया के खतरे और अधिकार दोनों की जानकारी देनी होगी। समाज को ये भी समझना होगा कि सुरक्षा का मतलब रोक टोक नहीं होता। लड़की को सुरक्षित रखने के नाम पर उसकी आजादी सीमित कर लेना क्या न्याय है? सुरक्षा तब होगी जब लड़की बिना डर घर से बाहर निकल सकेगी, और ये तब संभव है जब समाज मिलकर जिम्मेदारी निभाएगा, और ऐसा समाज हम सब मिलकर बना सकते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस का असली अर्थ तभी होगा जब हम बेटियों की उपलब्धियों पर हैरान होना बंद करेंगे और उन्हें सामान्य, स्वाभाविक और बराबरी का हिस्सा मानेंगे। हमें ये भी समझना होगा कि सशक्त बालिका केवल भविष्य नहीं है, वो आज है। आज वो स्कूल में है, वो खेल के मैदान में है, तकनीक में है और अपने सपनों के साथ आगे बढ़ रही है, उड़ना चाहती है। आइए इस राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम संकल्प लें कि हम केवल बातें ही नहीं करेंगे बल्कि अपने व्यवहार, अपनी सोच, अपने निर्णयों में बदलाव भी लाएंगे। क्योंकि जब बालिका आगे बढ़ती है तो केवल उसका परिवार ही नहीं, पूरा राष्ट्र आगे बढ़ता है।
1: तो बहनों, अभी आपने देखा कि देखिए अब बालिका दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि हम ये मानते हैं कि बालिकाओं की सुरक्षा आज परिवार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। और हर दिन ही बालिका दिवस है क्योंकि हर दिन समर्पित है देश की बेटी के लिए। बेटी हमारा मान होती है, सम्मान होती है, इसलिए अब ये साझा जिम्मेदारी है हमारी और समाज की कि हम अपने घर की बेटियों की सुरक्षा करें, उनका ध्यान दें। और अगर ऐसा नहीं किया हमने तो फिर तो इन बेटियों से माफ़ी ही मांगनी पड़ेगी और फिर सबको यही कहना पड़ेगा कि बेटी खता माफ़ कर मेरी, मैंने तेरा ध्यान डिगायो नहीं, थोड़ा गुनगुना के, थोड़ा गाकर।

तो बहनों, ऐसा ना कहना पड़े इसलिए बेटियों की सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, अपने बेटों को भी समझाएं कि सिर्फ उनकी बहनें नहीं बल्कि और बेटियां और जितनी भी इस गांव में अपने लड़कियां हैं उन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी सब की है। बहनों, ये अब हम जो है बात कर लेते हैं एक और बहुत ही जो खास दिन है उसके ऊपर। आज यानी 13 जून को हम एक बहुत ही विशेष दिन मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस। आज के दिन का उद्देश्य दुनिया भर में उन लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है जिनकी त्वचा, बाल और आंखों में प्राकृतिक रंगद्रव्य बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। इस स्थिति को ही अल्बिनिज्म या रंगहीनता कहा जाता है। हमारे समाज में कई बार किसी व्यक्ति के रंग रूप या शारीरिक विशेषताओं को लेकर तरह तरह की बातें की जाती हैं। कुछ लोग अज्ञानता के कारण ऐसे बच्चों या व्यक्तियों को अपशगुन, अभिशाप या ईश्वर का दंड तक मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि रंगहीनता कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक जन्मजात जैविक स्थिति है। जिस प्रकार किसी बच्चे की आंखों का रंग अलग हो सकता है, किसी के बाल घुंघराले हो सकते हैं, ठीक उसी तरह कुछ बच्चों में शरीर के रंग बनाने वाले तत्व कम होते हैं। इससे उस बच्चे या उनके माता पिता की कोई गलती नहीं होती। बहनों, ऐसे बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत दया की नहीं बल्कि सम्मान और स्वीकार करने की होती है। जरा सोचो, अगर किसी बच्चे को बार बार उसके रंग या रूप के कारण चिढ़ाया जाए, उसका मजाक बनाया जाए।

तो उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि किसी का मजाक उनके रंग रूप, कपड़े, शरीर की बनावट के कारण कभी भी नहीं करना चाहिए। गांव में अक्सर गलत धारणाएं फैल जाती हैं। कोई कह देता है कि ऐसा बच्चा अशुभ है, कोई कहता है कि ये किसी पाप का परिणाम है, लेकिन विज्ञान बताता है कि केवल ये शारीरिक परिवर्तन के कारण है। ऐसे लोगों की बुद्धि, क्षमता, प्रतिभा और सपने बिल्कुल आम बच्चों की तरह होते हैं। वो पढ़ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, कला, खेल, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। बहनों, इतिहास गवाह है कि दुनिया में अनेक लोगों ने शारीरिक चुनौतियों के बावजूद बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं। सफलता का संबंध रंग से नहीं बल्कि खुद के आत्मविश्वास से, मेहनत से और अवसरों से होता है। इसलिए अगर गांव में कोई बच्चा या व्यक्ति ऐसा हो तो आप उसे सम्मान दें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि धूप या आंखों की समस्या हो तो परिवार को कहें कि उसे डॉक्टर को दिखाए। और हाँ, सबसे ज़रूरी, बच्चों को समझाएं कि किसी का मजाक ना उड़ाए। बच्चे एक संवेदनशील समाज वही है जहाँ हर व्यक्ति को सम्मान मिले। इसलिए कभी भी किसी के रंग रूप को हथियार ना बनाएं, सबका सम्मान करें, और सम्मान करना हमारी परंपरा है। ऐसी ही और बातें करेंगे, पर अभी लेते हैं एक छोटा सा विराम।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
4: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
5: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: बहनों, आप सुन रही हैं आपका अपना पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम पनघट और मैं हूं आपकी बहन सोमा जैन। चलो सीधे चलते हैं आपकी रसोई की तरफ और आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे केले की टिक्की। इसे बनाने के लिए क्या सामग्री चाहिए, सबसे पहले वो लिख लीजिए। हमें चाहिए 3 कच्चे केले, 1/4 कप हरा मटर उबला हुआ, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 2 चम्मच धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, 1/4 चम्मच अमचूर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चुटकी हींग, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, सेकने के लिए तेल और नमक, वो आप सब जानती हैं स्वाद अनुसार। ये थी सामग्री। अब इसे बनाना कैसे है ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले कच्चे केले को बिना छिलका उतारे 3 टुकड़ों में काट लें, फिर 10 मिनट तक टुकड़ों को पानी में उबालें। ठंडा होने के बाद केले को छील लें और उन्हें मसल लें। मटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती को मोटा मोटा काट लें। इस मिश्रण को केले में मिलाएं। अमचूर, गरम मसाला, नमक, हींग, लाल मिर्च पाउडर को भी इसमें मिला लें। पूरे मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। फिर हथेलियों की मदद से मन चाहे आकार में टिक्की बनाएं और एक तवे पर 2-3 मिनट तक तेल डाल दें। एक बार में 5-6 टिक्की तवे पर रखें। लगभग 3-4 मिनट तक सेकने के बाद टिक्की को पलट दें। इसी तरह दोनों साइड की टिक्की को आप सेक लें और फिर इसे हरी चटनी या फिर अचार, जिसके साथ आप चाहें उसके साथ खाएं। तो ज़रूर

ये कच्चे केले की ये टिक्की। लेकिन चलते चलते बहनों, जैसे मेरा गला भी आजकल थोड़ा खराब हो रहा है, तो जो सलाह दादी जी ने मुझे दी मैं भी आपको दे देती हूँ। भाई, रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा शहद मिलाकर पिएं। इससे सर्दी, जुकाम और गले की खराश में तुरंत राहत मिलेगी। सच बताऊं, मैंने भी कल रात को पिया था, तभी तो आज आपसे थोड़ी सी बात कर पाई। आज और फिर देखिएगा दादी की ये सलाह कितनी काम आती है। तो आप भी दादी जी की सलाह मानिएगा। और हाँ, इसके साथ साथ आज्ञा लेना चाहेंगे, अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी कार्यक्रम पनघट में। तब तक के लिए आज्ञा दें अपनी बहन सोमा जैन को। राम राम बहनों।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं वंदना वरुण के गाए हुए गीत और भजन। आइए सबसे पहले सुनते हैं ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे वंदना वरुण की आवाज में भजन। अब प्रस्तुत है ये गीत, आवाज एक बार फिर से वंदना वरुण की है।

वंदना वरुण के गाए इसी गीत के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: Keralam, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi leaves on a six-day visit to France and Slovakia, says his visit will focus on boosting economic and cultural linkages with France and building strong bilateral relationship with Slovakia. Prime Minister Modi will also attend G7 summit at Evian in France. President Draupadi Murmu hails cadets at IMA passing out parade in Dehradun, says inclusion of 9 women cadets for the first time reflects India's march towards women-led development. India lodges strong protest to the US over US Navy strikes on oil ship in the Gulf, killing 3 Indian sailors. Indian Air Force AN-32 aircraft meets with an accident at Jorhat Air Force Station in Assam. And in men's cricket, toss for first ODI of 3-match series between India and Afghanistan delayed due to rain in Dharamshala. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना, कहा यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की, कहा पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया, हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त, और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
3: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
2: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
4: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्य।

0: आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रिविंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
3: इन एन एरा ऑफ rapidly changing security challenges, technological advances and complex global environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
2: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
4: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
1: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
5: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे

0: पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम

0: चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक

0: सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की, कहा पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं और ये समय रहता है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत का। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं बेगम परवीन सुल्ताना की राग मिश्र में गाई ये ठुमरी, जिसके बोल हैं तुम राधे बनो श्याम।

अभी आप सुन रही थी पंडित अजय पोहनकर का गाया राग मिश्र पीलू। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय प्रसारित किया जा रहा है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। लीजिए अब सुनिए विदुषी सविता देवी का गाया राग खमाज़।

अभी आप सुन रहे थे विदुषी सविता देवी का गाया राग खमाज। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है नागिन फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर की है, बोल राजेंद्र कृष्ण के, और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

इस गीत को हमने लिया था फिल्म फागुन से। आवाजें थीं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की, बोल कमर जलालाबादी के थे और धुन बनाई थी ओपी नैयर ने। कार्यक्रम का अगला गीत मधुमति फिल्म से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, गीत शैलेंद्र का है, धुन बनाई है सलील चौधरी ने। आइए सुनते हैं मधुमति फिल्म का ये गीत।

मंगेशकर की गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत में बांधा था एसटी बर्मन ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आज आपने नागिन, फागुन, मधुमती और गाइड फिल्मों के गीत सुने। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए आप सुनते हैं लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं महान फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। गीत के बोल अनजान के हैं और धुन आर डी बर्मन ने बनाई है।

शान। जी हाँ, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, बोल थे आनंद बख्शी के और धुन बनाई थी आजी बर्मन ने। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गुलशन बावरा के बोल। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, फिल्म का नाम है जंजीर।

दी ग्रेट गैम्बलर। जी हाँ, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार की आवाज़ों में। बोल थे आनंद बख्शी के और धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने। आइए अब बढ़ते हैं गीत गुंजन कार्यक्रम के अगले और अंतिम गीत की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म याद।

की मजरूह सुल्तानपुरी की रचना थी और धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:30 हुए हैं। हमारी इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं संपन्न होता है। अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के दुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। वायुसेना ने असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह,

फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्नि वीरवायु हेमाराम कुमावत और अग्नि वीरवायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। वायुसेना ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। दुर्घटनाग्रस्त विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विस्फोट के बाद उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी 5 जवानों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 162 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 28 रन बना लिए हैं। वहीं आज शाम 7 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। उधर भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी तक

हम आपको एक बार फिर बता दें, शाम 7:31 पर कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश के तहत आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस पर केंद्रित भेंटवार्ता, एक दुर्लभ आनुवांशिक विकार है एल्बिनिज्म विषय पर डॉ रजनीश सिंह से अनिंद्र सिंह की बातचीत। और अब रूपरेखा सुनिए कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना। 6:25 पर चिंतन में आपको सुनवाएंगे कस्तूरी रंगा आयंगर के विचार। श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय प्रसारण सुना जा सकेगा कल प्रातः 6:35 पर। 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। इसमें आपको सुनवाएंगे कंपोस्ट की उपयोगिता विषय पर डॉ एमसी अग्रवाल की वार्ता। 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा में आप सुनेंगे परिवार नियोजन की विभिन्न विधियां विषय पर डॉ अर्चना राजपूत की वार्ता। 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि में सदाबहार फिल्मी गीत। 9:25 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम गीत मंजूषा। 9:45 पर कार्यक्रम लोक संगीत में कलाकार होंगे सत्यप्रकाश शुक्ला। 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर सरिता। 11:00 हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। दिन में 12:00 कार्यक्रम लोकमंजरी में आप सुनेंगे रामदास बालक चटपटा और साथियों के गाए ब्रज लोकगीत। दिन में 12:30 पर सुनिएगा नए तराने। 1:15 पर कार्यक्रम बाल मंडल में कल आकर्षण है रक्तदान में युवाओं की भूमिका विषय पर चर्चा। रोचक जानकारी में आपको बताएंगे पढ़ाई और मनोरंजन में संतुलन के बारे में। बाल मेहमान में आपको सुनवाएंगे छुट्टियों का सार्थक उपयोग विषय पर अनुष्का जादौन की वार्ता। क्षमा कीजिए, बलराम सिंह की वार्ता आपको सुनवाएंगे, विषय होगा छुट्टियों का सार्थक उपयोग। बाल मेहमान होंगी अनुष्का जादौन। साथ ही आप सुनेंगे चलते चलते क्रम में हंसी भी एक दवा है। दिन में 1:45 पर आप सुनेंगे गौरी खन्ना के गाए गीत और भजन। 2:30 पर कार्यक्रम आज के अतिथि में आप सुनेंगे भेंट वार्ता क्रम में आरटीआई कार्यकर्ता नरेश पारस से नीरज जैन की बातचीत। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर संध्या। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर संध्या।

अभी आप सुन रहे थे राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में रविंद्र रावल का लिखा भजन प्रतिभा राव और रविंद्र बीजापुर के स्वर में हम प्यार तुम्ही से कर बैठे फिल्म से। अब आपको सुनवा रहे हैं बिग ब्रदर फिल्म का भजन उदित नारायण अलका याग्निक और रूप कुमार राठौर की आवाज में। इसे लिखा है समीर ने, धुन बनाई है आनंद राज आनंद ने।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

अभी आप सुन रहे थे रफू चक्कर फिल्म का भजन, अजीज नाजन, कंचन और साथियों के स्वर में। रचनाकार थे गुलशन बावरा, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं रवि के संगीत निर्देशन में अनवर की आवाज में घर का सुख फिल्म का भजन।

इस भजन के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ये वो वाणी।

क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, ये तो आप सभी जानते हैं। हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा देश तरक्की करेगा, क्योंकि स्वस्थ नागरिक किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। जब लोगों को बेहतर अस्पताल, डॉक्टर, दवाइयाँ और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलती है तो वो देश की इकोनॉमी को मजबूत करते हैं। इसके अलावा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण और रोगों की रोकथाम जैसी सेवाएं समाज को सुरक्षित और सशक्त बनाती हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि हमारे देश की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। ऐसे में उनकी सेहत का ध्यान रखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान सही समय पर स्वास्थ्य जांच ना होने से माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है? जी हाँ, और इसी समस्या को कम करने के लिए और हर गर्भवती महिला तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित गर्भावस्था और स्वस्थ प्रसव के लिए जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है। साथियों, इस योजना के तहत हर महीने की 9 तारीख को सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं की विशेष जांच की जाती है। यहाँ महिलाओं का ब्लड प्रेशर, वेट, खून की जांच, शुगर की जांच और गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य की जांच निशुल्क होती है। डॉक्टर महिलाओं को ये भी बताते हैं कि गर्भावस्था के दौरान क्या खाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सुरक्षित प्रसव के लिए कैसे तैयार रहना चाहिए। साथियों, इस अभियान की सबसे खास बात यह है कि ये उन महिलाओं की पहचान करने में मदद करता है जिनकी गर्भावस्था में किसी प्रकार का खतरा हो सकता है, जैसे खून की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं। ऐसी महिलाओं को स्पेशल केयर और एडिशनल मेडिकल असिस्टेंस दी जाती है ताकि माँ और बच्चे दोनों ही सुरक्षित रहें। साथियों, हम युवाओं के लिए इस अभियान की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। देखिए, आज हम युवा ही कल के जिम्मेदार नागरिक और माता पिता बनेंगे। अगर हम अपने परिवार और समाज की गर्भवती महिलाओं को समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराने के लिए प्रेरित करेंगे तो वो कई गंभीर समस्याओं से बच सकती हैं। साथियों, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है और स्वस्थ बच्चे ही देश का भविष्य बनते हैं। एक माँ और बच्चे का स्वास्थ्य केवल परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। इसलिए हमें इस अभियान के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए, क्योंकि जब माँ सुरक्षित होगी तभी परिवार खुशहाल होगा और देश मजबूत बनेगा। साथियों, इसी के साथ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पर ये चर्चा यही संबंध करते हैं। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

हेलो नमस्ते, गुड इवनिंग साथियों। स्वागत है हमारे सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स का कार्यक्रम युववाणी में। आपके आज के रेडियो सफर की हम सफर बनकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो साथी राशि। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। साथियों बात स्वास्थ्य की होती है तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ काम नहीं आते।

0: साथियों चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया और डिजिटल बचपन के विषय पर आइए सुनते हैं वार्ताकार उत्कर्ष शेखर के विचार।
1: नमस्कार दोस्तों, बाहर बहुत गर्मी हो रही है। मुझे आज भी मेरे बचपन के दिन याद आते हैं, जब मैं इतनी कड़कती धूप में भी दोस्तों के साथ बाहर क्रिकेट खेलने जाता था। लेकिन आजकल के बच्चे वो ऐसे कहाँ हैं, उन्हें तो बस एसी में बैठ के मोबाइल चलाना होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सबकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, मोबाइल, सोशल मीडिया और डिजिटल बचपन। आजकल मोबाइल फ़ोन सिर्फ एक गैजेट नहीं रह गया है, ये तो मानो जैसे एक हमारे हाथ का हिस्सा बन गया है। चाहे सुबह उठते ही सबसे पहले अलार्म बंद करना हो या फिर रात को नींद आने से पहले रील्स देखनी हो, मोबाइल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूरी तरीके से घुस चुका है। मुझे आज भी याद है कैसे हम सुबह स्कूल जाते थे, फिर घर लौटते ही बस्ता एक कोने में फेंक कर बाहर भाग जाते थे खेलने के लिए। मिट्टी में लटपट होकर खेलना, कभी पिताजी की डांट खाना तो कभी माताजी की मुस्कान पाना, गिल्ली डंडा, कबड्डी, पिट्ठू, कंचे और बारिश में नहाते हुए मस्ती करना, यही तो था असली बचपन। बचपन में हमें जो बातें किताबों से, दोस्तों से या बाहर खेलने से सीखने को मिलती थी, आज वो बहुत हद तक मोबाइल और सोशल मीडिया ने ले ली है। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसके हाथ में मोबाइल आ जाता है, और मोबाइल मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, गेम्स, ये सब कुछ। अब जरा सोचिए, पहले ज़माने में जब हम बाहर खेलते थे, मिट्टी में लोटते थे, नए नए खेल बनाते थे, वो सब अब वर्चुअल गेम्स में बदल गया है। बच्चे घर बैठे बस पबजी या फ्री फायर ही खेलते रहते हैं। बाहर जाकर दोस्तों के साथ छुप

0: छुपा या क्रिकेट जैसे गेम्स को खेलना कम कर दिया है। सोशल मीडिया पर बच्चे बहुत एक्टिव हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इंस्टाग्राम पर डांस की रील्स बनाने लग गए हैं या फिर यूट्यूब पर चैनल खोल लेते हैं। कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है, बच्चे थोड़े क्रिएटिव तो हो रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि क्या इतनी छोटी सी उम्र में डिजिटल दुनिया में इतना उलझना ठीक भी है? सोचिए, जब हम छोटे थे तो हमारी फेवरेट चीज़ क्या होती थी? कॉमिक्स, नागराज, चाचा चौधरी। आज के बच्चों की फेवरेट चीज़ क्या है? एकदम वायरल वीडियो या फिर कोई यूट्यूबर का चैनल। अब तो 6-7 साल के बच्चे भी कहते हैं, मम्मी मुझे इंस्टाग्राम की रील बनानी है। ये देखकर थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन हमारे नए डिजिटल दुनिया की सच्चाई यही है। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्मार्ट बने, टेक्नोलॉजी से जुड़े रहें, लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि उनका बचपन असली दुनिया में भी जाए। बाहर की धूप, मिट्टी की खुशबू, असली दोस्तों की दोस्ती, ये सब ऑनलाइन लाइफ से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल बच्चे 4-5 घंटे मोबाइल पर ही बिता देते हैं, मम्मी पापा भी बिजी होते हैं तो बच्चा मोबाइल में ही खुश रहता है। लेकिन क्या आपको पता है, WHO ने कहा है कि 5 साल से छोटे बच्चे स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 5 से 18 साल के बच्चों के लिए भी एक लिमिट होनी चाहिए, वरना ये सिर्फ आँखों और सेहत पर ही नहीं दिमाग और रिश्तों पर भी असर डालता है। शरीर पर इसका असर होता है, नींद पूरी नहीं होती, आंखें कमज़ोर होती हैं, पीठ झुकी रहती है और शरीर की फुर्ती भी कहीं खो सी जाती है। मन भी थकता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, अकेलेपन का शिकार होता है, और सबसे बड़ी बात, उसकी कल्पना करने की शक्ति भी कमज़ोर पड़ने लगती है। कभी कभी लगता है मोबाइल की वजह से बच्चों का ध्यान बहुत जल्दी बट जाता है। आजकल के बच्चे देखें, एक जगह टिक कर बैठे ही नहीं रह सकते, वो हर 5 मिनट में बोर हो जाते हैं और फिर मोबाइल पकड़ लेते हैं। ये डिजिटल लाइफ का नुकसान है, फोकस कम हो जाता है। लेकिन वहीं कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे डिजिटल दुनिया में बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, जैसे नई भाषाएं, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कई बच्चे तो अपना पैशन भी फॉलो कर लेते हैं या फिर नई नई चीज़ें सीख लेते हैं, जैसे गिटार या पेंटिंग। मतलब टेक्नोलॉजी में हुनर तो छुपा है, लेकिन वो तभी अच्छा है जब वो बैलेंस में बने रहे। तो हल क्या है? हल ये है कि टेक्नोलॉजी को बैलेंस करना होगा। बच्चे जब डिजिटल दुनिया में घुसते हैं तो मम्मी पापा को भी उनके साथ वक्त बिताना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि मोबाइल और सोशल मीडिया की एक लिमिट होती है। साथ ही साथ बच्चों को बाहर खेलने के लिए मोटिवेट करें, हो सके तो उनके लिए स्पोर्ट्स क्लासेस ज्वाइन करवाएं, क्योंकि मैदान में खेलकर जो खुशी मिलती है वो मोबाइल में नहीं मिलती। बॉल के पीछे दौड़ने में जो हंसी छुपी होती है वो स्क्रीन पर कहीं नहीं मिलती। और हाँ, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब बच्चे आपको मोबाइल पर देखते हैं कि मोबाइल पर ये पूरे वक्त बिजी ही रहते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि ये तो आम बात है। इसलिए अगर हम खुद ही थोड़ा सा टाइम मोबाइल से दूर बिताएं, बच्चों के साथ कहानियाँ सुनाएं, बोर्ड गेम्स खेलें, तो वो भी बैलेंस करना सीखेंगे। और याद रखिए, बचपन वो एक अनमोल समय है जब बच्चा सिर्फ खेल ही नहीं सीखता, बल्कि दोस्ती, समझदारी और ज़िंदगी की असली खुशियाँ सीखता है। इसलिए मोबाइल और सोशल मीडिया के साथ असली दुनिया में जीने का मज़ा भी ज़रूरी है। दोस्तों, मोबाइल और सोशल मीडिया ज़रूरी है, ये ज्ञान का समंदर है, क्रिएटिविटी का रास्ता भी, लेकिन बचपन में इसका असली मज़ा तभी आता है जब टेक्नोलॉजी का तड़का तो हो, लेकिन असली खेल और हंसी की चाशनी भी ज़रूर हो उसमें। तो चलिए, आज से ही एक छोटी सी शुरुआत करते हैं, अपने बच्चों के साथ मोबाइल का इस्तेमाल भी करें, लेकिन उन्हें असली दुनिया का असली स्वाद भी चखाएं। यही डिजिटल बचपन को सही मायने में खूबसूरत बनाएगा।
1: साथियों, कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था मोबाइल, सोशल मीडिया और डिजिटल बचपन। वार्ताकार थे उत्कर्ष शेखर। कार्यक्रम में अब समय है एक ब्रेक का, आप बने रहें हमारे साथ।
2: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
3: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
4: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: साथियों, आज हम युवा अपने लुक्स, अपनी पर्सनालिटी और अपनी पहचान को लेकर पहले से कहीं ज़्यादा जागरूक हैं और कॉन्शियस भी। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की त्वचा, बाल या आंखों का रंग दूसरों से अलग हो तो वह अक्सर लोगों की जिज्ञासा या टिप्पणियों का सामना करता है। एल्बिनिज्म ऐसी ही एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति के शरीर में मेलेनिन पिगमेंट बहुत कम बनता है या बिल्कुल बनता ही नहीं है। इसी कारण उनकी त्वचा, बाल और

आंखें सामान्य लोगों की तुलना में काफी हल्की रंग की दिखाई देती हैं। साथियों, एल्बिनिज्म कोई बीमारी नहीं है और ना ही ये किसी के छूने या साथ रहने से फैलती है। ये एक जेनेटिक कंडीशन है, यानी ये जन्म से होती है और माता पिता से बच्चों तक जीन्स के माध्यम से पहुंच सकती है। एल्बिनिज्म वाले लोग शारीरिक रूप से किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ही होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। एल्बिनिज्म का सबसे बड़ा प्रभाव आंखों पर पड़ता है। एल्बिनिज्म कंडीशन वाले लोगों को धुंधला दिखाई देना, तेज रोशनी से परेशानी होना या दूर की चीजें साफ न देखना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए उन्हें नियमित रूप से आंखों की जांच करवानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर चश्मे का यूज करना चाहिए। साथियों, जिन्हें एल्बिनिज्म होता है उनकी त्वचा में प्राकृतिक सुरक्षा कम होती है, क्योंकि मेलानिन सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद करता है। ऐसे में तेज धूप में लंबे समय तक रहने से उनकी त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सनस्क्रीन, कैप्स, सनग्लासेस और शरीर को पूरी तरह से ढकने वाले कपड़े उनके लिए बहुत जरूरी होते हैं। एल्बिनिज्म कंडीशन वाले लोगों का सबसे कठिन पहलू कई बार शारीरिक नहीं बल्कि सामाजिक होता है। अलग दिखने के कारण कुछ लोगों को मजाक, भेदभाव या अनचाहे सवालों का सामना करना पड़ता है। लेकिन साथियों, ये समझना जरूरी है कि किसी व्यक्ति का रंग, रूप या शारीरिक विशेषता उसकी प्रतिभा, बुद्धिमता या क्षमता को तय नहीं करती। आज सोशल मीडिया और जागरूकता अभियानों के कारण लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव तो आ रहा है। हम युवा ये समझ रहे हैं कि हर व्यक्ति अपनी अलग पहचान के साथ मूल्यवान है। साथियों, एल्बिनिज्म भी मानव विविधता का एक स्वाभाविक हिस्सा है, कोई कमी नहीं है। सही जानकारी, उचित स्वास्थ्य देखभाल और सोशल एक्सेप्टेंस के साथ एल्बिनिज्म वाले लोग अपने सपनों को उसी तरह पूरा कर सकते हैं जैसे कोई अन्य व्यक्ति। उनकी पहचान उनकी त्वचा या बालों के रंग से नहीं बल्कि उनके विचारों, प्रतिभाओं और उपलब्धियों से बनती है। तो आप भी एल्बिनिज्म को दया या आश्चर्य की नजर से नहीं बल्कि समझ और सम्मान की नजर से देखें। साथियों, अभी हम आपके साथ साझा कर रहे थे एल्बिनिज्म जेनेटिक डिसऑर्डर पर ये जानकारी। अब समय है आपके एंटरटेनमेंट का, तो आइए मिलकर आनंद लें कार्यक्रम के अगले गीत का।

साथियों, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आइए बात करते हैं हमारी उस प्राचीन विरासत की जो आज वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहरा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योग की। साथियों, हर पीढ़ी को अपनी विरासत से कुछ ऐसा मिलता है जो उसके भविष्य को मजबूत बनाता है। भारत के युवाओं के लिए योग ऐसी ही एक धरोहर है। आज की भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण जिंदगी में योग युवाओं के लिए एक वरदान की तरह है। जिस तरह आपके मोबाइल की बैटरी लगातार इस्तेमाल होने के कारण कम हो जाती है, उसे फिर चार्ज करना पड़ता है, ठीक उसी तरह हमारा मन और शरीर भी लगातार काम, पढ़ाई और डिजिटल दुनिया के दबाव से थक जाते हैं और योग उसी रिचार्ज बटन की तरह काम करता है। योग केवल व्यायाम नहीं, जीवन शैली है। ये मानसिक शांति, ध्यान और अनुशासन सिखाता है। आज योग की शक्ति को पूरी दुनिया स्वीकार कर चुकी है। ये भारत की उस सांस्कृतिक धरोहर का प्रमाण है जिसने सीमाओं और भाषाओं की दीवारों को पार कर पूरी मानवता को प्रभावित किया है। 21 जून को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। ये हमारी इस अमूल्य विरासत की ग्लोबल एक्सेप्टेंस का प्रूफ है। आइए अपनी इस विरासत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें, क्योंकि योग केवल हमारी विरासत नहीं है, ये हमारे बेहतर आज और उज्जवल कल का आधार है। कार्यक्रम के अंत में हम आपके लिए लेकर आए हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की मधुर आवाजों से सजा ये गीत।

साथियों, समय हो चला है कार्यक्रम संपन्न करने का, तो चलते चलते आपसे बस एक ही दरख्वास्त, अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें अपना मनपसंद कार्यक्रम युवावाणी। आपसे फिर जल्द ही करेंगे मुलाकात। आप सुन रहे थे अपनी रेडियो साथी राशि को। अब हमें दें इजाजत। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से हम बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम्यालोक।

श्रोताओं, आज के ग्राम्य लोक कार्यक्रम में मैं यशपाल सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको हमारी राम राम। किसान साथियों, जेठ का महीना चल रहा है यानी गर्मी का समय, लेकिन अभी कुछ दिनों से आंधी तूफान और बरसात का मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि भाई यह सब पश्चिमी विक्षोभ के असर का है कारण। जो भी हो, इस भीषण गर्मी के मौसम में आम जनता को गर्मी से राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर हम किसानों के लिए यह बेमौसम बरसात बहुत सी परेशानियां लेकर आती है, क्योंकि मौसम में कोई भी बदलाव सबसे पहले हमारी खेतीबाड़ी को प्रभावित करता है।

जी हाँ श्रोताओ, अब इन दिनों में ही देखिए, इस बरसात से खाली पड़े खेतों को तो बहुत फायदा हुआ है, पर जिन खेतों में जायद की फसल खड़ी है उनमें बहुत नुकसान हुआ है। खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी और करेला की फसल बर्बाद हुई है, और उसके अलावा क्यारियों में पानी भर गया है जिससे और फसलें भी प्रभावित हुई हैं। उधर तेज आंधी से गर्मी का बाजरा जो लगभग पक चुका है वह बर्बाद हो चुका है। हालांकि अभी आने वाले कुछ दिनों में खरीफ फसलों की बुवाई शुरू हो जाएगी और यह बरसात खरीफ फसलों के लिए बहुत फायदेमंद है। खरीफ फसलों में धान की फसल एक प्रमुख फसल है जो बहुत ज़्यादा पानी में होती है। धान की बुवाई का सही समय मई के अंतिम सप्ताह से लेकर जून के तीसरे सप्ताह तक माना जाता है। धान की बुवाई मुख्य रूप से दो विधियों द्वारा की जाती है। पहली विधि है सीधे बुवाई, यह मई के तीसरे सप्ताह से लेकर जून के अंतिम सप्ताह के बीच में की जाती है, जिसमें सबसे बेहतर बुवाई मानसून से 10 से 15 दिन पहले होती है। किसान साथियों, इसे सूखे खेतों में या तर बतर पलेवा करके किया जाता है। दूसरी विधि है धान की रोपाई की, जिसके लिए नर्सरी तैयार करनी होती है। धान की रोपाई के लिए नर्सरी तैयार करने का सबसे सही समय मई के दूसरे सप्ताह से लेकर जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह के बीच में होता है। तो आज हम अपने इस कार्यक्रम में धान की नर्सरी प्रबंधन पर बात करते हैं। किसान साथियों, हाइब्रिड किस्म की धान की रोपाई यानी पौध लगाने का सही समय मई के दूसरे सप्ताह से जून के मध्य तक का होता है, लेकिन बासमती किस्मों के लिए जून माह के शुरुआती दिन सबसे बेहतर हैं। धान की नर्सरी या धान की खेती सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत है। अच्छी और स्वस्थ फसल के लिए मजबूत नर्सरी तैयार करना बहुत जरूरी है। नर्सरी तैयार करने के लिए हमें सही समय, सही बीज की मात्रा और जगह की जानकारी होनी चाहिए। तो किसान साथियों, धान की अगेती किस्म के लिए 5 से 10 जून तक का समय उपयुक्त होता है। वहीं धान की मध्यम व सामान्य किस्मों के लिए 10 जून से 20 जून तक का समय उपयुक्त होता है। अब बात करते हैं बीज की। तो एक एकड़ धान की रोपाई के लिए लगभग 5 से 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। इतने बीज के लिए 400 वर्ग फुट यानी 20x20 फीट की क्यारी सही होती है। बीज की पौध बनाने के लिए बोने से पहले उसका उपचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीज को फफूंद और शुरुआती रोगों से बचाना जो है, ट्राइकोडर्मा, कार्बनडाजिम और फिर थीरम से उपचारित करके बीज को हम आगे बोने के लिए बना सकते हैं। इसके बाद बीज को 15 से 20 घंटे पानी में भिगोएं और फिर अंकुरण के लिए जूट की बोरी में 24 से 36 घंटे तक बांध कर रख दें। बीज का चुनाव भी सावधानी पूर्वक करें। धान की पौध के लिए आधारित व प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें। किसान साथियों, इसके बाद बीज बोने के लिए क्यारी तैयार करें। भाई, क्यारी वाली जगह को समतल कर लें और नमी बनाए रखें। बुवाई के समय बेसल डोज के रूप में 1 से 2 किलोग्राम DAP, 500 ग्राम यूरिया और सड़ी हुई खाद मिलाकर के रखें। उधर जो बोरी में भिगे हुए बीज रखे हैं उनमें बीच बीच में पानी का छिड़काव करते रहें, जिससे अंकुरण सही ढंग से होने लगे। बीज की बुवाई के बाद जब तक नई पौध हरी न हो जाए तब तक पक्षियों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए विशेष सावधानी रखें। किसान साथियों, अंकुरित बीजों को बोने का सही तरीका है कि भाई अंकुरित बीजों को गारे वाली क्यारी में सामान्य रूप से छिड़काव कर दें। पौधे पीले ना पड़े इसके लिए लगभग 12 दिनों की फसल होने पर 1 किलोग्राम यूरिया, 100 ग्राम जिंक सल्फेट और 100 ग्राम ह्यूमिक एसिड का छिड़काव करें। साथियों, धान की नर्सरी आम तौर पर 18 से 25 दिनों में रोपाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। स्वस्थ एवं रोग मुक्त पौध तैयार करने के लिए उचित जल निकास और अच्छे पोषक तत्वों से भरपूर दोमट मिट्टी और सिंचाई के स्रोत के आसपास ही हम पौधशाला का चयन करें। किसान साथियों, बुवाई के 1 महीने पहले नर्सरी की तैयारी की जाती है। नर्सरी क्षेत्र में 15 दिनों के अंतराल पर पानी देकर खरपतवारों को उगने दिए जाए तथा बाद में हल चला

0: कर खरपतवार को पूरी तरह नष्ट कर दें। ऐसा करने से धान की मुख्य फसल में खरपतवार की कमी आएगी। जी हाँ किसान भाइयों, नर्सरी क्षेत्र को गर्मियों में अच्छी तरह 3-4 बार हल से जुताई करके खेत को खाली छोड़ने से मृदा संबंधित रोगों में भी काफी कमी आती है। इतना सब करने के बाद जब नर्सरी तैयार हो जाती है तो धान की पौध को मुख्य खेत में रोपाई करके खेती करें। किसान भाइयों, धान खरीफ फसलों में सबसे मुख्य फसल है, इसीलिए नर्सरी प्रबंधन से लेकर के धान की कटाई तक फसल का विशेष ध्यान रखें, जिससे हमें अच्छी और गुणवत्तापूर्ण फसल मिले। तो किसान साथियों, धान की फसल का बेहतर प्रबंधन कर लाभ कमाएं और अपने धानों की खेती में अपनी मेहनत का सही फायदा लें। आपके साथ अपने कार्यक्रम को हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक छोटा सा विराम ले लेते हैं और मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: किसान साथियों, आज के इस आधुनिक युग में हर क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके और नई खोजें विकास और तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। हमारी खेती किसानी में भी नई खोजों से बहुत लाभ मिल रहा है, जैसे कि हाल के वर्षों में कीटनाशकों में नई खोज का मुख्य उद्देश्य है भाई पर्यावरण के अनुकूल, कम जहरीले और अधिकतम प्रभावी कीटनाशक बनाना, जिसमें कुछ नए कीटनाशक हैं जैसे नैनो कीटनाशक, माइक्रोबियल कीटनाशक और नीम और जैविक कीटनाशक। MIT के वैज्ञानिकों ने नैनो कीटनाशकों की ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे कीटनाशक पौधों की पत्तियों पर मजबूती से चिपक जाते हैं। ये नैनो कीटनाशक न केवल कीटों से बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि बारिश के दिनों में ये घुलते भी नहीं है, जिससे किसान कम मात्रा का उपयोग करके अच्छे परिणाम पा सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोबियल कीटनाशक एक ऐसी नई खोज है जिसमें बैक्टीरिया, फंगस और वायरस का उपयोग करके माइक्रोबियल कीटनाशक विकसित किए जा रहे हैं। ये केवल लक्षित कीटों पर असर करते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे ही कीटनाशकों में एक नई खोज है नीम और जैविक कीटनाशकों की। इस नई खोज में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नीम और लहसुन के अर्क को कीटों के खिलाफ अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। ये घरेलू कीटनाशक कीटों को सुखाकर मार देते हैं। किसान साथियों, कृषि में कीटनाशकों के अलावा आज के समय तकनीकी क्रांति भी आई है जिसमें खेती की लागत और मेहनत कम हुई है, जैसे कि ड्रोन की तकनीक। ड्रोन का उपयोग अब कीटनाशकों और उर्वरकों के सटीक छिड़काव के लिए किया जा रहा है, जिससे समय और लागत दोनों की बचत हो रही है। ऐसे ही कृषि रोबोट है। इन रोबोट्स का उपयोग फल तोड़ने, खरपतवार हटाने और फसलों की निगरानी के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा किसान भाइयों, कृषि यंत्रों में भी नई खोज खेती किसानी को आसान बना रही है, जिसमें स्ट्रोवेलर, जीरो टिल ड्रिल, सुपर सीडर ऐसे कृषि यंत्र हैं जिनसे कृषि कार्यों में क्रांति ला दी है। तो किसान साथियों, कृषि में नए कृषि यंत्र, नए कीटनाशक और नई कृषि तकनीकी का उपयोग करके अपनी खेतीबाड़ी को और बेहतर बनाकर लाभ कमाएं। आपके साथ हम अपने कार्यक्रम को यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपका संगीत में मनोरंजन करवाते हैं और आनंद लेते हैं इस मधुर लोकगीत का।

0: किसान साथियों, आज की इस बढ़ती हुई जनसंख्या के दौर में खाद्यान्न आपूर्ति का दबाव हम किसानों पर हमेशा रहता है और फसलों से अधिक पैदावार लेने के चक्कर में हम अपने खेतों में अत्यधिक रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी खेतीबाड़ी में लागत बढ़ती जा रही है। दूसरा, हमारे खेतों की उपजाऊ शक्ति भी कम होती जा रही है। इसीलिए हमें रासायनिक खादों के कम उपयोग पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें अपने खेत की मिट्टी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ किसान भाइयों, अपने खेत की मिट्टी की जानकारी, इससे हमें यह पता चलेगा कि हमारे खेतों में किस फसल के लिए कौन से तत्व की कितनी ज़रूरत है, जिससे हम अपने खेतों में सिर्फ उसी तत्व के खाद का उपयोग करेंगे तो इससे हमारे आर्थिक रूप से भी लाभ मिलेगा और हमारे खेतों को भी फायदा मिलेगा। अपने खेतों की मिट्टी की सही जानकारी हमें मृदा परीक्षण से ही मिल सकती है। तो आज की हमारी वार्ता में डॉक्टर आरपी अग्रवाल आपको मृदा परीक्षण से लाभ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं यह वार्ता।
1: किसान भाइयों, मृदा परीक्षण का अर्थ है किसी खेत की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का सही मूल्यांकन करना और वैज्ञानिक जांच के आधार पर उर्वरकों और आवश्यक भूमि सुधारक रसायनों का सही मात्रा में प्रयोग करना, ताकि किसी भी खेत से किसान भूमि के स्वास्थ्य को बरकरार रखते हुए निरंतर अच्छी पैदावार ले सके। 70 के दशक में हरित क्रांति आने के कारण फसलों की उन्नत प्रजातियों के विकास के साथ साथ उत्पादन में वृद्धि तो हुई, वहीं दूसरी तरफ रासायनिक उर्वरकों की मांग में भी बढ़ोतरी हुई। उन्नत प्रजातियों में अधिक उत्पादन क्षमता होने के

साथ ही इनकी उर्वरकों की आवश्यकता देसी किस्मों की अपेक्षा अधिक होती है। कृषि विकास के साथ ही फसल सघनता में भी बढ़ोतरी हुई है। किसान भाइयों, आज अधिकतर क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली उन्नत एवं संकर किस्में उगाई जा रही हैं, इसलिए वहाँ की मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी बहुत तेजी से हो रही है। पोषक तत्वों के इस अनवरत दोहन के कारण भारतीय भूमियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस वो पोटाश जैसे मुख्य पोषक तत्वों की बड़े पैमाने पर कमी आ गई है। एक अध्ययन जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के 450 जिलों से 36.5 लाख मृदा नमूने लेकर उनकी जांच की गई तो 63% जिलों में नाइट्रोजन, 42% जिलों में फास्फोरस वो 13% जिलों में पोटाश निम्न स्तर पर पाई गई। किसान भाइयों, देश की कृषि भूमियों में पोषक तत्वों के स्तर को अगर राज्यवार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की भूमियों में नाइट्रोजन व फॉस्फोरस निम्न स्तर पर तथा पोटाश मध्य स्तर की पाई गई है। चौंकाने वाले तत्व पोटेशियम तत्व के मामले में देखे गए। हरित क्रांति के समय 60 के दशक में देश की भूमियों में इस पोषक तत्व की प्रचुर मात्रा थी, परंतु धीरे धीरे इसकी भी कमी आती जा रही है। किसान भाइयों, भूमि की बनावट बड़ी पेचीदा होती है और कोई भी किसान अपने बरसों के अनुभव के बाद भी अपने खेत की उपजाऊ शक्ति का सही मूल्यांकन नहीं कर सकता, क्योंकि किसी खेत में पोषक तत्वों की कमी धीरे धीरे होती है, वहीं दूसरी ओर हो सकता है कि भूमि में किसी पोषक तत्व की अधिकता हो। इनके बारे में पूरी जानकारी मृदा परीक्षण से ही की जा सकती है और उसी आधार पर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है। किसान भाइयों, जिस प्रकार मनुष्यों एवं जानवरों को अपने जीवन को चलाने हेतु संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, संतुलित आहार देने पर ही वे ठीक प्रकार से कार्य कर पाते हैं, उसी प्रकार फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए संतुलित आहार यानी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अत्यधिक एवं असंतुलित उर्वरकों तथा कृषि रसायनों के प्रयोग से खेतों की मिट्टी मृत हो रही है, दिनों दिन उसकी उत्पादन क्षमता कम हो रही है, इसीलिए मिट्टी का परीक्षण आवश्यक है। मिट्टी की जांच से कई लाभ होते हैं, जैसे मिट्टी की रासायनिक दशा अर्थात उसकी अम्लीयता या क्षारीयता की जानकारी मिट्टी के पीएच मान द्वारा हो जाती है। मिट्टी का पीएच मान 7.5 से अधिक होने पर क्षारीय या ऊसर का भूमि का संकेत मिलता है, जबकि अम्लीय मिट्टी का पीएच मान 6.5 से कम होता है। क्षारीय भूमि के सुधार के लिए पायराइट या जिप्सम के प्रयोग की सिफारिश और अम्लीय भूमि के सुधार के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय या ऊसर भूमि के सुधार के लिए पायराइट या जिप्सम की मात्रा तथा अम्लीय भूमि के सुधार के लिए चूना की सही मात्रा का ज्ञान मिट्टी की जाँच से ही होता है। मिट्टी के घोल की विद्युत संचालकता के अनुमान से मिट्टी में मौजूद घुलनशील लवणों की मात्रा का बोध होता है व मिट्टी की जांच के आधार पर लवणीय भूमि के सुधार के उपाय बताए जाते हैं। भूमि में पोषक तत्वों की उपलब्धता की जानकारी मिट्टी के जांच के बाद ही हो पाती है, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि फसलों की आवश्यकता के अनुसार संतुलित उर्वरक प्रबंध करके अधिक पैदावार कैसे प्राप्त की जा सकती है। मिट्टी के जाँच से ही सघन खेती के कारण खेती की मिट्टी में उत्पन्न विकारों की जानकारी करके उन्हें दूर किया जा सकता है। किसान भाइयों, खेती के लिए सबसे आवश्यक है खेत। आज हमारे खेतों की उपजाऊ शक्ति दिनों दिन घटती जा रही है। मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी बहुत तेजी से होती जा रही है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 0.2% तक आ गई है। खेतों में रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से सूक्ष्म तत्वों व लाभदायक जीवाणुओं की कमी होती जा रही है, जिससे भूमि की भौतिक दशा खराब होती जा रही है। सबसे पहले खेत की भौतिक दशा को सुधारने हेतु मिट्टी की जांच के आधार पर कार्बनिक खादों या जैविक खादों जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, बर्मी कंपोस्ट, नाइट्रो कंपोस्ट, हरी खाद व जैव उर्वरकों जैसे राइजोबियम कल्चर, एजोटोवेक्टर, पीएसवी कल्चर व एजिलो स्पिरुलिना आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे गंधक, जिंक, लोहा, मैग्नीज, बोरोन व तांबा आदि का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। इससे मृदा के स्वास्थ्य में सुधार होगा। कृषि उत्पादकता बनाए रखने के लिए

0: मृदा को उपजाऊ बनाए रखना सबसे पहली आवश्यकता है, जो अच्छे मृदा स्वास्थ्य के कारण ही संभव है। लगातार सघन फसल चक्र के कारण मुख्य पोषक तत्वों तथा सीमित देसी खाद के उपयोग से गंधक, जिंक, लोहा, मैंगनीज, तांबा इत्यादि की भी मृदा में कमी आ गई है, जिससे मृदा स्वास्थ्य में गिरावट के साथ पोषक तत्वों की आवश्यकता में असंतुलन हो गया है, जिसके कारण हमारी कृषि उत्पादकता में कमी हो रही है। इसलिए आज की विशेष आवश्यकता यह है कि आप अपनी भूमि को उपजाऊ कैसे बनाए रखें ताकि खेती से अच्छा उत्पादन मिल सके। भूमि को उपजाऊ बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है मिट्टी की जांच के आधार व वैज्ञानिकों की संस्तुति के अनुसार संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना। उर्वरकों में मुख्य पोषक तत्वों नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश के अलावा आपको गंधक, जिंक, लोहा, मैग्नीज और तांबा आदि तत्व भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने चाहिए। ऐसा करने से न केवल प्रयोग किए गए पोषक तत्वों की दक्षता में वृद्धि होगी, बल्कि भूमि में पोषक तत्वों की प्रचुरता होने से उगाई जाने वाली फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। किसान भाइयों, आमतौर पर आप अपनी फसलों में मृदा परीक्षण के आधार पर व वैज्ञानिक संस्तुति के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग न करके अपनी मर्जी से, अज्ञानतावश अथवा अपने बजट के हिसाब से उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से आप मिट्टी में दिए गए उर्वरकों का पूरा लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं, साथ ही उर्वरकों पर होने वाले खर्च के कारण फसलों का उत्पादन लागत बढ़ जाती है व लाभ कम हो जाता है। इसलिए खेती से अधिक लाभ लेने के लिए मृदा परीक्षण कराना अति आवश्यक है। मिट्टी से जुड़ी अम्लीयता व क्षारीयता से संबंधित समस्याओं को भी दूर करना होगा, क्योंकि इन समस्याओं के कारण भूमि में प्रयोग किए जाने वाले उर्वरकों की क्षमता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, इस प्रकार मृदा परीक्षण कराकर आप अपनी फसलों से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं व अधिक लाभ ले सकते हैं। आप अपनी मृदा का परीक्षण कृषि विज्ञान केंद्र बिजपुरी पर स्थित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से भी करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु आप डॉक्टर RP अग्रवाल, कार्यक्रम समन्वय कृषि विज्ञान केंद्र बिजपुरी आगरा से व्यक्तिगत अथवा फोन संख्या 0562263640 या मोबाइल संख्या 9412300655 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: श्रोताओ, अभी आपने हमारी वार्ता में डॉक्टर RP अग्रवाल से मृदा परीक्षण से लाभ के बारे में जानकारी ली, और आइए अब हम आपको बताते हैं आज और कल के मौसम के बारे में। आज का अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस। आगामी 24 घंटों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: श्रोताओ, आजकल भले ही बरसात तो कभी आंधी चल रही हो, पर महीना तो जेठ का ही चल रहा है, यानी भीषण गर्मी का मौसम। तो आइए भीषण गर्मी के इस मौसम में आनंद लेते हैं मधुर लोकगीत का।

श्रोताओं, आज के ग्रामीलोक कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की यशपाल सिंह को आज्ञा दीजिए। आप सबको हमारी राम राम।

अभी हमारे ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्यालोक। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मजदूर मंडल।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले सभी श्रमिक भाई बहनों को अंजू बाला का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। और बताएं साथियों, अब तो अनेक स्थानों पर मानसून आ गया है और धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर भी बढ़ रहा है, जिसका असर शुरू हो चुका है। अक्सर ही दिन में कई बार अलर्ट आता है फोन पर कि आंधी तूफान के बाद बारिश की संभावना है। और बेशक आंधी से घर गंदा हो जाता है, पर बारिश से हवा में जो ठंडक आ जाती है ना, उससे गर्मी में राहत तो मिलती है भाई। बाकी सूरज तो इस समय अपनी सतरंगी किरणों के साथ मिलकर सबके पसीने छुड़ाने की जिद में है, और ये किरणें जब जमीन पर पड़ती हैं तो त्वचा को नुकसान देती हैं, क्योंकि पराबैंगनी किरणों के कारण त्वचा पर लगातार पड़ने से जलन होती है, जिसे सनबर्न भी कहते हैं। और साथियों, ये किरणें उन्हें तो और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं जिन्हें एल्बिनिज्म होता है। नहीं समझे ना, एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता। साथियों, आपने भी ऐसे किसी ना किसी व्यक्ति को तो ज़रूर देखा होगा जिसके बाल सुनहरे या सफ़ेद होते हैं, आँखों की पुतलियाँ भी कुछ गुलाबी या सफ़ेद सी लगती हैं, और पूरे शरीर का रंग दूधिया सफ़ेद या गुलाबी सफ़ेद होता है। ऐसे व्यक्ति को या बच्चे को लोग बहुत ध्यान से या मुड़ मुड़ कर बार बार देखते हैं। वैसे कुछ भी अलग सा दिखता है और उसे पहली बार देखा हो तो हर कोई थोड़ी हैरानी से तो ज़रूर देखता है। मुझे याद है साथियों, जब मैं स्कूल में थी तो स्कूल जाने के रास्ते में एक लड़का ऐसा ही मुझे दिखा। उस दिन मैं कुछ डर भी गई, वो मुझे बहुत अजीब लगा। मैं भी नज़रें चुरा चुरा कर उसे बार बार

देख रही थी और मैं तेज तेज भी चलने लगी ताकि जल्दी से वहां पहुंच जाऊं जहां कुछ लोग हैं। और वो लड़का भाप गया कि मैं उसे अजीब समझ रही हूँ। वो मेरी ही साइड आने लगा तो मैं भागने लगी। फिर वो अपने घर के अंदर ही चला गया। उस दिन मैंने घर आकर अपनी मम्मी को बताया तो उन्होंने मुझे समझाया कि कोई डरने की बात नहीं है बेटा, किसी का रंग जन्मजात ऐसा होता है और इन्हें सूरजमुखी कहते हैं। तब कहीं मैं समझी और उससे डरना बंद किया। और फिर कभी वो मिल भी जाता तो मैं कभी उसे अजीब तरीके से नहीं देखती थी। फिर उसने भी कभी मुझे डराने की कोशिश नहीं की। साथियों, सच है कि कई चीज़ों पर इंसान का बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता। एल्बिनिज्म भी एक ऐसी अवस्था है, इसे बीमारी भी नहीं कह सकते, पर ये एक जन्मजात विकार तो है ही, जिसके कारण इससे पीड़ित लोग अलग दिखते हैं। इसीलिए लोग और बच्चे उन्हें अजीब तरीके से देखते हैं। इनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ही आज के दिन को हर साल अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि कोई भी ऐसे लोगों को परेशान ना करे, उनकी हंसी ना उड़ाए, क्योंकि वो भी बहुत असहज महसूस करते हैं जब कोई धीरे धीरे उनके बारे में बातें करता है। बल्कि ऐसे लोगों से तो सम्मान से बात करें। इनके शरीर का ये रंग कोई छुआछूत वाली बीमारी नहीं है साथियों। जो इनसे बात ना की जाए, इनसे दोस्ती ना की जाए, इन्हें अपनी टीम में शामिल ना किया जाए, ये भी साधारण लोग हैं। बस इन्हें थोड़ी इस बीमारी की वजह से, इस परेशानी की वजह से इन्हें आँखों से देखने में कुछ परेशानी होती है और अपनी त्वचा को सूरज की तेज किरणों से इन्हें बचाना होता है, क्योंकि इनकी त्वचा में मेलेनिन कम होता है और इनकी त्वचा पर बहुत जलन महसूस होती है जब ये सूरज की तेज रोशनी में जाते हैं। तो क्या आपको पता है कि शरीर में प्राकृतिक रूप से बनने वाला कौन सा ऐसा तत्व है जो हमारी त्वचा को रंग देता है और इसी रंगत के कारण चेहरा फूलों सा खिला खिला रहता है?

हमेशा पूछते रहिए और उनके उत्तर खोजते रहिए। यही करते करते आप बहुत कुछ जान समझ जाएंगे। और हाँ, हमने तो प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं, तो चलिए आपको बता दें कि शरीर में बनने वाला मेलेनिन ही त्वचा को रंग देता है, और जब इसका बनना कम हो जाता है तो सिर के बाल सफेद होने लगते हैं। और पता है, ये तत्व हमें त्वचा कैंसर और यूवी किरणों से भी बचाता है। तो चलिए आपको ये भी बता दें कि ऐसा आप क्या करें कि आपके शरीर में इसका बनना कम ना हो। तो आप भोजन में वो सब खाद्य पदार्थ शामिल कीजिए जो मेलेनिन के निर्माण में सहायक हैं, यानी आप अपनी थाली को रंगीन बनाइए। अरे ये क्या, कहीं ऐसा तो नहीं समझे आप कि कहीं आप ब्रश और रंग लेकर आ जाएं और थाली में घोल दें? भाई, हमने ऐसे नहीं कहा, हमारा ये मतलब नहीं है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, कमाल के कुछ टिप्स देना चाहते हैं कि आप ऐसे पोषक तत्वों को अपनी खाद्य पदार्थ ऐसे इस्तेमाल करें, अपने खाने में ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जिसमें ईश्वर ने ही रंग भरा है, यानी टमाटर, काली गाजर, चुकंदर, पपीता, केला, पालक और शकरकंद। वैसे श्रमिक साथियों, आपको ये सब इसलिए भी खाना चाहिए क्योंकि आपको अक्सर सूरज का सामना करना होता है और आप भरी दोपहरी में इतनी मेहनत जो करते हैं। वैसे आपके लिए खुशखबरी ये है, आपको अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकारी सहायता बहुत आसानी से मिल सकती है। आप भी अपने उद्योग के मालिक बन सकते हैं, तो शुरुआत छोटे स्तर से कीजिए, उसमें लाभ हो तो फिर बढ़ाइए। भाई, अपना काम कौन नहीं बढ़ाना चाहता? अगर आपका काम चल पड़े तो बढ़ाने में क्या हर्ज है? तो चलिए वार्ता के माध्यम से आप

0: हमेशा पूछते रहिए और उनके उत्तर खोजते रहिए। यही करते करते आप बहुत कुछ जान समझ जाएंगे। और हाँ, हमने तो प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं, तो चलिए आपको बता दें कि शरीर में बनने वाला मेलेनिन ही त्वचा को रंग देता है, और जब इसका बनना कम हो जाता है तो सिर के बाल सफेद होने लगते हैं। और पता है, ये तत्व हमें त्वचा कैंसर और यूवी किरणों से भी बचाता है। तो चलिए आपको ये भी बता दें कि ऐसा आप क्या करें कि आपके शरीर में इसका बनना कम ना हो। तो आप भोजन में वो सब खाद्य पदार्थ शामिल कीजिए जो मेलेनिन के निर्माण में सहायक हैं, यानी आप अपनी थाली को रंगीन बनाइए। अरे ये क्या, कहीं ऐसा तो नहीं समझे आप कि कहीं आप ब्रश और रंग लेकर आ जाएं और थाली में घोल दें? भाई, हमने ऐसे नहीं कहा, हमारा ये मतलब नहीं है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, कमाल के कुछ टिप्स देना चाहते हैं कि आप ऐसे पोषक तत्वों को अपनी खाद्य पदार्थ ऐसे इस्तेमाल करें, अपने खाने में ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जिसमें ईश्वर ने ही रंग भरा है, यानी टमाटर, काली गाजर, चुकंदर, पपीता, केला, पालक और शकरकंद। वैसे श्रमिक साथियों, आपको ये सब इसलिए भी खाना चाहिए क्योंकि आपको अक्सर सूरज का सामना करना होता है और आप भरी दोपहरी में इतनी मेहनत जो करते हैं। वैसे आपके लिए खुशखबरी ये है, आपको अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकारी सहायता बहुत आसानी से मिल सकती है। आप भी अपने उद्योग के मालिक बन सकते हैं, तो शुरुआत छोटे स्तर से कीजिए, उसमें लाभ हो तो फिर बढ़ाइए। भाई, अपना काम कौन नहीं बढ़ाना चाहता? अगर आपका काम चल पड़े तो बढ़ाने में क्या हर्ज है? तो चलिए वार्ता के माध्यम से आप
1: तो पता लगा कि इंजीनियर है, वो फॉरेन से आएगा, वो समय लेगा, तब तक आपकी मशीन बंद रहेगी, और मशीन अगर 1 हफ्ते बंद रही तो कितना आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपकी उत्पाद की कॉस्ट बढ़ा देगा, कॉस्ट बढ़ा देगा तो फिर मुझे लॉन्च करने में दिक्कत आएगी। तो मैन, मटेरियल्स, मशीन, देन मार्केट। जो भी आप उत्पाद बनाएंगे वो आप सबसे पहले अपने नियर बाई सेल करेंगे, 1-2 किलोमीटर मोहल्ले में या जो इस कस्बे में रह रहे हैं वहाँ, उसके बाद वो इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, फिर स्टेट लेवल पर, तब राष्ट्रीय लेवल पर, उसके बाद एक्सपोर्ट शुरू होता है। तो आपको उसका जो मार्केट है वहाँ लास्ट में जो आता है मार्केट सर्वे, कि जो आप उत्पाद बना रहे हैं वहाँ उसकी डिमांड होनी चाहिए। सबसे पहले आपको जो आप उत्पाद बनाने जा रहे हैं कहीं भी, तो आप पहले वहाँ मार्केट सर्वे कर लें कि यहाँ के लोग किस माल को कहाँ से लेके आते हैं। अगर दिल्ली से लेके आते हैं या कहीं पंजाब से लेके आते हैं, तो उस उत्पाद का आप सिलेक्शन करें। और लास्ट में आता है मनी। आप देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिनके पास 500 रुपए नहीं थे और आज वो 500 करोड़ के लोग बने हुए हैं। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, अगर आप देखेंगे नियर बाई, तो उसका कारण था उनके अंदर एप्टीट्यूड, उत्साह, अनुशासन, लगन, इन चीजों की जो जरूरत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रोजगार में, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए। दूसरा, अपना मनोबल आपका हाई होना चाहिए, क्योंकि समाज में आपका मनोबल बढ़ाने वाले लोग बहुत कम होंगे। आपको सरकारी संस्थान या इनके जो अधिकारीगण हैं वो आपका मनोबल बढ़ा सकते हैं कि आप अपना उद्यम स्थापित करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को माइन्यूट ऑब्जर्वर बनना है। आप माइन्यूट ऑब्जर्वर होंगे, आप देखिए जैसे जापान के उत्पाद आप क्यों लोग जनरली खरीदते हैं, उनके जो उत्पाद हैं वो इस तरह की स्लीक इन नेचर होते हैं, क्वालिटी देख के। क्वालिटी का मतलब है ओवरऑल सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। अगर आप कोई उत्पाद बना रहे हैं तो उसका ओवरऑल सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर, हमें जितने भी उद्यम चलाने वाले या चलाएंगे उन लोगों को QCD फॉलो करना चाहिए। क्यू फॉर क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब है ओवरऑल सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। जस्ट लाइक अगर आप किसी शॉप में गए, आपने अगर ब्रीफ केस देखी, देखने के बाद आपने देखा उसका साइज और शेप बिल्कुल ओके है, लेकिन उसका कलर जो है वो पिंचिंग है आपकी आईज के लिए। पिंचिंग का मतलब कि वो आपकी रेड इन कलर है, तो वो आपको फुल्ली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आपका ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, जस्ट लाइक आपकी जैपनीज बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जिनको आप देख के ही आपकी इच्छा होती कि मैं इनको खरीद लें। अच्छा, सी फॉर कॉस्ट, क्वालिटी के बाद कॉस्ट, कॉस्ट भी ऑप्टिमम कॉस्ट, क्योंकि इंडिया में जो मार्केट है वो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम डिवाइडेड है। जैसे आपने अगर बाई चांस टी शर्ट बनाना शुरू किया है तो आप किन लोगों के लिए बना रहे हैं? अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 100 200 है।

0: किसी शर्ट की या उसकी पैंट की, या 500 है, क्योंकि 100-200 लेने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी। जब आप 500 में जाएंगे तो उनकी और कम हो जाएगी, 1000 में और कम हो जाएगी, जो महंगे आइटम हैं उनके खरीदारों की संख्या और कम होती चली जाएगी। तो पहले आपको मार्केट जो हमारा है वो हमने बताया कि आपको इनकम के आधार पर डिवाइडेड है, तो आपको देखना है कि हम किन लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारा जो है क्वालिटी, कॉस्ट एंड डिलीवरी। डिलीवरी में मैं बताऊं आपको, हमारे बहुत सारे जो निर्यातक हैं उनके माल के ऑर्डर कैंसिल हो गए, उसका कारण ये था कि वो टाइमली डिलीवर नहीं कर पाए। मैंने देखा कि हमारे यहाँ डिलीवरी में बहुत लोग पिछड़ते हैं। आप देखिए कि अगर आप किसी दुकान पे अपने मोबाइल को लेके जाएंगे या उस पर रिपेयर के लिए, तो जैसे ही आप रिपेयर के लिए देके जाएंगे वो कह देगा नहीं ठीक है अभी आप आ जाइए और आपको आध घंटे में मिल जाएगा। जब पता लगा मार्केट होके आए तो पता लगा कि वो उसने आपकी मोबाइल को खोला भी नहीं है। तो डिलीवरी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो QCD फॉलो करना है, क्वालिटी, कॉस्ट एंड डिलीवरी, और इन चीज़ों पर आपको अपना फोकस करना चाहिए। सेकेंडली ये है कि आपके अंदर स्वयं का मनोबल, एक पैशन शब्द होता है, पैशन के जुनून आपके अंदर हो। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, मैंने कहा आपको मनी की जहां तक सवाल है तो सरकार ने कुछ योजनाएं भी चला रखी हैं, जैसे लाइक केंद्र सरकार की एक PMGB स्कीम है, अभी शायद उस पर राइडर लगा हुआ है, लेकिन उसमें आप ऐसी स्कीम को लें जिसमें आपको सब्सिडी भी मिले, सब्सिडी के तौर पर। वैसे तो मुद्रा योजना है लेकिन उसमें सब्सिडी नहीं मिलती है। मैं आपको एडवाइज करूंगा कि आप उस योजना का लाभ लें जिसमें सरकार सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब कि आपको उतना पैसा देना नहीं होगा। ऐसी MYSY है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है जो कि राज्य सरकार द्वारा इम्प्लीमेंटेड है, ODOP स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक स्कीम राज्य सरकार ने चलाई हुई है। तो मनी के तौर पर ये, वैसे तो स्वयं का अगर आपका मनोबल है, आप देखिए कि उद्यमिता ही एक ऐसा एरिया है जिसमें लोग, स्काई इज द लिमिट। आप देखिए बहुत सारे लोगों का, क्योंकि इसमें असीमित इनकम होती है। अगर आप नौकरी करेंगे तो पहली तारीख को तनख्वाह मिलेगी, अगर आप बाई चांस बिजनेस कर रहे हैं तो रोजाना आपके पास पैसा आता रहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को पुनः ये कहना चाहूंगा कि आप कोई भी अगर उद्यम स्टार्ट करते हैं तो प्रोडक्ट का सिलेक्शन, साइट का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करें, उन लोगों के संपर्क में रहें जो आपका मनोबल बढ़ाए, जो आपको प्रोत्साहित करें, हतोत्साहित करने वाले लोगों से दूर रहें, आप 100% सक्सेस होंगे।
1: हाँ तो साथियों, थी ना MSME आपके लिए लाभप्रद जानकारी। ऐसा नहीं लग रहा था ना जैसे कि ब्रजेश कुमार यादव ने इस विषय पर हम सबकी आंखें ही खोल दी हो।
2: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो फिर आराम से पार कर लेना।
3: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
4: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: हां तो साथियों, अभी आपने MSME पर वार्ता सुनी। ऐसा लग रहा था सच में कि हम सबको इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली है। वैसे साथियों, हल्के में मत लीजिए देखने सुनने को, इन्हीं के कारण बड़े बड़े संस्थान चल रहे हैं और काम कर रहे हैं हमारे देश में। भाई, हम आपसे बात कर रहे हैं तो इसके पीछे भी एक पूरा सिस्टम काम करता है जो प्रसार भारती के अंतर्गत आता है। इसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों शामिल हैं। एक समय था साथियों जब दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सीमित समय के लिए कार्यक्रम प्रसारित होते थे। उस समय आज की तरह इतने चैनल तो होते नहीं थे, तो सबको कार्यक्रमों का बहुत इंतजार रहता था। और अब तो दूरदर्शन और आकाशवाणी पर क्षेत्रीय चैनल भी आप अपनी भाषा में अपनी संस्कृति के कार्यक्रम उस पर सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। साथियों, ये संस्थान पूरी तरह वैधानिक है क्योंकि ये 1997 के प्रसार भारती अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है जो प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के तहत आता है। इसके नेटवर्क के जरिए दुनिया के 110 से

ज्यादा देश जुड़े हुए हैं और प्रवासी भारतीय जब अपने देश के कार्यक्रम दूरदर्शन या आकाशवाणी के जरिए सुनते या देखते हैं तो उन्हें बहुत अपनापन महसूस होता है। साथियों, प्रसार भारती की देश में क्या भूमिका है और इसका हम देशवासियों के लिए कितना महत्व है, ये तो आपने ज्ञान सागर में जान ही लिया। वैसे ये पुराने समय में हैरानी की बात थी कि जब पलक झपकते ही टीवी पर चित्र बदल जाते थे और पूरा परिवार ही नहीं गली मोहल्ले के सब लोग मिलकर कमेंट्री सुनते थे। क्या माहौल होता था, कैसे इतनी दूर से आप तक आवाज़ पहुंच जाती है ना, जादू जैसा लगता है। पर इसके पीछे विज्ञान और वैज्ञानिकों की नई खोजें हैं जो और आगे की सोच बनाए रखने का उत्साह देती हैं। ऐसी ही एक खोज है जो उन लोगों के लिए वरदान है जो हाथों और शरीर को हिला सकने में असमर्थ है, और उसका नाम है न्यूरल ईयरबड। साथियों, ये कान में लगने वाले साधारण ईयरबड नहीं है जिससे आप आवाज़ सुनते हैं, तरह तरह के गीत संगीत सुनते हैं, बल्कि ये कान में लगने वाले ऐसे ईयरबड्स हैं जो दिखने में तो साधारण ईयरबड्स जैसे लगते हैं लेकिन ये बिना हाथ लगाए या आवाज़ दिए कंप्यूटर, व्हीलचेयर, स्मार्टफोन को नियंत्रित कर सकते हैं। अब आपको ये बताएं कि ये कैसे काम करते हैं, क्योंकि आप भी हैरान तो हो रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें बन गई हैं भाई। वाह, इन ईयरबड्स में दरअसल क्या है कि छोटे छोटे सेंसर लगे होते हैं। इन्हें लगाकर जब कोई अपनी पलकें झपकता है, जबड़ा पीसता है, भौहें सिकोड़ता है या मुस्कुराता है तो उससे पैदा होने वाले हल्के से करंट को समझकर ये सेंसर वही काम करते हैं जो आप चाहते हैं। क्योंकि ये एआई से भी जुड़े हैं तो कोई गलती भी नहीं हो सकती। साथियों, कल्पना कीजिए उन मजबूर लोगों की जो किसी घटना के चलते पैरालिसिस के शिकार हो गए हैं और बिस्तर पर पड़े हैं। शरीर काम नहीं कर रहा पर दिमाग कुछ कुछ ठीक है। जब ऐसे लोगों के पास बाई चांस अगर कोई ना हो तो ऐसे में ये ईयरबड्स उनके कंप्यूटर या फ़ोन से कनेक्ट होकर खुद ही संदेश भेज सकते हैं। ये खादानों, दूर दराज के इलाके में काम करने वाले जो हमारे श्रमिक हैं उनके लिए भी ये ईयरबड्स जो हैं एक वरदान है, जो कभी कभी ऐसे हालातों में फंस जाते हैं जहां मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पाती और हाथ पैर हिलाना नामुमकिन हो जाता है। सच में साथियों, ऐसी खोजें विज्ञान का वरदान है और आप हमारे कार्यक्रम में ऐसी ऐसी खोजों के बारे में तो सुनते ही हैं और भी अन्य विषयों पर कितनी सारी जानकारी पाते हैं। और आपको ये जानकारी मिलती रहे और आप कार्यक्रम सुनते रहें तो इसके लिए हमसे जुड़े रहिए। और इसी के साथ कार्यक्रम मजदूर मंडल को यहीं संपन्न करने की अंजू बाला को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी हमारे श्रमिक श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, शाम के 7 बजने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और

0: से यात्रा से आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगी। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जीतेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। लुधियाना में श्री पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल लोकोन्मुखी और विकास को प्राथमिकता देने वाला रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। उन्होंने कहा कि टिकाऊ कृषि, नवाचार और अनुसंधान से ही भारत विकसित बनेगा। नई दिल्ली में कृषि सम्मेलन में श्री बिरला ने कहा कि कृषि के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर भारत दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री अलमुर्गन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। खेलों में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय प्रशांत कुमार सिन्हा। Prime Minister Narendra Modi embarked on a six-day visit to France and Slovakia today to further deepen bilateral ties with the two European countries. On the first leg of the visit, the

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 7:10 हुए हैं। विविधा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह की वार्ता। विषय है करें योग रहे निरोग।
1: करें योग रहे निरोग। योग है चित्त वृत्ति निरोग है। चित्त की वृत्ति

का निरोग बनाना योग का आशय है। सामान्यतः योग को मन तथा आत्मा से समझा जाता है, लेकिन पतंजलि में मन तथा शरीर को एक ही मानते हैं। भारतवर्ष में आध्यात्मिक प्रक्रिया को योग कहते हैं, जिसमें शरीर और मन आत्मा को एक साथ लाने का प्रयास करता है। यह शब्द प्रक्रिया और धारणा ध्यान प्रक्रिया से संबंधित है। योग शब्द बौद्ध धर्म के साथ चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका आदि में भी फैला हुआ है। इस समय सारे सभ्य जगत में योग से लोग परिचित हैं। इतनी प्रसिद्धि के बावजूद भी इसकी परिभाषा सुनिश्चित नहीं हो पाई है। भगवत गीता प्रतिष्ठित ग्रंथ माना जाता है। इसमें योग शब्द बार बार प्रयोग हुआ है, कभी अकेले, कभी सविशेषण, जैसे बुद्धि योग, संन्यास योग, कर्म योग। वेदोत्तर काल में भक्ति योग और हठ योग नाम भी प्रचलित हुए हैं। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार क्रिया योग देखने को मिलता है। इन सब स्थलों में योग शब्द के अर्थ एक दूसरे के विरोधी हैं। इन सब प्रयोगों को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि योग की परिभाषा करना अत्यंत कठिन है। परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोषों से मुक्त हो। योग शब्द के वाच्यार्थ का ऐसा लक्षण बतला सके जो योग के प्रत्येक प्रसंग के लिए उपयुक्त हो। गीता में कृष्ण ने एक स्थान पर कहा है, योग है कर्मस कौशलम, अतः कर्मों में कुशलता को योग कहते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि जीवात्मा एवं परमात्मा के मिल जाने को योग कहते हैं। शिव संहिता में योग को चार प्रकार से वर्णन किया गया है, जैसे मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। पतंजलि के अनुसार योग को 8 प्रकार से वर्णन किया गया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, समाधि। शिव संहिता के अनुसार मंत्र योग का संबंध मन से है। मनन इति मन, जो मनन चिंतन करता है वही मन है। मन की चंचलता का निषेध मंत्र के द्वारा करना मंत्र योग में आता है। हठ योग, हठ योग का शाब्दिक अर्थ किसी कार्य को हठ पूर्वक करना। ह शब्द का अर्थ सूर्य तथा ठ शब्द का अर्थ चंद्र से जाना जाता है, अर्थात सूर्य एवं चंद्र की समान अवस्था को हठ योग कहते हैं। लय योग, चित्त का अपने स्वरूप में विलीन होना, अर्थात साधक के चित्त में उठते बैठते हर समय ब्रह्म का ध्यान रहे, इसे लय योग कहते हैं। राजयोग, यह सभी योगों का राजा है। राजयोग का विषय चित्त वृत्तियों का निरोध करना होता है। इसी क्रम में पतंजलि के अनुसार समाहित चित्त वालों के लिए अभ्यास, निरंतर अभ्यास, और वैराग्य तथा विक्षिप्त चित्त वालों के लिए क्रिया योग का सहारा लेकर आगे बढ़ने को बताया गया है। योग शास्त्रों में योगासनों की संख्या 84 लाख बताई है, जिसे केवल भगवान शिव ही कर सकते थे, लेकिन उनमें भी प्रमुख 84,000 माने गए। चूंकि संख्या बहुत अधिक थी, अतः उनमें भी प्रमुख 8,400 हुए और लास्ट में मात्र 84 प्रमुख आसन रह गए। पतंजलि योग के अनुसार मुख्य 11 आसन हैं, जैसे सिद्धासन, पद्मासन, गौमुखासन, वीरासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येन्द्रासन, पश्चिमोत्तासन, मयूरासन, सवासन। जिस तरीके की शारीरिक, मानसिक प्रदूषण, इन चीजों से मनुष्य जूझ रहा है, इस अपनी वर्तमान समय की व्यस्ततम शैली में योग के अलावा और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि स्वस्थ एवं शांति प्राप्त की जा सके। इस व्यस्ततम शैली में संतोष पाने के लिए लोग योग करते हैं। ऐसा नहीं कि इस योग का महत्व लोग आज समझे हैं, यह अपने वेदों से लिया गया है। जो अपनी प्राचीनतम चिकित्सा आयुर्वेद है, योग चिकित्सा उसका 8वां एक अंग है। 8 चिकित्साओं में योगिक चिकित्सा मुख्य है। योग करने से मनुष्य का तनाव दूर होता है, मन मस्तिष्क को शांति मिलती है, आत्मा की शुद्धि होती है। आज लोग मोटापे से परेशान हैं, उन्हें योग से बहुत फायदे हो रहे हैं। यही कारण है कि 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मना रहे हैं।
आधुनिक युग में योग का बहुत अधिक महत्व है। इसका कारण व्यस्तता और मन की व्यग्रता है। आज के समय में योग की ज्यादा आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि मन व शरीर अत्यधिक तनाव प्रदूषण भागम भाग के जीवन से रोगग्रस्त हो चला है। आधुनिक व्यथित मन अपने केंद्र से भटक गया है।

0: उसके अंतर्मुखी और बहिर्मुखी होने में संतुलन नहीं रहा। अधिकतर अति बहिर्मुख जीवन जीने में ही आनंद लेते हैं, जिसका परिणाम संबंधों में तनाव, अव्यवस्थित जीवनचर्या सामने आती है। अतः अपने मन की शांति और स्वयं को रोग मुक्त और स्वस्थ बनाने के लिए योग बहुत ही अति आवश्यक है। मानव अपने जीवन की श्रेष्ठता के चरम पर अब योग के ही माध्यम से आगे बढ़ सकता है, इसलिए योग के महत्व को समझना होगा। योग सिर्फ शरीर ही नहीं, मन को भी लाभ पहुंचाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य अक्सर तनाव और अनिद्रा का शिकार हो जाता है। इस तरह की समस्याओं का समाधान केवल योग में ही छिपा हुआ है। योग का लक्ष्य केवल स्वास्थ्य में सुधार ही नहीं, इससे मोक्ष प्राप्त तक संभव है, जो सभी सांसारिक कष्टों से दूर कर परम ब्रह्म के साथ समरूपता का एहसास कराता है। योग के माध्यम से, जैसा कि ये बताया गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, यह केवल योग के माध्यम से ही संभव है। आजकल मुख्य बीमारियां जैसे मधुमेह, हार्ट डिसीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, ये कॉमन चीजें हो गई हैं जो हर पांचवें या छठवें मनुष्य में मिल जाती हैं। यदि पर्टिकुलर आसन किए जाएं तो किसी दवा की आवश्यकता नहीं होती। लिहाजा जो हमारा करें योग रहें निरोग का जो सिद्धांत है वह लागू होता है।
1: विविधा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे करें योग रहे निरोग विषय पर वार्ता। वार्ताकार थे डॉक्टर सतीश कुमार सिंह। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा है नए भारत का दर्शन। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के सातवें राष्ट्रीय

0: राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जनपदों में हुए संवाद कार्यक्रम, प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपील की कि नए भारत के साथ नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना होगा। दुनिया त्रस्त है, लेकिन नए भारत ने वैश्विक संकट में भी ऊर्जा संकट से देश को बचाया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पीढ़ी नए भारत का दर्शन कर रही है।
1: आज हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था, आप में से हर व्यक्ति जानता है। वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है। हम सब गौरवशाली हैं, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही नया भारत है जो गरीबों का कल्याण करता है और सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है। उन्होंने क्षेत्र में बनी सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कहा कि कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी।
1: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी, और प्रगति होगी नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। 2 दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान, कृषि, एमएसएमई, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा पर विस्तार से अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों से नवाचार व अनुसंधान को राष्ट्र निर्माण तथा जन कल्याण से जोड़ने का आह्वान किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान परिसर में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का निरीक्षण किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 7 मंजिला इस परियोजना के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएचयू प्रशासन के अधिकारियों को भी परियोजना की नियमित निगरानी करने और निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बुजुर्गों को समर्पित यह अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग देश का तीसरा तथा उत्तर भारत का प्रमुख वृद्धावस्था चिकित्सा केंद्र होगा। केंद्र में बुजुर्गों के लिए मल्टी स्पेशलिटी जेरियाट्रिक वृद्धावस्था चिकित्सा ओपीडी संचालित की जाएगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जन भागीदारी के साथ सामूहिक योग के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सभी जनपदों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया

0: और विस्फोट के बाद उसमें आग लग गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रदेश के मंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वाराणसी में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से संवाद किया। गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा सुशासन और जनकल्याण को शासन का मूल आधार बनाया है। इसी क्रम में जनपद हापुड़ में प्रदेश के वन पर्यावरण मंत्री केपी मलिक ने पत्रकारों से वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के जनकल्याण के कार्य किए हैं।
1: आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, रोटी कपड़ा मकान, इनकी आम आदमी को जरूरत होती है, उस सारी व्यवस्था भारत सरकार उत्तर प्रदेश ने की है और पक्षपात के तहत नहीं, निष्पक्षता के साथ ही है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करने का काम किया।
0: वहीं डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि देश ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है।
2: प्रधानमंत्री का 12 साल का कार्यकाल रिफॉर्म का था, परफॉर्म का था, ट्रांसफॉर्म का था और जिसका परिणाम है कि पिछले 12 सालों में भारत के 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो उससे ऊपर आए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, मां कामाख्या

0: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र के गांव धौला कुआं के पास आज हुए एक सड़क हादसे में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं कल से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा है नए भारत का दर्शन। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जनपदों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
3: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस पर केंद्रित भेंटवार्ता। एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है एल्बिनिज्म, विषय पर डॉक्टर रजनीश सिंह से सोनिका शर्मा की बातचीत।
4: श्रोताओं, आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जिनका पूरा शरीर सफेद होता है, यहाँ तक कि उनकी आंखों और बालों का रंग भी सफेद होता है। इसे हम रंगहीनता या एल्बिनिज्म कहते हैं। ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार सोनिका जी।
4: डॉक्टर साहब, एल्बिनिज्म रोग क्या है और ये कैसे होता है?
5: सोनिका जी, जैसे आपने बताया कि हम लोग अपने समाज में इस तरह के कभी कभी लोगों को देखते हैं जो कि पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं, बच्चा हो सकता है, कि जो बिल्कुल भूरे या सफेद रंग के होते हैं। ये एक जन्मजात कंजेनाइटली इनहेरिटेड रोग है जिसमें एक जीन्स का डिफेक्ट हो जाता है और एक टायरोसिनेज एंजाइम की कमी से मेलेनिन बनना बंद हो जाता है जो कि टायरोसिन एमिनो एसिड से बनता है। इसकी वजह से जो हमारी स्किन का कलर है, चाहे किसी का गेहुआ होता है, किसी का सांवला होता है, किसी का थोड़ा गोरेपन पर होता है, ये कलर स्किन का नहीं आ पाता है। और जब इसकी डिफिशियंसी बहुत ज्यादा होती है, कमी ज्यादा होती है, तो ये बालों का रंग, स्किन के कलर को, आंखों के कलर को, सब पर इफेक्ट करता है। यहां तक कि आंखों की पलके और भौहें जो हैं उन तक को सफेद कर देता है, क्योंकि ये जन्मजात रोग है। और हम लोग इसको ऑटो

0: कोमल रिसेसिव कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे किसी को एल्बिनिज्म हुआ तो ये जरूरी नहीं उसके माँ बाप में से किसी को एल्बिनिज्म हो, वो दोनों माँ बाप नॉर्मल हो सकते हैं, बस उनमें एक तरह से डोरमेंट टाइप में शांत रूप में वो जीन्स प्रेजेंट थी जो कि कॉम्बिनेशन होकर उस पेशेंट में आ जाती है, बच्चे में आ जाती है, उसको एल्बिनिज्म हो जाता है। तो इस तरह ये एक तरह से जन्मजात रोग है और बच्चों में ही देखते ही जन्म पर ही बच्चे की डायग्नोसिस हो जाती है, कोई विशेष इसके लिए डॉक्टर को प्रयास नहीं करना पड़ता है।
1: जी, तो एल्बिनिज्म किसी को जब होता है तो इससे शरीर हमारा किस तरीके से प्रभावित होता है, क्या समस्याएं हैं जो हम सामान्य तौर पर फेस करते हैं?
0: जैसे मैंने कहा मेलेनिन की कमी या बिल्कुल एब्सेंट होता है इन लोगों में, तो सबसे पहले तो इसमें आंखें प्रभावित होती हैं, आंखों की जो पुतली होती है वो या तो नीली होती है इन लोगों की या पिंक होती है, रेडिश होती है, बल्कि ब्राउन होती है, और भौहें आंखों की पलके जो हैं ये सफेद होती हैं, साथ ही स्किन और बाल भी सफेद होते हैं। इसकी शेड्स अलग अलग हैं, 7-8 तरह का एल्बिनिज्म होता है जिसकी विस्तार में मैं जाना शायद जरूरी नहीं समझता हूं, वो हम डॉक्टरों के लिए है, लेकिन उसकी वजह से अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन हमें समाज में मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि स्किन में मेलेनिन नहीं होता है, ये मेलेनिन जो है सन की, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं इनसे हमारी स्किन की रक्षा करता है, तो ये रक्षा प्रणाली खत्म हो जाने की वजह से सूर्य की किरणों से स्किन बर्न बहुत होने के चांस रहते हैं, स्किन के खुश्क होके स्केल्स बन जाते हैं और बाद में मेलेनोमा या स्किन कैंसर होने की भी घटनाएं इन लोगों में बढ़ जाती हैं। इसके अलावा क्योंकि आंख को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस कलर एब्सेंस की वजह से, तो सूर्य की किरणें आंखों को बहुत तकलीफ देती हैं, इसको हम फोटोफोबिया कहते हैं, जिससे कि सूर्य की तेज किरणों से आंखों में दर्द होता है, देखने में परेशानी होती है। इन लोगों को आप देखेंगे तो ये आंखें थोड़ी सी मिचमिचाते रहते हैं इस कोशिश में कि कम से कम रोशनी जाए, तो वो इनको तकलीफ होती है। साथ ही आंखों की रोशनी भी कई लोगों में बहुत कम हो जाती है क्योंकि पर्दा भी ठीक से आंखों का डेवलप नहीं हो पाता है।
1: तो आप ऐसे व्यक्ति को जिसे एल्बिनिज्म है उसे क्या सलाह देंगे कि वो अपनी जीवन शैली को कैसे बेहतर बनाए और रंगहीनता के कुप्रभावों से वो बच सके?
0: सोनिका जी, ये तो जग जाहिर हो गया कि जब जन्मजात है तो इसका मतलब यह है कि इसका क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अपनी जीवन प्रणाली में कुछ सुधार करके, कुछ चेंज करके आदमी इसके दुष्प्रभाव से बच सकता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एल्बिनिज्म की वजह से किसी भी पुरुष या महिला के पूरे जीवन पे कोई ऐसा बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता कि उनकी उम्र कम हो जाए, कुछ हो जाए, वो बिल्कुल जो नॉर्मल सारे समाज के लोग हैं उसी तरह का जीवन उतना ही जी सकते हैं। बस कुछ कुप्रभाव से बचने के लिए जैसे स्किन को सन से बचाना है तो एक तो पूरी बाहों के कपड़े पहने जिससे एक्सपोजर ना हो, पैरों में भी कपड़े पहने, तेज सूर्य की रोशनी में बाहर ना निकले, हैट होते हैं जिनमें चौड़ा किनारा हो जो कि तेज रोशनी को चेहरे पे आने से रोकते हैं,
1: कावॉय हैट टाइप से,
0: जी हाँ, इनको हम लोग ब्रिम्ड हैट्स कहते हैं, तो जैसे मैक्सिकन हैट देखे होंगे उस तरह के चौड़े वाले हैट उन्हें लगाएं, और या डार्क कलर के ग्लासेस गॉगल्स यूज करें जिससे कि तेज किरणें आंखों के अंदर ना जाएं। साथ ही इन लोगों को अपनी त्वचा का परीक्षण हर 6 माह पे एक त्वचा रोग विशेषज्ञ से कराते रहना चाहिए कि उनके त्वचा में कोई ऐसा चेंज तो नहीं आ रहा है जो कि आगे परेशान करेगा। साथ ही आंखों के लिए जैसे सूर्य के एक्सपोजर से बचना है और आंखों को आराम ज्यादा से ज्यादा देना है जब भी सूर्य से एक्सपोजर हो जाए उसके बाद।
1: कई बार ऐसा होता है कि लोग इसे छुआछूत का रोग समझ लेते हैं, बिल्कुल ही अलग थलग सा व्यवहार करने लग जाते हैं, खासकर अगर महिलाओं में ये हो गया तो, क्योंकि महिलाओं के लिए सौंदर्य के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। ऐसे में अगर कोई महिला को रंगहीनता की समस्या अगर हो जाती है तो वो क्या कर सकती है, क्योंकि ऐसे में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लोगों का चला ही जाता है।
0: आपने बिल्कुल सही कहा कि समाज में बचपन से ही, मान लीजिए किसी क्लास में किसी स्कूल में ऐसा बच्चा एडमिट हो जाता है तो सब उसे एक तरह से अजूबे की तरह देखते हैं, जबकि समाज में जागरूकता आने की जरूरत है कि ये बिल्कुल हम लोगों की तरह हैं, एक तरह से सिर्फ स्किन में एक पिगमेंट कम होने की वजह से इनको, और साथ ही इनकी समस्याओं से हम लोगों को सिंपैथी होनी चाहिए, तो किसी भी तरह से इनके साथ भेदभाव करना गलत है, इनको अपने जैसा ही समझना चाहिए, इनके साथ सिंपैथी से रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे इसी वजह से इस

0: स्कूलिंग अपनी पूरी नहीं कर पाते हैं, समाज में घुल मिल नहीं पाते हैं, उनका व्यवहार चेंज हो जाता है, उनमें मानसिक रूप से डिप्रेशन की भी समस्या आती है। इसी तरह जैसे आपने महिलाओं के लिए कहा, जबकि एक दूसरी तरफ गोरेपन को हमारे यहाँ एक सुंदरता का पैमाना माना जाता है और इन लोगों को बेचारों को इस तरह हे नजर से देखा जाता है, तो किसी को भी इस बात से डरने की जरूरत नहीं है। संक्रामक नहीं है, किसी को लग नहीं सकता, साथ ही कोई कमी अपनी नहीं है जिसकी वजह से इन्हें ये अपीयरेंस ऐसी मिली है। सिर्फ एक छोटे से एंजाइम के डिफेक्ट की वजह से इनमें ऐसा होता है। कोई भी दूसरी महिलाएं हैं उनको अपने समकक्ष समझे और खुद एल्बिनेंस की महिला में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे में कोई ऐसी कमी नहीं है जिससे कि मैं समाज को किसी भी तरह की हानि पहुंचा सकूं।
1: जी डॉक्टर साहब, कोई खास संदेश जो आप हमारे श्रोताओं को कन्वे करना चाहें?
0: मैं तो यही कहूंगा कि सारा समाज जो है इस बारे में जागरूक हो, क्योंकि ये वैसे तो बहुत कॉमन नहीं है। 17,000 से 20,000 की प्रेगनेंसी में एक बच्चा जो है इसका शिकार होता है, तो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन जो भी हैं उन लोगों को हमें यही इसी तरह करना चाहिए कि अपने बिल्कुल समकक्ष माने, उनसे सिंपैथी रखें, कोशिश ये करें कि उनका बचाव हो सूर्य के एक्सपोजर से कम उनकी आंखों की परेशानी हो, और चाहे आईज के एक्सपर्ट हैं या स्किन के स्पेशलिस्ट हैं, वो सब इनको बहुत ही सावधानी से ट्रीट करते हैं। और यही एल्बिनिज्म के मरीज में भी पूरा हम लोगों को कॉन्फिडेंस जगाना चाहिए कि तुम हैं हम बिल्कुल अपने समान ही समझते हैं।
1: शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना इतना इम्पोर्टेंट समय देने के लिए और ये खास जानकारी देने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रजनीश सिंह से सोनिका शर्मा की बातचीत, एक दुर्लभ आनुवांशिक विकार है एल्बिनिज्म विषय पर, और ये भेंटवार्ता केंद्रित थी अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस पर। इस समय आप आकाशवाणी के आगरा केंद्र से सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह की। श्रोताओं, 1857 का भारतीय विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उत्तरी और मध्य भारत में एक बड़ा विद्रोह था। कंपनी की सेना और छावनियों में सेवा की शर्तें, सिपाहियों की धार्मिक मान्यताओं और पूर्वाग्रहों के साथ तेजी से टकराव में आ गई थी। इतना ही नहीं, देशी भारतीय शासकों के प्रति अंग्रेजों की उदासीनता और अवध पर कब्जे ने असंतोष को बढ़ावा दिया। लॉर्ड डलहौजी के मारवैक्स के कब्जे की नीति, हड़प नीति और लाल किले में उनके पैतृक महल से मुगलों को हटाने की योजना ने भी लोकप्रिय गुस्से को जन्म दिया। अंतिम चिंगारी तब लगी जब नए पेश किए गए पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल कारतूसों में गायों और सुअर की चर्बी के अफवाहपूर्ण उपयोग द्वारा प्रदान की गई। सैनिकों को कारतूसों को अपनी राइफलों में लोड करने से पहले उन्हें अपने दांतों से काटना पड़ता था, जिससे वे चर्बी खाते थे। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अपवित्र था। तब बिगुल बजाया मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने, जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह से ठीक पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने ब्रिटिश वरिष्ठों के प्रति उनकी अवज्ञा और बाद में उनकी फांसी ने 1857 के भारतीय विद्रोह की आग को प्रज्वलित कर दिया। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने रैंकों को तोड़ दिया और अपने कमांडिंग अधिकारियों पर हमला कर दिया, जिससे कुछ की मौत हो गई। वे 11 मई को दिल्ली पहुंचे, कंपनी के टोल हाउस को आग लगा दी और लाल किले में मार्च किया, जहां उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से अपना नेता बनने और अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के लिए कहा। अंततः सम्राट सहमत हो गए और विद्रोहियों द्वारा उन्हें शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया गया। विद्रोहियों ने शहर की अधिकांश यूरोपीय, यूरेशियन और ईसाई आबादी की भी हत्या कर दी। अवध के अन्य हिस्सों और उत्तर पश्चिमी प्रांतों में भी विद्रोह भड़क उठे, जहां विद्रोह के बाद नागरिक विद्रोह हुआ, जिससे लोकप्रिय विद्रोह हो गया। हालांकि

अनु में अंग्रेज सतर्क नहीं थे और इस प्रकार प्रतिक्रिया करने में धीमे थे, लेकिन अंततः बलपूर्वक जवाब दिया। विद्रोहियों के बीच प्रभावी संगठन की कमी और अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता के कारण विद्रोह समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने दिल्ली के पास विद्रोहियों की मुख्य सेना से लड़ाई की और लंबी लड़ाई और घेराबंदी के बाद उन्हें हरा दिया। 20 सितंबर 1857 को शहर पर पुनः कब्जा कर लिया। इसके बाद अन्य केंद्रों में भी विद्रोह को दबा दिया गया। आखिरी महत्वपूर्ण लड़ाई 17 जून 1858 को ग्वालियर में लड़ी गई, जिसके दौरान रानी लक्ष्मीबाई की मौत हो गई। तात्या टोपे के नेतृत्व में छिटपुट लड़ाई और गुरिल्ला युद्ध 1859 के बसंत तक जारी रहा, लेकिन अंततः अधिकांश विद्रोहियों को दबा दिया गया। 1857 का भारतीय विद्रोह एक निर्णायक मोड़ था। ब्रिटिशों की सैन्य और राजनीतिक शक्ति की पुष्टि करते हुए इससे भारत को उनके द्वारा नियंत्रित करने के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया।

हालांकि 1857 के विद्रोह ने आजादी की लड़ाई की नींव रखी, जनमानस के मन में अपने देश को आजाद कराने के लिए अलख जगाई। देश की स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन बनाने में स्थानीय और क्षेत्रीय लोगों का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण था। आम किसानों, आदिवासियों और क्षेत्रीय नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की अलख जगाई, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिली। राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों से पहले ही स्थानीय स्तर पर कई विरोध शुरू हो गए थे, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। उनमें से एक था संथाल विद्रोह। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में झारखंड और बिहार के संथाल आदिवासियों ने अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। दूसरा विद्रोह था रामपा विद्रोह। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आदिवासियों ने मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध लड़ा। और आजादी की लड़ाई में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान रहा। मेरठ से मंगल पांडे ने इस क्रांति की शुरुआत की। इसके अलावा अवध यानी लखनऊ में बेगम हजरत महल और कानपुर में नाना साहिब ने स्थानीय लोगों को संगठित कर अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। गोरखपुर के पास चौरी चौरा में स्थानीय लोगों के उग्र प्रदर्शन ने असहयोग आंदोलन की दिशा बदल दी। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे क्षेत्रीय क्रांतिकारियों ने काकोरी में ट्रेन लूटकर अंग्रेजों को चुनौती दी। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को गांवों और आम लोगों तक क्षेत्रीय सत्याग्रहों के माध्यम से ही पहुंचाया, जैसे चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ, बिहार के किसानों को नील की खेती के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए यह पहला बड़ा क्षेत्रीय आंदोलन था, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्थानीय किसानों को संगठित करके कर न चुकाने का सफल आंदोलन चलाया। इतना ही नहीं श्रोताओं, आम लोगों और महिलाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। स्वदेशी आंदोलन में क्षेत्रीय स्तर पर आम लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और खादी को अपनाया। भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल सहित पूरे देश के आम ग्रामीणों ने पुलिस थानों पर हमले किए और पिकेटिंग की। कनकलता बरुआ जैसी क्षेत्रीय महिला नेताओं ने असम में तिरंगा फहराते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अनेक आंदोलनों, विद्रोहों और बलिदानों की गाथा है। इस गौरवपूर्ण यात्रा में भारत के सभी समूहों ने, समुदायों ने, जनजातीय समुदायों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम को समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भजन संध्या। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं संत ज्ञानेश्वर फिल्म का भजन सुरेश वाडकर की आवाज में। इसे लिखा है पंडित किरण मिश्रा ने, धुन बनाई है नंदू ने।

0: अब आइए सुनते हैं चारधाम फिल्म का भजन नितिन मुकेश की आवाज में। रचनाकार हैं उदय शंकर पाणी, संगीतकार हैं सुरेंद्र कोहली।
1: माताओं, बहनों और सज्जनों, आज हम श्री राम जी के त्याग का प्रसंग शुरू करने जा रहे हैं। मेरी विनती है कि पहले आप सब मेरे साथ इस महामंत्र का उच्चारण कर मन पवित्र कर लें।

माता सीता, फूल सी सुकुमारी, जनक नंदिनी, जिसने अपने पति धर्म का पालन करने के लिए क्या क्या नहीं सहा।

सीता जैसी पवित्र पतिव्रता आदर्श नारी को फिर से वनवास दे दिया गया और वह भी गर्भावस्था में। अंततः विरह वेदना सहती जानकी ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में दो सुंदर तेजस्वी बालक लव और कुश को जन्म दिया और फिर एक दिन

अभी आप सुन रहे थे नागमणि फिल्म का भजन सुरेश वाडकर की आवाज में। इसे लिखा था महेंद्र दहलवी ने, संगीत दिया था अनु मलिक ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं सी अर्जुन के संगीत निर्देशन में प्रदीप की रचना को महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में जय संतोषी मां।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में उषा मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में जूली फिल्म का भजन।

जूली फिल्म के इस भजन के साथ ही कार्यक्रम भजन संध्या यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्र।

अभी आप सुन रहे थे नाम फिल्म का गीत पंकज उधास और साथियों के स्वर में। इसे लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब आइए सुनते हैं रूप कुमार राठौर की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा गीत बॉर्डर फिल्म से। इसे संगीत से संवारा है अनु मलिक ने।

बॉर्डर फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। बाकिया की छह दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के पांच जवान शहीद। पांच दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या

तकनीकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं।

0: घोषणा की गई।
1: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया, अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की संस्कृति
2: ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अभैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 2,50,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
2: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं।

0: पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. 5 Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. 5-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration, focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dhiraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of 3-match series in Dharamshala. Prime Minister Narendra Modi will reach the French city of Nice tonight, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Nice has filed this report.
2: France occupies a special place in India's strategic vision. As Prime Minister Narendra Modi arrives in Nice tonight at 10:30 p.m., attention is focused on a series of high-level engagements aimed at deepening cooperation across innovation, technology and strategic sectors. Tomorrow at 2:30 p.m., Prime Minister Modi and President Macron will jointly inaugurate Bharat Innovates, India's flagship deep tech showcase.

0: Minister Narendra Modi has nurtured a new culture of education, skills, innovation and startups across the country over the past 12 years. In a social media post, Mr. Shah said, India has the world's second largest higher education network due to various policy initiatives undertaken by the Prime Minister. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that tensions arising from the conflict involving Iran, the United States and Israel have increased challenges in the global petroleum sector, leading to a rise in crude oil prices. Speaking to the media at Ludhiana in Punjab, Mr. Puri asserted that the centre has however taken measures to ensure that Indian citizens are not adversely affected by the increase in fuel prices. Mr. Puri described the 12-year tenure of Prime Minister Narendra Modi as people-centric and development-oriented. Manipur police notified that certain individuals and groups are creating, sharing and circulating unverified and provocative content on various social media platforms. In a social media post, Manipur police strongly advised the public not to believe, share or forward rumours or unverified content and to exercise caution while engaging with information circulating on social media. In men's cricket, Afghanistan have set a target of 195 runs for India in the rain-affected first one-day international ODI of the three-match series in Dharamshala, Himachal Pradesh. The match has been reduced to 25 overs per side after relentless rains delayed the start. In reply, India were 91 for 1 in 10.3 overs when reports last came in. Earlier put into bat, Afghanistan were bowled out for 194 in 24.5 overs. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. Five Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. Five-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dheeraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of three-match series in Dharamshala. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दो मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में आज रात नीस पहुंच रहे हैं। वो फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और कल भारत इनोवेट्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। आसाम के जोरहाट में एक AN-32 तैयारी के गिरकर तबाह होने से भारतीय फजाइया के अमले के पांच अफराद जा बहक हो गए हैं। पांच रोजा ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस इंदौर आलामी को इत्तफाक राय से मंजूरी देने के साथ खत्म हो गई, जिसमें गजाई तहफ़ और खेतीबाड़ी में स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मुल्क का अगला फौजी सरबराह मुकर्रर किया गया है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान ने धर्मशाला में तीन मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासर पहले बैन अलावामी मैच में भारत के लिए 195 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक जमहूरिया के छह रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे को यूरोप के साथ भारत की शराकतदारी में एक अहम तरीन लम्हा समझा जा रहा है। 2014 के बाद से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यह फ्रांस का सातवां दौरा है। इस साल जनवरी में कलीदी भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती माहदे के बाद से इस बरेआजम का यह उनका पहला दौरा भी है। फ्रांस भारत के साथ मशरकी दुनिया में कदीम तरीन और इंतहाई भरोसेमंद जामिया शराकतदारी रखने वालों में से एक मुल्क है जो इस दौरे का मरकजी मकाम रखेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस को भारत के जामे विजन में खसूसी मकाम हासिल है। इस साल के अवाइल में सदर मैक्रों के भारत के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात के खसूसी आलमी जामे शराकतदारी का दर्जा दिया था, जो कि आलमी हल को एक नई शक्ल देने के लिए उनके मुश्तरक मकसद की अक्कासी करता है। भारतीय मियारी वक्त के मुताबिक आज रात 10:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी नीस पहुंचेंगे।

0: लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 साल के दौरान मुल्क भर में तालीम, हुनरमंदी, इख्तरा और स्टार्टअप्स की एक नए कल्चर को फरोग दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम मोदी की मुख्तलिफ पॉलिसियों के नतीजे में भारत आज दुनिया भर में आला तालीम का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क रखने वाला मुल्क बन चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत दुनिया भर में मसनूई जहानत की सलाहियत वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। मुल्क में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स कायम हो चुके हैं, जिसके बायस भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इको सिस्टम बनकर उभरा है। वजीर दाखला ने मजीद कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में मुल्क ने हुनरमंदी के शोबे में भी गैर मामूली तरक्की का मुशाहिदा किया है और 6 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को मुख्तलिफ महारतों की तरबियत फराहम की गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि 2047 तक भारत का एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का सफर इसके खेत खलियानों और गांव से होकर गुजरता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पायदार ज़राअत, इख्तराअत और तहकीक विकसित भारत की असास हैं। जनाब बिरला ने यह बात विकसित भारत एक्ट 2047 के लिए पायदार ज़राअत, रिवायत टेक्नोलॉजी और ठोस नतायज के मौजू पर नई दिल्ली में 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब के दौरान कही। सड़क नकलो हमल और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज कहा है कि उनकी वजारत बुनियादी ढांचे की तरक्की के साथ साथ रोजगार वजह करने पर जोर दे रही है। जनाब गडकरी नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी हुकूमत की क्यादत में पिछले 12 सालों के दौरान हासिल कामयाबियों और तरक्याती इकदाम को उजागर किया। जनाब गडकरी ने बताया कि सड़क नकलो हमल और शाहराहों की वजारत ने मुल्क भर में ड्राइविंग के लिए तरबियती मराकज कायम करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक इन मराकज से तकरीबन 10 लाख अफराद तरबियत हासिल कर चुके हैं। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रूनमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी के खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम भारत की सकाफती रिवायत का जश्न मनाने और इसे फरोग देने के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों के दौरान भारत के सकाफती सफर में नुमाया तरक्की हुई है। हुकूमत ने कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। इन इक़दामात ने अवाम में मुल्क के सकाफती विरसे के हवाले से फख्र और वाबस्तगी के जज्बे को मजबूत किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तामीर, महाकाल लोक प्रोजेक्ट, मां कामाख्या मंदिर की असर नौ तामीर और तरक्की, जूना सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ और अयोध्या में राम मंदिर की तामीर मोदी हुकूमत की नुमाया कामयाबियां हैं। म्यूजियम ग्रांट स्कीम के तहत मुल्क के सकाफती ढांचे को मजबूत बनाया गया है। इस स्कीम के जरिए 21 नए अजायब घर कायम किए गए हैं, जबकि 23 मौजूदा अजायब घरों को जदीद सहूलतों से आरास्ता किया गया है। वक्त के साथ ये स्कीम नागालैंड में सकाफती सरगर्मियों के फरोग के लिए एक अहम सहारा बनकर उभरी है। इसी तरह कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट भी वजारत सकाफत के अहम प्रोग्रामों में शामिल हो गई है, जो मुल्क भर में सकाफती सरगर्मियों की मुआवनत कर रही है। मणिपुर की सबसे कदीम थिएटर तंजीम मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन नई माली इमदाद मिलने के बाद कई नए थिएटर ड्रामे पेश करने की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए तंजीम के सेक्रेटरी सोरो खैबम सरत चंद्र ने इलाकाई फनून के फरोग के लिए मजबूत माली मुआवनत फराहम करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।
3: इस बेदारी की खास बात से हमें सकाफत की वजारत से मुख्तलिफ किस्म की माली इमदाद हासिल हुई। सकाफती इमदाद के तहत हमें इस साल 1.25 लाख रुपए मौसूल हुए हैं। हमें मंजूर शुदा रकम का 75% हासिल हुआ है। मैं भारत सरकार और सकाफत की वजारत का शुक्रगुजार हूँ।
2: ने अपने सकाफत के तहफ्फुज़ और इसे दुनिया भर में मुतारफ कराने के लिए अहम इकदाम किए हैं। आज भारत की भरपूर सकाफती रिवायत न सिर्फ मुल्क के अंदर रोशन है, बल्कि अपनी रोशनी दुनिया भर में भी फैला रही है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर

धर्मशाला में 3 एक रोजा बैन अलावामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में बारिश से मुतासर मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 195 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक भारत ने 13 ओवर्स में 2 विकेट पर 117 रन बना लिए थे। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के 2 मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में आज रात नीस पहुंच रहे हैं। वो फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और कल भारत इनोवेट्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। आसाम के जोरहाट में एक AN-32 तैयारे के गिरकर तबाह होने से भारतीय फिजाइया के अमले के 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मुल्क का अगला फौजी सरबराह मुकर्रर किया गया है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान ने धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासर पहले बैन अलावामी मैच में भारत के लिए 195 रन का जीत का निशाना रखा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें, संस्कृति की धाराएं।
1: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है। न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहाँ रुककर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
0: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय

0: स्मरण है उस चेतना का जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है। एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं चेतना को साधती है, और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक,
1: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
1: 5000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
2: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग, आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं थी, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी। इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, और ये प्रयास देश में, दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे, और उसमें अवैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया, और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं, और इसको किस प्रकार हम विज्ञान पर बनाते हुए खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इनकी, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर। ए मायने सामान्य, बी मायने उससे और कठिन, सी मायने और कठिन, डी मायने उससे भी कठिन, और ई मायने परम कठिन आसन, ऐसे हमने कैटेगरी तय की। और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके, उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्चर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले से वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
1: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
2: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है, और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है, और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
1: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा किया, इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया, और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आई और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
2: ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग श्री स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए, तो उस वार्ता में ये निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थीं कि बच्चे आज स्पोर्ट्स

0: के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं। वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2 बाय 6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
1: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
0: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई, टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको 1 मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है साहब। स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस, वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिरता। तो 1.5 मिनट करने वाला बच्चा ही 1 मिनट परफेक्शन से कर पाता है, क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीजें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं, और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया और वहां से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है और उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
1: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है, और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया। नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
0: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है, और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने, और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म मजहब जाति कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की, और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
1: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया। 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी? कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
0: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूं। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है, उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहां जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहां लेवल अच्छा नहीं होगा, जहां चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा, तो एक वो संबल था।
1: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं हैं?
0: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूं, 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे। और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से, और उन्हें आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
1: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
0: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा, और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत

0: ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
1: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है, बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं, और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है, तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है, संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूजॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे DU म्यूजिक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन्स होते हैं। वहाँ पे IIT कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे, और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ पे, फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है।
0: संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है, और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड, अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मूरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है। तो वो गाना हमने खुद बनाया है, वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहते हैं। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक फोर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख परख के।
0: आपके अपने अनुभव में जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप

0: से लोग इस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते?
1: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज की कमी आ गई है बहुत ज्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी.
0: ऐसा क्यों?
1: अब वो ज्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है. आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूजिक वेन्यूज थोड़े से स्थिर हो गए थे, और अब वही चार पांच जगहें हैं जहां पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीजें. तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है. उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं.
0: सॉरी, आप बताइए।
2: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
0: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
2: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेट अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे
0: हाँ, वो
2: 500 रुपये एक फैमिली के कंट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटालिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।
1: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं अब. अब हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूजिक फ्री में सुनना है. हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने. 1-1.5 घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है. ये आपको एक लेवल पे, आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको 1.5 घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूजिक. पर कवर्स उन्हें भी करने पड़ते हैं.
0: तो अभी आप लोगों ने
1: एक
0: क्या तरीका निकाला आदित्य, जैसे आप जो बात कर रहे हैं, जब कवर्स का जिक्र
1: जी
0: आपने किया, तो आपको लगता है कि कवर्स ज्यादा पॉपुलर हैं
1: जी हैं,
0: रादर देन योर ओन कॉम्पोजिशंस?
1: बिल्कुल हैं. पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं.
0: अच्छा,
1: हम बोलते भी हैं वी कुल्फी फाइल्ड इट.
0: जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दिया, संभव जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया, उसे
1: जी
0: आपने एक नया
1: जी
0: टच दिया।
3: उसी आइडिया को लेके मेन स्ट्रीम गानों को एक अलग नजरिए से देख के उनको प्रेजेंट करना इज वॉट वी एज अ बैंड ऑल्सो डू.

कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं।

0: ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिशी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like महाभारत, और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayan itself. रामायण का जो स्पंदन है, जो लय है, वो निरंतर है, वो शाश्वत है। आपको व्याख्या मिलती है किस तरह से आपके अंदर वो इमोशंस और भावनाएं हैं। और मैंने दो लाइन लिखी थी कैके का प्रसंग, कि कैके के कारण राम वन गए और इसी कारण वो राम बन भी गए।
0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शैरन लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े विस्तार से बताया।
2: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
0: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
3: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमने धारण किया है। और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है। हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के, रह के, उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूं, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे हैं।
0: मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंब रामायण का विशेष उल्लेख किया।
4: There is also a very beautiful and very important play, a scene to behold, to seeing them come, the Shurpanakas.
0: उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
4: गोइंग एंड प्रपोजिंग टू रामा एंड लक्ष्मण फ्रॉम द राक्षसी बावन द हैंड गोज इनटू अ ब्यूटीफुल पल्लव।
0: राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे

बीती 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक

साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खां, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुड़ी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी। Tonight, in Ravivasari Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we bring you a saxophone recital by U. Shiva Prasad. U. Shiva Prasad, born into a family of musicians in Vishakhapatnam, inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu, and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on Mridangam by V. Jayaraman, and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hansdhvani. Composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar, is set to Aditalam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नू वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्याग राजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग हंसध्वनि। कंटिन्यूइंग हिज रिसाइटल, यू शिव प्रसाद नाउ प्रेजेंट्स अनदर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन राग नवरस कानड़ा। Composition Ninnu Veena Rama, composed by Tyagaraja, is set to Rupakam Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कानड़ा। यू शिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी। कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, कंपोज्ड बाय स्वाति तिरुनाल, इज सेट टू आदितालम।

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and

0: on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashvani Delhi and was broadcast from the Delhi station of Akashvani.
1: साथ में रत्ना पांडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरीटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत ने फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेस मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाहन 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।